आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 पर आप वसुंधरा कार्यक्रम सुनेंगे। आज के कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर भरत कुमार उपाध्याय की कथा सुनवाई जाएगी। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:35 पर। कल के सितारे बच्चे हमारे, बच्चों का ये विशेष कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर चर्चा होगी, साथ ही अंतरिक्ष दिवस पर विशेष जानकारी और कविताएं लेकर आएंगे कुछ छोटे बच्चे, जिनके नाम हैं प्रखर मिश्रा, गर्व बर्वे, प्रशा तिवारी, सरायू पांचाल और देवांश रथ। रक्षाबंधन भाई बहन का एक प्यारा सा रिश्ता, इस पर भी कुछ बातें आज के कार्यक्रम में होंगी। लोक संगीत में बाबूलाल धोलपुरे और साथियों के गाए लोकगीत सुबह 9 और शाम 6:45 पर सुने जा सकते हैं। शुभदा जेजोरीकर की गाई रचनाएं सुनिएगा सुगम संगीत में सुबह 9:15 और शाम 6:30। शास्त्रीय संगीत में सुबह 9:30 हम आपको सुनवाएंगे भीम शंकर राव का गाया राग सिंदूरा।

सावटी। वाल्मीकि रामायण की चित्र यात्रा रामरंग। पुलिस उपायुक्त श्रीमती सीमा अलावा से ये विशेष भेंट वार्ता आज दिन में 10:05 से सुनवाई जाएगी। भेंट करता है श्री राजेश। और आइए अब आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत 12:00 और 2:00 से सुना जा सकता है। 12:30 का समय होगा संग्रहालय से कार्यक्रम का। 1:00 आप महिला कार्यक्रम सुनेंगे। 1:30 का समय लोक संगीत का होगा। 1:45 पर सुगम संगीत प्रसारित होगा और 2:30 पर आप बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान सुनेंगे। और आइए श्रोताओं अब आपको आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी बता दें। 5:00 होगा युवाणी कार्यक्रम। आज है युवा तरंग क्रम। खेती गृहस्थी कार्यक्रम 7:20 पर होगा जिसमें आयुष्मान भारत योजना पर बात होगी। साथ ही मत्स्य पालन के विषय में डॉक्टर सुशांत पुणेकर समसामयिक सुझाव देंगे और कार्यक्रम में आप लोकगीत भी सुनेंगे। 5:45 का समय फिल्म संगीत का होगा। 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम और 8:15 पर डगर विकास की, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 8:30 का समय होगा फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम चित्रगीत आप 9:15 पर सुनेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हम आपके लिए लेकर आएंगे 9:30 से। 10:00 अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।

0: अभी आपने सुना आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। 6:55 होने को है, थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार और 7 हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्थिते भाजपा मुख्यालये भाजपा दलस्य नवनियुक्तैः राष्ट्रिय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। भाजपाध्यक्षं नितिन नवीनं विहाय दलस्य राष्ट्रियोपाध्यक्षाः महासचिवाः अन्ये पदाधिकारिणः च अपि उपवेशने उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् संघटनात्मकोपवेशनानि नूतन विचारै नवदृष्टिभि च सम्बद्धानि भवन्ति। येषाम् उद्देश्यं दलस्य सुदृढीकरणं जनसम्पर्कस्य च विस्तारः अस्ति। सः उक्तवान् यत् दलस्य सहकर्मिभि नूतन संघटनात्मक दलस्य सदस्यैः च सह अत्युत्तमः संवादः जातः। इतः प्राक् भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः नवनियुक्तैः राष्ट्रिय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। नितिन नवीनः सनसूचितवान् यत् उपवेशनावधौ भाजपा दलेन वन्दे मातरम् इत्यस्य ऐतिहासिक परम्परायाः सम्माननस्य संरक्षणस्य च सम्बन्धे एकः प्रस्तावः अपि पारितः। दलेन सम्पूर्णस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सम्माननम् गौरवं ऐतिहासिक परम्परां राष्ट्रिय स्थानं च संरक्षितुं संकल्पः अपि कृतः। भारतस्य राष्ट्रिय गीतस्य रूपेण तस्य स्थानं यथावत् स्थापयितुं दलं प्रतिबद्धमस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य कोलकातायां गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड अथ यंत्र इंडिया लिमिटेड चेत्यनयोः गार्डन रीच इत्यत्र स्थितेभ्यः 5 केन्द्रेभ्यः आयोज्यमाने भूमिपूजन समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अपि कार्यक्रमे उपस्थितः भविष्यति। भूमिपूजन समारोहानन्तरं जीआरएसई इत्यस्मिन् भवने सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमैः सह संवाद सत्रम् आयोजयिष्यते। रक्षामंत्री दिवसस्य उत्तरार्धे युवभारती क्रीडांगणे ईस्ट बंगाल एफसी तथा मोहन बागान सुपर जॉइंट इत्यनयोः मध्ये आयोज्यमानायाः ड्यूरन कप इत्यस्य स्पर्धायाः निर्णायकचक्रमपि द्रक्ष्यति। भारतीय वायुसेनया ऑस्ट्रेलिया मलेशिया देशयोः द्वयोः अन्ताराष्ट्रिय विमानाभ्यासयोः स्वीय सहभागिता सफलतया सम्पन्ना। एतयोः ऑस्ट्रेलियायां पिच ब्लैक 20x20 इत्यभ्यासः अथ मलेशियायां उदार शक्ति 20x20 इत्यभ्यासः च सम्मिलितौ स्तः। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् द्वयोः देशयोः भारतीय वायुसेनायाः सहभागितया हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे तस्याः परिचालन क्षमता उन्नत सामरिक समन्वयम् अथ रणनीतिक रक्षा सहयोगं च सुदृढीकर्तुं प्रतिबद्धता प्रकाशिता। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति रूस देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। तत्र जयशंकरः भारत रूस अन्ताप्रशासनिकायोगस्य वाणिज्यार्थिक प्रविधि सांस्कृतिक सहयोगानां 27वें अधिवेशनस्य सहाध्यक्षतां विधास्यति। यात्रावधौ डॉ जयशंकरः रूस देशस्य विदेश मन्त्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति अथ क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु अपि चर्चा करिष्यति। क्रीडा मन्त्रालयेन ह्यः जापाने आगामी मासे प्रारप्स्यमाणानां एशियायाः क्रीडानां कृते 92.4 सदस्यात्मकस्य भारतीय दलस्य अनुमोदनं कृतम्। अस्मिन् दले 65.2 पुरुषाः अथ 27.2 महिलाः च क्रीडकाः सन्ति। भारतस्य 20 सदस्ययुतं बैडमिंटन दलं पीवी सिंधुः लक्ष्य सेनः आयुष शेट्टी इत्यादिभिः प्रसिद्धैः क्रीडकैः युक्तमस्ति। अस्मिन् दले महिला युगलं गायत्री गोपीचंदः अथ त्रिसा जोली अपि सम्मिलिताः सन्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन की बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर में 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। डॉ सुब्रमण्यम व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैफरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में यंत्र इंडिया की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी बन की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित 3rd IIMA हेल्थकेयर समिट 2026 को संबोधित कर रही थीं। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निरंतर और निर्बाध आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मैसर्स एडुक्विटी का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के एक केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 परीक्षार्थी अपनी पूरी परीक्षा नहीं दे पाए थे। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को 10 बजे जयपुर के राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में आयोजित की जाएगी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदारा शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दो देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
3: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
4: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
5: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
6: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
5: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
6: अरे काहे का मजा।
5: क्यों, क्या हुआ?
6: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
5: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
6: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
5: ये हुई ना बात।
7: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
8: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
9: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
8: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
9: वही दोपहर 1 बजे।
8: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
10: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
10: तो सुनते रहिए मालवा की शान
11: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
12: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
13: क्या?
12: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
13: वो कैसे?
12: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
13: और सुनेंगे कैसे?
12: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ की चर्चा। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस थीम पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री कल करेंगे शुभारंभ। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय भारतीय दल को दी मंजूरी। और भोपाल तथा इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं, जिनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और जनता के साथ इसके जुड़ाव को गहरा करना है। इससे पहले दिन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा कल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस थीम पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकास को आईआईटी, आईआईएम, एम्स और डीआरडीओ जैसे 130 से अधिक अग्रणी संस्थानों के शोध, तकनीकी और नवाचार से जोड़ना है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल मुख्य वक्तव्य देंगे। इस अवसर पर दीर्घकालिक संस्थागत सहयोग के लिए एमओयू भी हस्ताक्षरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल के एसएनसीयू के वार्मर में आग से झुलसे 3 नवजात बच्चों में से एक की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मृतक बच्ची के परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उपचाररत दोनों बच्चों के संपूर्ण इलाज का खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। डिजिटल कृषि मिशन के तहत नई दिल्ली में कल एग्रीस्टेक एवं दालों में आत्मनिर्भरता मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें सहभागिता की। उन्होंने बताया कि देश में अब तक 10 करोड़ 41 लाख से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है।
1: एग्रीस्टेक हो या दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारे। 10 करोड़ 41 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी आप नहीं बनाए ना। लैंड पार्सल भी कई राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया फार्मर आईडी बनाने के बाद। डिजिटल सर्वेक्षण का काम भी कई जगह प्रारंभ हुआ है, बहुत अच्छा। अब डिजिटल सर्वे में जैसे एक राज्य से ये बात आई थी कि गेहूं और धान का तो बढ़िया हो जाता है, लेकिन सोयाबीन जैसी फसल में ऊपर पत्ते रहते हैं, नीचे फलियां रहती, तो कई बार परफेक्ट प्रोडक्शन नहीं आता। तो मुझे लगता है वैसी चीजों को भी हम ध्यान में रख के रास्ते निकालेंगे, टेक्नोलॉजी से ही रास्ते निकलेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली के एक कार्यक्रम में कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोपरि कर्तव्य है।
2: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: मध्य प्रदेश पुलिस की अभिनव पहल कम्युनिटी पुलिसिंग और एसओएस बालग्राम के साझे प्रयासों से भटके हुए बच्चों को नया सहारा मिल रहा है। हाल ही में रायसेन में डरे सहमे मिले 2 बच्चों को जबलपुर पुलिस से समन्वय कर उनके माता पिता तक पहुंचाया गया। वहीं दिल्ली से भटककर भोपाल पहुंची एक किशोरी ने डर के कारण अपना हुलिया बदल लिया था, जिसे छतरपुर और भोपाल पुलिस ने 3 दिन में परिजनों को सौंपा। रानी कमलापति स्टेशन के पास ट्रैक पर मिले बच्चे की पहचान गोविंदपुरा थाने में दर्ज रिपोर्ट से हुई। वहीं पुलिस ने अंतर्राज्यीय समन्वय से उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों को भी उनके घर वापस पहुंचाया है। डीजीपी कैलाश मकवाड़ा ने पुलिस के इन प्रयासों की सराहना की है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 2 उत्कृष्ट चयनित शिक्षकों में सांदीपनी महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल की शिक्षिका डॉ अर्चना शुक्ला और सीधी जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार के शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह के नवाचारों की इन दिनों काफी चर्चा है। दृढ़ इच्छा शक्ति, नवाचार, जनभागीदारी और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा के माध्यम से इन दोनों शिक्षकों ने शासकीय स्कूलों में सकारात्मक बदलाव की नई मिसाल पेश की है। डॉक्टर अर्चना शुक्ला राज्य स्तर पर चयनित 6 शिक्षकों में शामिल रही और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला शिक्षिका बनी। वहीं शैलेंद्र प्रताप सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र के सीमित संसाधनों वाले स्कूल को अपनी नवाचारी सोच से एक बेहतर शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया। दोनों शिक्षकों की इस उपलब्धि पर स्कूल शिक्षा विभाग ने गर्व जताया है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC का एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम अब सड़क दुर्घटनाओं के साथ साथ जल भराव, बाढ़ और अन्य आपदाओं की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रबंध संचालक भरत यादव के अनुसार इस सिस्टम को ARS 3.0 संस्करण में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आ रही है। किसी भी आपातकालीन या सड़क दुर्घटना में मदद के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 1099 पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। अब समाचार खेल के। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सर्वाधिक 73 एथलीट एथलेटिक्स से हैं। इस टीम में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, लंबी कूद के मुरली श्रीशंकर और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं एशियाई खेलों से ठीक पहले भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां पर रोहित यादव ने भाला फेंक में 87.68 मीटर के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ और मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर फिलहाल थम गया है, लेकिन कुछ जिलों में अच्छी बारिश चल रही है। नर्मदा नदी इस समय उफान पर है। जबलपुर में भी जलस्तर बढ़ने से धुआंधार जलप्रपात भी जलमग्न है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन सहित प्रदेश के प्रमुख जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट ने लंबित CM हेल्पलाइन शिकायतों का समीक्षा करते हुए उनके जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए। खंडवा नगर निगम के जोन 1 और जोन 2 में 27 अगस्त को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा शिविर का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित वृहद स्वास्थ्य परीक्षण सह विधिक जागरूकता शिविर में 200 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 93 लोगों की आभा ID बनाई गई। कटनी के गादरघाट में 29 और 30 अगस्त को कजलिया मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बारडोली उत्सव समिति ने बैठक की। इंदौर में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की संयुक्त बेंच द्वारा कल जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 33 प्रकरणों में से 17 का निपटारा किया गया। धार में आगामी त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। डिंडौरी के मेहंदवानी में जनविश्वास अभियान शिविर के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा 39 पशुपालकों को दवाइयां वितरित की गई। अशोकनगर में प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुरैना के जिला रोजगार कार्यालय परिसर में बेरोजगार युवाओं के लिए 24 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक युवा संगम जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा और छिंदवाड़ा में भारत के उप महारजिस्ट्रार एवं अतिरिक्त मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी डॉ विजय कुमार ने दौरा कर जनगणना 2027 की तैयारियों का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ की वार्ता। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस थीम पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री कल करेंगे शुभारंभ। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय भारतीय दल को दी मंजूरी और भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

समुद्र जिसके वस्त्र हैं, पर्वत जिसके स्तन, ऐसी विष्णु पत्नी पृथ्वी को मेरा नमन है। हे माँ, पैरों से स्पर्श करने के लिए तू मुझे क्षमा कर।

आज के वसुंधरा कार्यक्रम में हम आपको पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित कथा सुनवा रहे हैं। कथाकार हैं भरत कुमार उपाध्याय।

सुबह के 10 बज रहे थे। आनंद प्रकाश अस्थाना अपने विशाल बंगले में बेहद व्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण तरीके से निर्मित बगीचे के पौधों को पानी देकर बगीचे के खूबसूरत लान में रखी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते ही अभी थोड़ा ही वक्त बीता था कि एक कार बंगले के सामने आकर रुकी। कौन हो सकता है, यह सोचते हुए अखबार को कुर्सी पर रखकर आनंद प्रकाश बंगले के मेन गेट पर पहुंच गए। कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलते हुए रत्नेश कार से बाहर आ चुका था। रत्नेश को देखकर आनंद प्रकाश को हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ और उन्होंने रत्नेश को देखते हुए कहा, क्या बात है, इस बार आने की कोई खबर नहीं? अवंतिका और बच्चे इस बार साथ नहीं आए? रत्नेश ने अपने पिता के पांव छूते हुए कहा, अवंतिका की छुट्टियां मंजूर नहीं हुई। और इतना कहकर रत्नेश बंगले में चला गया और इधर आनंद प्रकाश अखबार को समेटने में व्यस्त हो गए। और उधर पूजा घर से ड्राइंग रूम की तरफ आती हुई कुसुम देवी ने जब रत्नेश को देखा तो उनके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने रत्नेश को देखते हुए कहा, अरे वाह, कब आ गया तू, और वो भी इस तरह अचानक, कितनी देर हो गई आए? सोफे से उठकर माँ के पांव पड़ते हुए रत्नेश ने कहा, अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ, लेकिन आप कहीं दिखे नहीं। रत्नेश ने अपनी सफाई प्रस्तुत की, ठीक है अब तू आराम से बैठ, मैं चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। और इतना कहकर कुसुम देवी किचन में चली गई। चाय और नाश्ता लेने के बाद रत्नेश आराम करने के लिए अपने रूम में चला गया। सफर की गहरी थकान उसे नींद में जाने के लिए विवश कर रही थी। और इधर आनंद प्रकाश और उनकी धर्मपत्नी कुसुम देवी आपस में बात करते हुए रत्नेश के बारे में न जाने कितने सच्चे और न जाने कितने कपोल कल्पित कयास लगा रहे थे, क्योंकि इस तरह अचानक बगैर किसी पूर्व सूचना के पत्नी और बच्चों के बगैर रत्नेश का आना दोनों पति पत्नी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन असल बात क्या है, यह तो रत्नेश की नींद पूरी होने के पश्चात ही पता चलेगी। शाम हो चली थी लेकिन रत्नेश अभी तक सो रहा था। कुसुम देवी दो कप चाय बना कर ले आई। चाय पीते हुए आनंद प्रकाश ने कुसुम देवी से कहा, रत्नेश को भी बुला लो, साथ में चाय पियेंगे, वो तो अभी तक सो रहा है। कुसुम देवी ने कहा, तो उसको नींद से जगाना था, कब तक सोएगा? आनंद प्रकाश ने कहा, मैं कुछ देर पहले ही कमरे में गई थी, वो गहरी नींद में था, इसलिए मैंने उसे जगाना उचित नहीं समझा। कुसुम देवी ने कहा, अच्छा, ये महाशय किसी सल्तनत के सुल्तान है क्या कि जहाँ पनाह की नींद में कोई खलल नहीं डाल सकता? थोड़े गुस्से में भुनभुनाते हुए आनंद प्रकाश ने अपनी धर्मपत्नी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने वाकई बच्चों को बहुत सर चढ़ा रखा है, उस केतन को भी देखो, 4-5 दिन हो गए हैं, असम में कौन सी जगह है कुछ पता नहीं चल रहा है। अब ये दोनों भाई छोटे बच्चे तो हैं नहीं जिनके पल पल का ख्याल रखने की चिंता में हम बेवजह घुलते रहें। कुसुम देवी ने मुस्कुराकर अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। कुसुम देवी की मुस्कान से आनंद प्रकाश और भी बुरी तरह जलभुन कर रह गए। दोनों 11 बजे तक रत्नेश के जागने का इंतजार करते रहे। आखिरकार थक हार कर प्रकाश और कुसुम देवी ने भी अपने कमरे में आराम करने का निश्चय किया। अब यह मुलाकात सुबह ही होगी। रत्नेश को आए आज दूसरा दिन था। सफर की थकान पूरी तरह उतर चुकी थी। खाना खाने के पश्चात रत्नेश बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तैयार होकर उसने अपने पिता से कहा, मैं जरा बत्रा अंकल के घर जा रहा हूँ, वैसे भी दीपक से मिले पूरे 2 बरस हो गए हैं, यदि थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत करना। अच्छा, कल से हम दोनों तुमसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हैं और एक तुम हो कि तुम्हारे पास हम लोगों से बात करने का वक्त ही नहीं है। अब बत्रा और दीपक तुम्हारे लिए हमसे भी ज़्यादा जरूरी हो गए हैं। अपने बचपन के परम मित्र ब्रजमोहन बत्रा और उनके पुत्र दीपक पर अपनी खींच निकालते हुए आनंद प्रकाश ने गुस्से से रत्नेश से कहा। पिता और पुत्र में बात आगे न बढ़े इस दृष्टि से कुसुम देवी ने रत्नेश से कहा, कल से तू बराबर बात नहीं कर रहा है, इसलिए इनको चिंता है कि कहीं अवंतिका और तेरे बीच कोई अनबन तो नहीं हो गई कि जिसकी वजह से क्रोध में तू अचानक ही यहाँ आ गया है। अब बस तू हमारी चिंता और शंका का समाधान कर दे। और इतना कहकर कुसुम देवी चुप हो गई। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच कोई अनबन नहीं है, वो तो थकान की वजह से मैं आप दोनों से बात नहीं कर पाया, आप दोनों बेवजह अपने सिर पर तनाव लेकर घूम रहे हैं। और इतना कहकर बंगले से कार निकालकर रत्नेश अपने मित्र दीपक से मिलने निकल गया। इस लड़के के मन में क्या चलता रहता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। कुसुम देवी को देखकर आनंद प्रकाश बड़बड़ाए। बचपन से ही प्रकृति प्रेमी
और भावुक हृदय रत्नेश विगत 8 वर्षों से अमेरिका के फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के सहायक प्रोफेसर एवं न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत थे। नैसर्गिक रूप से बेहद प्रतिभाशाली रत्नेश ने अपने विषय के अतिरिक्त पर्यावरण इंजीनियरिंग की विधिवत डिग्री न लेते हुए भी इस विषय का गहन अध्ययन किया है। अमेरिका की कई परियोजनाओं में एक सलाहकार के रूप में उसने अच्छी खासी प्रतिष्ठा अर्जित की। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, पारिस्थितिकी असंतुलन और प्रकृति से जुड़े कई विषयों पर उसके सैकड़ों शोध पत्र जारी हुए, जिनकी बेहद प्रशंसा हुई। भारी भरकम सैलरी पैकेज और सर्व सुविधा युक्त जीवन शैली होने के बावजूद उसका दिल दिमाग अपने देश भारत में ही रमा रहा। सामाजिक और पारिवारिक दबावों की वजह से वह बेमन से अमेरिका में अपने कार्यों में व्यस्त रहा, लेकिन विगत 2-3 सालों में अमेरिका में बढ़ती हुई नस्ली भेदभाव की घटनाएं और कोरोना महामारी में अमेरिकी प्रशासन की घनघोर विफलताओं ने रत्नेश का अमेरिका से मोह भंग कर दिया और यही वजह है कि इस बार उसके भारत आने की वजह एकमात्र हमेशा के लिए भारत में रहकर सिर्फ अपने देश के लिए ही कार्य करने की है। अब वो अपने कार्य में कितना सफल और कितनी असफलताओं का सामना करेगा, यह तो वक्त की मुट्ठियों में कैद है, किंतु फिलहाल तो रत्नेश अपने मजबूत इरादों के लिए दृढ़ संकल्पित है। शाम को बत्रा साहब और दीपक से मिलकर लौटते हुए रत्नेश अपने साथ बहुत सारी सब्जियां और फल भी लेकर आ गया था। कार को बंगले में पार्क कर सब्जियां और फल कार से निकालकर वो बंगले के भीतर चला गया। ड्राइंग रूम के विशाल सोफे पर आनंद प्रकाश बैठे हुए थे। रत्नेश को देखते हुए बोले, आ गए बरखुरदार? हाँ, रत्नेश ने सब्जियां टेबल पर रखते हुए शांति से कहा। और क्या कुछ बोल रहा था बत्रा मेरे बारे में? आनंद प्रकाश ने जिज्ञासावश रत्नेश से पूछा। ऐसा तो कुछ खास नहीं, लेकिन बता रहे थे कि तेरे पिता के मुंह से अपने लिए जल्लीकट्टी सुने बहुत दिन हो गए हैं, वही सब कुछ सुनने एक दिन घर जरूर आऊंगा। रत्नेश ने नहले पर दहला मारते हुए अपनी बात पूरी करी। मेरे बारे में बत्रा कभी अच्छा बोल ही नहीं सकता। और रत्नेश अपने पिता की बात सुनकर मुस्कुरा कर रह गया। अब कल तो कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है? आनंद प्रकाश ने रत्नेश की तरफ देखते हुए कहा। कल तो नहीं, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा याद दिलाया, परसों मुझे दिल्ली जाना है। वैसे किस सिलसिले में? आनंद प्रकाश ने रत्नेश से पूछा। अब छोड़िए पापा, आपको मेरा महाबोर विषय पसंद नहीं आएगा, रत्नेश ने बातों को टालते हुए कहा। फिर भी कुछ तो बता ही सकते हो? आनंद प्रकाश ने अपनी बात रखी। क्यों नहीं, क्वांटम थ्योरी पर मेरा शोध पत्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा जाएगा। रत्नेश ने अब आनंद प्रकाश जी को अपनी बातों से घेर दिया। आनंद प्रकाश ने भी अब खामोश रहना ही उचित समझा। यह विषय वाकई उनके सिर के ऊपर से गुजर गया था। यह तो भला हो उस झूमर का जिसने आकर आनंद प्रकाश जी से खाने का पूछ लिया और आनंद प्रकाश ने तुरंत भोजन के लिए हाँ कर दी और अब वे जी भरकर भोजन करने में व्यस्त हो गए। मंगलवार का दिन था, आज तो रत्नेश को कहीं जाना नहीं था, इसलिए आज उसके पास वक्त ही वक्त था। सुबह के 9:30 बज रहे थे। रत्नेश अपने माता पिता के साथ बंगले के बगीचे में बैठकर बातें कर रहा था। सुबह के 10 बज चुके थे, अपने नियत समय पर झूमर आ चुकी थी। तीनों को बगीचे में बैठकर देखकर उसने कहा, राम राम साहब, राम राम। तीनों ने एक साथ एक स्वर में झूमर से भी कहा। खाने में क्या बनाना है मैम साहब? झूमर ने कुसुम देवी की तरफ देखते हुए कहा। अभी कुसुम देवी कुछ कहती उसके पहले ही आनंद प्रकाश बीच में ही बोल पड़े, आज तो भाई दाल बाटी चूरमा खाने की इच्छा है, लेकिन इसको बनाने से कोई फायदा नहीं साहब, झूमर ने कहा। क्यों भाई? आनंद प्रकाश ने कहा। दाल बाटी चूरमा में तो घी ज्यादा लगता है, इसके बगैर इसको खाने में स्वाद भी नहीं आता, और आप लोगों तो खाने में घी तेल कम वापरते हो, वो आजकल सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना साहब, झूमर ने मासूमियत से अपनी बात कही। अरे वो कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रॉल होता है, रत्नेश ने झूमर के उच्चारण को ठीक करते हुए कहा। हाँ हाँ वही, अब मैं भी क्या करूँ भैया जी, जब भी इस शब्द को बोलती हूँ बोलते वक्त सब गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी तो मैं इसको टालम टोल भी बोल जाती हूँ, झूमर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, टालम टोल भी बोल देते हो, वाह भाई वाह, गजब है, रत्नेश ने कहा। और झूमर द्वारा रखे गए कोलेस्ट्रॉल के इन नए नामकरणों को सुनकर सभी लोग जोरों से हंस पड़े। तो फिर क्या बनाऊं? करीब करीब सभी से झूमर ने पूछ लिया। दाल बाटी चूरमा, सभी एक साथ बोल पड़े। तो कुल मिलाकर यह तय हो गया कि आज के खाने में दाल बाटी चूरमा ही बनेगा। आज पूरे दिन घर में पूर्ण प्रसन्नता का वातावरण बना रहा। आज का बना खाना वाकई स्वादिष्ट और शानदार था। बुधवार की सुबह जल्दी उठकर रत्नेश दिल्ली जाने के लिए तैयार हो चुका था। क्या मैं एयरपोर्ट तक छोड़ने चलूं? आनंद प्रकाश जी ने रत्नेश से कहा। नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, मैंने टैक्सी बुक कर ली है, थोड़ी ही देर में आती होगी, रत्नेश ने कहा।
कुछ देर के पश्चात ही टैक्सी आ गई। टैक्सी में बैठकर रत्नेश एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। इधर कुसुम देवी से बोलते हुए आनंद प्रकाश ने कहा, इसको देखकर ऐसा नहीं लगता मानो ये यहीं सर्विस करता है। अब आपके अनुमानों को तो न जाने क्या क्या लगता है, मैं किस किस अनुमान का हिसाब किताब लगाती रहूं। कुसुम देवी ने अपने जवाब से आनंद प्रकाश जी को निरुत्तर कर दिया। नई दिल्ली पहुंचकर रत्नेश सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां उसे अपने आने की पूर्व सूचना दे दी थी। कुछ प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने उसका स्वागत किया और उस ऑडिटोरियम मिले गए जहां उसे अपना रिसर्च पेपर पढ़ना था, जो कि बेहद महत्वपूर्ण विषय पर था। मीडिया के कुछ पत्रकार भी इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आमंत्रित थे। रत्नेश के प्रभावशाली भाषण ने सभी को बेहद प्रभावित किया। भारत में रहकर अपने ही देश में कार्य करने की मंशा को जानकर पत्रकारों ने रत्नेश का इंटरव्यू भी लिया। यह थी बदलते हुए भारत की शानदार तस्वीर, जिसमें प्रतिभाशाली लोगों के लिए भरपूर अवसर उपलब्ध है। केंद्र सरकार की नीतियों पर ईमानदारी से अमल हो रहा था, यही वजह है कि हर क्षेत्र में विकास और समृद्धि के अवसर तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं। रत्नेश को भी उसके भारत में रहकर कार्य करने के विचार को बेहद प्रोत्साहन और प्रशंसा मिली। पूर्व में भारत में कार्य करने को लेकर बड़ी सभी नकारात्मक धारणाएं धीरे धीरे निर्मूल सिद्ध हो रही है और यही कारण है कि रत्नेश का आत्मविश्वास और उत्साह चरम पर है। देश की युवा पीढ़ी एक बार फिर से उन्नति और समृद्धि का एक नया इतिहास लिखने जा रही है। दिन भर के व्यस्त कार्यों से मुक्त होकर रत्नेश दिल्ली अपने बुक कराए गए होटल में ठहरने चला गया। वहां जाकर सर्वप्रथम उसने अपनी पत्नी अवंतिका को फोन लगाकर अपने दिल्ली आने की खबर भी दे दी और अवंतिका और बच्चों को कब तक दिल्ली पहुंचने के समय को भी जान लिया। ठीक तीसरे दिन रत्नेश पत्नी और बच्चों को लेने एयरपोर्ट पहुंच चुका था और लगे हाथ उसने अपने शहर तक पहुंचने के लिए 4 टिकट फ्लाइट में बुक करा लिए थे। इधर आनंद प्रकाश और कुसुम देवी भी रत्नेश के आने का इंतजार कर रहे थे। सुबह के 10 बज रहे थे। चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ने का लुत्फ उठा रहे आनंद प्रकाश का ध्यान अखबार में छपे चित्र और एक साक्षात्कार पर गया। वे ध्यानपूर्वक इस खबर को पढ़ रहे थे, तभी कुसुम देवी ने उन्हें टोकते हुए कहा, इतनी गौर से कौन सी खबर पढ़ रहे हो, और अखबार के उस हिस्से को कुसुम देवी को दिखाते हुए कहा, जरा देखना ये फोटो और खबर रत्नेश की ही है ना। और कुसुम देवी ने अखबार लेकर जब खबर और फोटो को गौर से देखा तो यही कहा, हाँ यह तो अपना रत्नेश ही है, कमाल है ये लड़का, वहां दिल्ली जाकर इसने इतनी तारीफ हासिल करी और मुझे इस बात की कोई खबर तक नहीं, आने दो इसको, इसकी खबर मैं लेता हूं। आनंद प्रकाश ने देश में आकर कहा, अच्छा अब इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है, यह तो रत्नेश ने बहुत ही शानदार काम किया है। कुसुम देवी ने कहा, बगीचे में बैठी कुसुम देवी कुर्सी से उठकर किचन में जाने लगी, तभी बंगले के सामने एक कार रुकी और कुसुम देवी मेन गेट पर पहुंचकर देखने की कोशिश करने लगी कि आखिरकार कौन आया है। तब तक आनंद प्रकाश की मेन गेट पर आ चुके थे। कार से बारी बारी से बहू और दोनों बच्चे उतर चुके थे। अब यह कुसुम देवी के लिए घनघोर आश्चर्य का क्षण था। दोनों बच्चे, लड़की प्रतिभा और लड़का विशाल, अपने दादा दादी से लिपट गए थे। अवंतिका ने अपने सास ससुर के पैर छुए, टैक्सी जा चुकी थी। सब लोग सामान सहित बंगले के भीतर आ चुके थे। ये सब क्या है रत्नेश, पहले तुम्हारा आना हुआ और अब ये बहू और बच्चों का आना, आखिर कार ये माजरा क्या है। आनंद प्रकाश ने रत्नेश से कहा, मैं बताती हूँ बाबूजी, आपके डर से इन्होंने पहले आपको बताया नहीं, इन्होंने अपनी वहाँ की नौकरी छोड़ दी है और अब यह यहीं रहकर अपने कार्य करेंगे। बड़ी सहजता और आत्मविश्वास से अवंतिका ने अपनी बात कह दी। और तुम्हारी नौकरी बहू, उसका क्या, आनंद प्रकाश ने आश्चर्य से कहा। मैंने भी अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है, अवंतिका ने सपाट भाव से उत्तर दिया। लेकिन बच्चों की पढ़ाई का क्या, आनंद प्रकाश जी ने फिर सवाल दागा। अब ऐसा है बाबूजी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जहां जहां जाए बाले मियां। और कुसुम देवी ने बीच में ही बोलकर अपने बहू की बात पूरी कर दी, वहां वहां जाए पूछ। और इस बात पर आनंद प्रकाश सहित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। इति शुभम, नमस्कार।

0: समुद्र जिसके वस्त्र हैं, पर्वत जिसके स्तन, ऐसी विष्णु पत्नी पृथ्वी को मेरा नमन है। हे माँ, पैरों से स्पर्श करने के लिए तू मुझे क्षमा कर।
1: अभी आप वसुंधरा कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

श्रोताओं, आज सुनहरे पल कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री को जिन्होंने हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर में अपनी मासूमियत, चंचलता और आकर्षक व्यक्तित्व से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। इस गीत के माध्यम से पहचानिए तो हम किसकी बात कर रहे हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सो योर प्लेस और माइन।
4: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
3: कॉन्डम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं, गीत से आपने पहचान ही लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं मासूमियत की चमक, अदाकारी के मिठास लिए और एक खूबसूरत दौर की याद दिलाती अभिनेत्री सायरा बानो को। आज उनका जन्मदिन है। सायरा बानो ने कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा और बहुत जल्दी दर्शकों के बीच अपनी एक पहचान बना ली थी।

0: तो आएगी ना।
1: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सायरा बानो की एक खूबी यह थी कि उनके व्यक्तित्व में एक नटखटपन था तो दूसरी ओर एक खास तरह की गरिमा भी। उनकी फिल्मों ने हमें प्रेम करना सिखाया, हंसना सिखाया और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सिखाया। सायरा बानो की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही है कि उन्होंने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा के एक पूरे दौर को यादगार बना दिया।

सायरा बानो के जीवन की सबसे चर्चित कहानी उनके और अभिनेता दिलीप कुमार के रिश्ते की है। 1966 में उनका विवाह हुआ था। ये रिश्ता हिंदी फिल्मी जगत की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है। दोनों ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनका स्नेह और सम्मान कभी कम नहीं हुआ। दोनों ने सच्चे जीवन साथी होने की मिसाल दुनिया के सामने रखी।

सायरा बानो की फिल्मों को याद करने का अर्थ केवल उनकी कहानी याद करना नहीं है, उनके साथ जुड़ा है हिंदी सिनेमा का वह दौर जब फिल्मी गीतों की धुनें रेडियो पर घर घर सुनाई देती थीं, सितारों की तस्वीरें लोगों के दिलों में बसती थीं। आज सायरा बानो 82 वर्ष की हो गई हैं। हम उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। अब आज का सुनहरे पल कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए।

0: अभी आप सुनहरे पल कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
2: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित

0: प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
2: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
3: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज एमवी ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमा के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय सेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति।

0: चिकन नेक को मिलेगी अभैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है। बोले, चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार, मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार, कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की एलएलबी, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स बीजेपी'स न्यूली फॉर्म्ड टीम एट पार्टी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। पार्टी पासेस रेजोल्यूशन रिगार्डिंग ऑनर एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक लेगेसी ऑफ वंदे मातरम। Center notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And in wrestling, Mansi Lathar wins silver medal at Under-20 World Championships in Slovakia. Tanvi and Komal claim bronze medals. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the Bharatiya Janata Party at its headquarters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening its connect with the people. BJP President Nitin Nobin also held a meeting with the newly appointed national office bearers of the party. During the meeting, the BJP passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. A report.
3: BJP President Nitin Nabin said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. In a social media post, Mr. Nabin said that in the resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programs. He said that the party is resolved to undertake a nationwide campaign through BJP workers to take the history, meaning, national significance and glorious legacy of Vande Mataram to every corner of the country. Following the conclusion of the first meeting of the national office bearers, a national workshop was held with the state presidents, organization general secretaries, among others, for the

बच्चों जरा सोचिए, जिस चांद को हम बचपन से अपनी कविताओं में कहानियों में देखते सुनते आए, उसी चांद की धरती पर भारत ने अपने कदमों के निशान छोड़े हैं। ये सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन की सफलता नहीं है बच्चों, ये उस भारतीय जिज्ञासा की जीत है जो हर बार आसमां को देखकर पूछती है इसके आगे क्या है। और शायद यही सवाल किसी दिन आप में से किसी बच्चे को वैज्ञानिक बनाएगा, कोई रॉकेट तैयार करेगा तो कोई अंतरिक्ष यात्री बनेगा, और कोई ऐसी खोज करेगा जिसका आज हम सिर्फ सपना देख सकते हैं। अक्सर चांद को देखकर आपके मन में भी तो सवाल आता होगा ना बच्चों, कि आखिर चांद पर क्या है और क्या वहां पर भी कोई दुनिया है। तो बच्चों ऐसे ही सवालों से जन्म लेते हैं विज्ञान के नए रास्ते। तो आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर हम भी उड़ान भरेंगे धरती से चांद तक, चांद से सितारों तक, और सितारों से अपने सपनों तक।

0: बच्चों आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो हमारे साथ हैं कुछ बच्चे जो बातें करेंगे अंतरिक्ष की। क्या जानते हैं इस बारे में, चलिए इन बच्चों से ही जानते हैं।
1: आसमान की ऊंचाइयों से आगे अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों तक भारत आज अपनी नई उड़ान भर रहा है। आइए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर जानें भारत की अंतरिक्ष यात्रा और उसकी अद्भुत उपलब्धियों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर मिश्रा है।

0: और मैं आज आपको अंतरिक्ष दिवस के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बना। अंतरिक्ष तकनीक सिर्फ चंद्रमा या मंगल तक जाने के लिए नहीं है, इसका उपयोग मौसम की जानकारी, संचार, जीपीएस, खेती, आपदा प्रबंधन और पृथ्वी की निगरानी में भी होता है। आइए अब कुछ हाल ही के महत्वपूर्ण मिशन के बारे में जानते हैं। स्पेसएक्स मिशन, इसरो ने 2 सैटेलाइट की स्पेस डॉकिंग और अनडॉकिंग सफलतापूर्वक करके भारत को यह तकनीक प्रदर्शित करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। दूसरा मिशन निसार मिशन, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन जिसे 30 जुलाई 2025 को GSLV-F16 से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह में होने वाला बदलावों का अध्ययन करता है। धन्यवाद।
1: जमीन से नजर उठाई तो सितारों का सफर चुना, मुश्किलों ने रोका तो हौसले ने नया असर बुना। जहां ख्वाब खत्म होते हैं वहीं से रास्ता बनाया, भारत ने चांद को छूकर तिरंगा वहां लहराया। नमस्कार, मेरा नाम देवांश रथ है, मैं गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल का छात्र हूं और आज मैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। जिन्होंने कहा भारत चांद तक नहीं जा पाएगा, हमने कहा देखना तिरंगा वहां लहराएगा। जिन्होंने कहा सपना है सपना ही रह जाएगा, हमने कहा यह भारत है तो इतिहास नया बनाएगा। साधन कम थे पर हौसले कम नहीं थे, राहें कठिन थी पर कदम थमे नहीं थे। चंद्रयान ने चांद पर इतिहास रचाया तो मंगलयान ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया। हमने तानों का उत्तर तानों से नहीं दिया, हर सवाल का उत्तर अपनी उड़ान से दिया। जो कल कहते थे भारत कहाँ तक जा पाएगा, वही भारत की उड़ान को सलाम करता नजर आएगा, क्योंकि भारत की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। जहां दुनिया की सोच रुके वहां भारत रुकेगा नहीं। धन्यवाद और जय हिंद।
2: क्या बात है, वाकई में भारत अब रुकने वाला नहीं है बच्चों।
3: कभी आकाश हमारे लिए एक रहस्य था, फिर वो हमारी जिज्ञासा बना और आज वही आकाश हमारे संकल्प का विस्तार है। नमस्कार, मैं गर्व बर्वे आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस केवल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, ये उस स्वप्न का उत्सव है जिसने धरती से उठकर चांद को छुआ और अब तारों से आगे की राह तलाश रहा है। चंद्रयान की यात्रा ने हमें केवल चंद्रमा तक नहीं पहुंचाया, उसने करोड़ों भारतीयों की कल्पना को एक नई ऊंचाई दी है। हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सीमाएं आकाश में नहीं होती, वे केवल हमारी कल्पना में होती है। आज अंतरिक्ष विज्ञान केवल रॉकेट और उपग्रहों तक सीमित नहीं है। मौसम की भविष्यवाणी से लेकर किसानों की सहायता, संचार से लेकर आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष की तकनीक धरती पर जीवन को बेहतर बना रही है। लेकिन भविष्य की कहानी इससे भी बड़ी है। एक ऐसा भारत जहां बच्चे तारों को देखकर केवल कहानियां न बनाएं, बल्कि उन तक पहुंचने के सपने देखें। एक ऐसा भारत जो अंतरिक्ष में केवल पहुंचे नहीं, ज्ञान विज्ञान और मानवता की नई सीमाएं गढ़े। इस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आइए हम आकाश को अपनी सीमा नहीं अपना अगला क्षितिज माने, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष यात्रा पूरी नहीं हुई है, हमने बस अपनी पहली उड़ान भरी है।
2: क्या बात है गर्व, वाकई में हमने अभी अपनी पहली उड़ान भरी है और आगे बहुत बड़ा आसमां है और बहुत सारे सपने भी हैं और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा भी है।

0: दोस्त, मेरा नाम है प्रिशा तिवारी और मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको भी अपने भारत पर गर्व होगा। आपने चंद्रयान 3 के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के अंतरिक्ष की दुनिया में अब एक नया कदम और बढ़ा है। हमारे देश की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने अपना विक्रम 1 रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा है। और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? यह भारत की धरती से किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी का पहला ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च था। यानी अब अंतरिक्ष की दुनिया में सिर्फ सरकारी संस्थाएं ही नहीं, बल्कि हमारे देश के युवा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और स्टार्टअप्स भी अपना कमाल दिखा रहे हैं। मुझे तो यह सोचकर ही बहुत अच्छा लगता है कि आज जो बच्चे साइंस की किताबें में रॉकेट और सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कल उन्हीं में से कोई अपना रॉकेट बना सकता है। और दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष यात्रा यही नहीं रुकने वाली। हमारे वैज्ञानिक गगनयान की तैयारी कर रहे हैं, जिसके जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का सपना पूरा करने की दिशा में काम हो रहा है। मतलब चांद तक पहुंचने के बाद अब भारत की नजर और भी दूर है। तो दोस्तों, अगर आपको भी आसमान के सितारे अच्छे लगते हैं, रॉकेट देखकर रोमांच होता है और अपने मन में हमेशा सवाल आते हैं, आखिर अंतरिक्ष में क्या है? तो सवाल पूछते रहिए, साइंस पढ़िए और अपने सपने को बड़ा रखिए, क्योंकि हो सकता है आज हम आसमान से सितारे देख रहे हों और कल कोई सितारा हमारे बीच से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरे।
1: वाकई में आप में से ही कोई नन्हा सितारा होगा जो आगे चलकर अपनी उड़ान भरेगा। वाकई में बहुत कुछ है बच्चों अभी भी करने के लिए। आसमां भले ही बहुत दूर है, लेकिन आपके जुनून और सपने वहां तक जरूर पहुंच सकते हैं।

0: अंतरिक्ष की बातों के बाद बच्चों हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी मौजूद है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। अपना नाम तो बताइए।
1: है सरायु पांचा, मैं केजी टू में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, उसका नाम है सभी फलों में न्यारा से। सभी फलों में न्यारा से, लाल लाल ये प्यारा से, एक सेब जो रोज खाता, डॉक्टर को वो दूर भगाता, मम्मी मुझको सेब खिला दो या फिर एप्पल जूस पिला दो।
0: क्या बात है, मम्मी मुझको सेब खिला दो या फिर एप्पल जूस पिला दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता सुनाई सरायो आपने। पर मुझे ये बताओ, अभी तो बारिश हो रही है, तो बारिश के ऊपर भी कोई कविता आती है आपको? अगर आती है तो हमें सुनाओ।
1: बारिश आई छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, छाता ऊपर नीचे हम।
0: क्या बात है, छाता ऊपर नीचे हम। बहुत अच्छी कविता हमें सरायु ने सुनाई, और सरायु भी बहुत छोटी है, तो इतनी प्यारी कविता के लिए बच्चों तालियां तो बनती है ना, हो जाए तालियां। बच्चों अगस्त का ये आखिरी सप्ताह एक और प्यारे से रिश्ते की याद दिला रहा है। भाई बहन के प्यार और विश्वास का त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है। बच्चों 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्यार विश्वास और स्नेह का खूबसूरत त्योहार। राखी की ये छोटी सी डोर कितनी खास होती है ना, इसमें सिर्फ रंग बिरंगे धागे और सुंदर सुंदर मोती ही नहीं होते, बल्कि इसमें छिपा होता है बचपन की शरारतों का प्यार, एक दूसरे की चिंता और हमेशा साथ रहने का वादा। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है ना, तो भाई भी उसकी खुशी, सम्मान और सपनों का साथ देने का संकल्प लेता है। और आज के समय में ये रिश्ता सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है, भाई और बहन एक दूसरे की ताकत और सहारा है। तो बच्चों इस रक्षाबंधन पर राखी के साथ एक प्यारा सा वादा जरूर करिएगा कि हम चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, एक दूसरे के दिल में हमेशा करीब रहेंगे, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसमें नोक झोंक भले ही रोज हो सकती है, लेकिन प्यार हमेशा खास होता है। पहली

तो बच्चों आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे देवांश, गर्व, प्रखर, सरायु और प्रिशा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।

0: के सितारे बच्चे हमारे। कल के सितारे बच्चे हमारे।
1: श्रोताओ, ये था कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी सुषमा व्यास। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अब सुनिए लोक संगीत। आज हम आपको बाबूलाल धोलपुरे और साथियों के गाए लोकगीत सुनवा रहे हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
4: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।

लोक संगीत में आज आपने बाबूलाल धोलपुरे और साथियों के गाए लोकगीत सुने। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज हम आपको शुभदा जेजुरीकर की गाई रचनाएं सुनवा रहे हैं।

अभी आप सुगम संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको भीमशंकर राव का राग सिंदूरी आसावरी में ख्याल गायन सुनवा रहे हैं। विलंबित तिलवाड़ा ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं हरदम मूला तेरो नाम। द्रुत तन तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं रे बांग रे। तो आइए सुनते हैं भीमशंकर राव का राग सिंदूरी आसावरी में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आपने भीमशंकर राव का गाया राग सिंदूरा आसावरी सुना। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाड़। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सावन के पावन महीने में पूरे दमोह जिले में भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। सावन के प्रत्येक सोमवार को बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थस्थल जागेश्वर धाम बांदकपुर में श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा निकालते हुए हजारों श्रद्धालु लगातार भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं नागपंचमी के अवसर पर बीते दिनों जिले भर में पारंपरिक कुश्ती और दंगल प्रतियोगिताओं का शानदार आयोजन भी देखा गया। धार्मिक आयोजनों के साथ साथ जिले में देशभक्ति का रंग भी जमकर बरसा। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती पर जिले भर में धूमधाम से आयोजन किए गए। इस अवसर पर दमोह शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद और राज्य मंत्री ने आकाशवाणी के माध्यम से जनता को संदेश भी दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में दमोह जिले के लिए यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वरपाटी पहाड़ी पर मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण पूरा होने के बाद अब परिसर में 500 बिस्तर वाले सर्वसुविधायुक्त अस्पताल के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव मांगा गया है, जिस पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राज्य मंत्री लखन पटेल के प्रयासों से पथरिया क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पथरिया में नवीन स्वास्थ्य केंद्र भवन की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा भवन के साथ साथ दो दो एफ टाइप, जी टाइप और एच टाइप आवासीय गृहों का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला जेल दमोह में बंदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस शिविर में बंदियों को टीबी के लक्षण, बचाव और निशुल्क उपचार की जानकारी दी गई। शिविर की मुख्य विशेषता AI तकनीक से युक्त हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन का उपयोग रहा, जिससे 93 बंदियों का चेस्ट एक्सरे किया गया। इसके साथ ही प्राथमिक आशंका वाले 92 व्यक्तियों के स्पूटम सैंपल विस्तृत जांच के लिए एकत्रित किए गए। जिले के अधोसंरचनात्मक और औद्योगिक विकास के दिशा में भी तेज प्रगति हो रही है। कलेक्ट्रेट में बीते दिनों आयोजित जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में सांसद राहुल सिंह लोधी ने बताया कि दमोह जबलपुर मार्ग को 4 लेन में बदला जा चुका है और एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत दमयंती चना प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने तथा टमाटर प्रसंस्करण और सॉस निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। वहीं करैया रेलवे स्टेशन पर 800 मीटर लंबा नया रैंप पॉइंट तैयार कर लिया गया है। शहर की अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हटानाका के पास जिले के पहले स्थायी फायर स्टेशन का निर्माण शुरू हो गया है। लगभग 1 से 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेशन में दमकल वाहनों की पार्किंग, पर्याप्त जल भंडारण और दमकल कर्मियों के लिए विश्राम कक्ष जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीते दिनों बटियागढ़ के प्रसिद्ध जरीधाम गौ अभयारण्य का भ्रमण कर गौ सेवा की। उन्होंने परिसर में जैविक DAP खाद प्लांट का उद्घाटन किया। मंत्री पटेल ने कहा कि इससे गोबर का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित होगा, किसानों को जैविक खाद मिलेगी और गौशाला प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर पथरिया के बारातघर में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के चौथे दिवस संवाद समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि जनविश्वास अभियान का मूल उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे आम जनों तक पहुंचाना और पात्र हितग्राही को उसका अधिकार दिलाना है। और अंत में बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की। तहसील मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्य मंत्री

0: हरमिंदर सिंह लोधी ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन किया। उन्होंने बताया कि मड़ियादो बंधा किशनगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 74 करोड़ 44 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है और 147 करोड़ 52 लाख की लागत से 21 सड़कों का निर्माण कार्य जिले में जारी है। उन्होंने आगे बताया कि 355 करोड़ 34 लाख की लागत से नवीन मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 29 उप स्वास्थ्य केंद्र, 4 BPHU भवन और जिला अस्पताल के 50 बिस्तरी क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कराया गया है। दमोह पटेरा और जबेरा तेंदुखेड़ा समूह जल प्रदाय योजनाओं से 657 गांवों में पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं सतधारू परियोजना में बांध का काम 100% और नहर का काम 95% पूरा हो चुका है, जबकि पारना जलाशय का काम 87% तथा दादूपुर स्टॉप डैम का काम 50% पूर्ण हो चुका है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो जिले में 6 सांदीपनी स्कूलों का फिनिशिंग कार्य 9 दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। 18 PMC स्कूलों में अटल लैब बन रही हैं और 12 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष व विज्ञान प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं। समारोह में उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मियों और लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मानित किया गया तथा 1500 स्कूली बच्चों ने सामूहिक पीटी प्रदर्शन व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। दमोह जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन का था, वाचन था अभिषेक कटियार का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है।
2: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अब सुनिए विशेष भेंट वार्ता। वाल्मीकि रामायण की चित्रयात्रा राम रंग कार्यक्रम में उपस्थित हैं सहायक पुलिस उपायुक्त श्रीमती सीमा अलावा। भेंट करता है श्री राजेश।

0: श्रोताओं नमस्कार। वाल्मीकि रामायण की चित्र यात्रा राम रंग इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर सीमा अलावा मैडम हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार
1: जी। नमस्कार।
0: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने रामायण के चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने के बारे में जो पहली बार आपने सोचा, कब सोचा और इस विचार के पीछे क्या प्रेरणा थी?
1: इसकी शुरुआत है ना 5 साल पहले हुई थी। मैं पिथौरा आर्टिस्ट भी हूँ, आपका गोंडी पे, आपका वर्ली, और मैंने स्पेसिफिक पिथौरा आर्ट पे बहुत काम किया है। लेकिन उनके साथ साथ मैं एग्जीबिशंस वगैरह में भी जाती थी। लेकिन चूंकि भगवान राम से जुड़े हुए थे, भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, तो एक मन था कि अब पिथौरा शैली में एक बहुत बड़ी रामायण बनाई जाए जिसमें हम उसके पूरे जितने भी रामायण के मेन चीज़ें हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उसको बना के हम प्रदर्शित करें। एक ऐसा भाव था मन में। ये 2005 साल पहले शुरुआत हुआ, लेकिन इसको मैं जो बोलते हैं आपको धरातल पर 2022 में मैंने इसकी शुरुआत की थी और ये अब जाके 2026 में कंप्लीट हुई है। हमने राम रंग एक पेंटिंग बनाई है, जो हमारी पेंटिंग का नाम ही राम रंग है, जो कि 50 मीटर लंबी है, जिसमें हमने रामायण के 54 एपिसोड्स हमने उसमें से लिए हैं और ये आपका 50 मीटर लंबी है और इसमें हमने उत्तरकांड को छोड़ दिया है और युद्धकांड तक, ऐसे हमने 6 कांड के सारे दृश्य हमने इसमें दर्शाए हैं
0: जी। इस विचार के पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?
1: प्रेरणा का तो मैं ये बोलूं कि चूंकि भाव था मन में कि ये ना करेंगे कुछ, और कोई ऐसा टारगेट बेस नहीं था कि हमको कितने समय में बनाना है, बस एक भाव था कि है ना जो रामायण को, चूंकि हम पेंटिंग बनाते हैं तो जनरली आपका भजन में, आपके श्लोक में, आपके रामचरितमानस का पाठ होता है, इसमें सभी सुनते हैं, है ना। लेकिन चित्रों के माध्यम से पूरे रामायण दिखाने का एक चीज थी दिमाग में कि चूंकि हम पेंटिंग करते हैं तो थोड़ा कलर से हमको प्रेम है, तो हम कलर के माध्यम से ईश्वर को दिखाएंगे या उनकी कथा को दिखाएंगे, तो वो हमने इसमें किया है
0: जी। रामायण के इतने बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का जो निर्णय है आपने क्यों लिया?
1: इसका सोच तो बहुत दिन से रहे थे कि बनाएंगे, लेकिन आप बोलते हैं ना कि आपको कैसे शुरुआत हुई, तो मैं चूंकि एडिशनल रिसिप हेडक्वार्टर हूँ और है ना हर महीने हम लोग 12-13 कर्मचारी

0: हमारा रिटायर होते ही होते हैं। तो एक फेयरवेल पार्टी हुई थी, उसमें हमारे एक हवलदार थे
1: जी
0: राम सेवक जी, उन्होंने अपने उसमें भाषण में बोला कि जब भी कोई काम की शुरुआत करनी हो तो कर देना चाहिए, बोले इसको ख़त्म तो फिर ईश्वर ही करा देते हैं। मतलब उनकी बात है ना बिल्कुल ऐसे जहन में बैठी, क्योंकि रामायण ऐसे बिल्कुल प्लान करके हमने शुरू नहीं करी। फिर जिस दिन उन्होंने बोला मुझे लगा कि शुरू तो करेंगे फिर अपना आगे समझेंगे कैसा क्या करेंगे। तो फिर सीधे हमें 50 मीटर का रोल लेके आए और हमने एक थी अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई। करते करते आज हम है ना राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और हमारी पेंटिंग पूरी हो चुकी है।
1: पुलिस विभाग में आप पदस्थ रहे और इस प्रकार के मन में विचार आना और इस तरह इसको मूर्त रूप देना, ये अपने आप में एक महान कार्य है। इसको आपने कैसे अंजाम दिया?
0: जी पुलिस विभाग में मैं आपको बताऊं, हम हैं जरूर जॉब करते हैं लेकिन पुलिस समाज का ही एक भाग है
1: जी
0: ना। मतलब हम पुलिस में आने से पहले हम समाज में थे, हमारे यहाँ तब भी भगवान राम की पूजा होती थी। पुलिस में अब हैं और पुलिस की जॉब के साथ भी हमने भगवान राम की पूजा की, और अब जब हमारी 60 साल की पूरी नौकरी हो जाएगी 60 साल के बाद, तब भी हम भगवान राम की पूजा करेंगे। तो ईश्वर जो है हमारे अस्तित्व में है, हमारे मन में है, जॉब का उसका आपस में कोई वो नहीं है, भाव है, श्रद्धा है, और उसी कारण हमने इसको किया।
1: जी रामायण के अनेक रूपों में आपने वाल्मीकि रामायण को ही आधार बनाने का निर्णय क्यों लिया?
0: वाल्मीकि रामायण जैसे दो अपने हमेशा अपने आपने सुनी होगी, रामचरितमानस है ना, जो पढ़ी भी है, देखी भी है, सुनी भी है मैंने। आपकी जो रामायण थी वो रामचरितमानस पर ही
1: जी
0: बनी, उसके बाद आपकी वाल्मीकि रामायण जब हमने वो पढ़ी उसके बाद फिर वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया, तो वाल्मीकि रामायण में हम थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, क्योंकि एकदम ईश्वर जो थे वो मानव रूप में जन्म लिया और उनके सारे संघर्ष बिल्कुल मानव जैसे थे। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी चमत्कारी कुछ भी नहीं थी, जो नॉर्मल मनुष्य जो काम करता है वही भगवान राम ने किया। जैसे जब सीता माता को है ना लेके गए रावण, तो किसी भी पति का दुखी होना बिल्कुल लाजमी है ना।
1: जी
0: तो वो डिप्रेशन में भी आए, लक्ष्मण जी ने उनको वहाँ से निकालने का प्रयास किया। तो उनके जो वाल्मीकि रामायण में जब आप उनका संघर्ष देखोगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा कि जो बिल्कुल मानव जीवन में अवतरित होकर जो उन्होंने प्रयास किए बिल्कुल सेम वो है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा जो बोलते हैं ना आपको भाव वाल्मीकि रामायण के प्रति आया, और हमने फिर वाल्मीकि रामायण पर बेस ही पूरी रामायण बनाई है।

0: हम सब जानते हैं कि आपकी पहचान जो है पिथौरा कला से है, और आपने वाल्मीकि रामायण को पिथौरा शैली में ही प्रस्तुत करने का निर्णय क्यों लिया?
1: जी, मैंने सोचा तो हमने शुरुआत में यही था कि हम पिथौरा शैली में ही पूरे रामायण बनाएंगे, लेकिन चूंकि ट्राइबल आर्ट है पिथौरा, और ये रामायण सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए ना होके ये सब के लिए बनी थी, इसलिए हमने नॉर्मल एक्रेलिक में हमने इसको बनाया है, नॉर्मल दृश्यों की तरह उसको दर्शाया है ताकि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से समझ पाए। लेकिन चूंकि पिथौरा हमारी पहचान है और चूंकि उससे बहुत आत्मीय जुड़ाव है, इसलिए हमने जो उसकी बॉर्डर ली है, वो जो पिथौरा की जो बॉर्डर बनती है, हमने उस बॉर्डर में हमने इस रामायण को उकेरा है।
0: मैडम, पिथौरा की पारंपरिक शैली और रामायण जैसे महाकाव्य को एक साथ प्रस्तुत करने में आपको किस तरह की चुनौतियां सामने आई, और इन चुनौतियों का सामना आप किस प्रकार किया?
1: चुनौती तो सिर्फ समय की थी, जो कि थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि जॉब ऐसा है,
0: जो पुलिस विभाग में है ये भी काम करना पड़ता है, और इससे समय निकाल कर इस तरह के काम करने में आपको अपने आप को उस तरह का ढालना, मन बनाना और उसको मूर्त रूप देना, ये भी एक अपने आप में कला है।
1: जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमारा दिन का समय हमारे पास बिल्कुल नहीं था। जनरली हम शाम को 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक ही हमारा काम हो पाता था। पहली चुनौती तो यही थी कि आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसा है कि जब तक आपका मन है ना तैयार नहीं होगा, तब तक आप कोई अच्छी चीज़ बना ही नहीं सकते। लेकिन इन 8-9 महीने जो हमने कंटिन्यूस इसमें काम किया, हमने सिर्फ 2 काम किया, अपना जॉब किया और हमने रामायण बनाई। हमारे पास समय की थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन चूंकि मन में इतना उत्साह था, और बोलते हैं ना जिसको ये आप खुद ही नहीं करते हो, ईश्वर आपसे कराते हैं, तो बस वही वाली चीज़ इसमें हुई है कि भाव सिर्फ हमारे अंदर था करने का, हम कराया, हम मानते हैं कि हमको ईश्वर ने ही कराया है, और बहुत अच्छे से हमने इसको पूर्ण किया।
0: जी, क्या इस पेंटिंग में पारंपरिक पिथौरा शैली के अलावा कोई अन्य कला शैली या तकनीक का भी प्रयोग की गई क्या?
1: नहीं, इसमें सिर्फ बॉर्डर हमने लिया है जिसको हमने पिथौरा शैली में बनाया है, और हमने तारक मंत्र जो है श्री राम जय राम जय जय राम होता है, जो कि हमारे गुरु महाराज का तारक मंत्र है, उसको हमने पूरी बॉर्डर के साथ हमने लिखा है, और उस पूरे 50 मीटर के कैनवास में हमने अंदर है ना पूरी रामायण बनाई है।
0: जी, अब बात करते हैं पेंटिंग का आकार और संरचना के बारे में, तो यह पूरी रामायण की पेंटिंग कितनी बड़ी है और इसकी चौड़ाई कितनी है?
1: हाँ, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यह आपका 5 फीट तो इसका है ना चौड़ा है, और जो आपकी लंबाई है उसकी 50 मीटर है, जो तकरीबन 164 फीट होती है।
0: जी।
1: हमने ना जब शुरुआत करी थी तो एक्चुअली ऐसा कुछ सोच के शुरुआत नहीं की थी, बस शुरुआत कर दी थी। जब हमारा 27-28 मीटर हुआ, तब हमको है ना थोड़ा सा आभास हुआ कि अब चूंकि हमारे पास 50 मीटर का ही कैनवास है, तो इसको थोड़ा सा हमको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो 27 मीटर्स बनाने के बाद में फिर हमने पूरी रामायण पढ़ के उसके पूरे एपिसोड्स क्लियर किए, और तब जाके है ना हमारे 54 एपिसोड्स में हमने इसको बनाया है। कुछ चीज़ ऐसी थी कि जिसको हमको मर्ज भी करना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा महाकाव्य है जिसमें 24,000 श्लोक है, 500 सर्ग हैं, उत्तर सहित पूरे 7 है ना इसके अंदर कांड है, और जो आपका रामायण है वाल्मीकि रामायण, जो इस विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसको 50 मीटर में समेट लेना

0: बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने दो तीन सीनों को मर्ज करके, कुछ को हमने थोड़ा शॉर्ट करके, हमने इसको बनाने का प्रयास किया।
1: आपने वाल्मीकि रामायण के कितने कांड और कितने एपिसोड प्रसंग में इसमें चित्रित किए हैं?
0: इसमें हमने है ना उत्तरकांड को नहीं बनाया, हमने सिर्फ लास्ट जो हमारा सीन है वो राम राज्य की स्थापना है, तो सिर्फ हमने वहां तक बनाया है, और उत्तरकांड को छोड़ दिया जाए तो हमने पूरे 6 कांडों का 54 एपिसोड्स में इसका चित्रण किया है।
1: आपने किन-किन प्रमुख प्रसंगों को इस पेंटिंग में शामिल किया है?
0: जी बिल्कुल, हमने अयोध्या कैसी थी, उसके बाद में जो उनका अश्वमेध यज्ञ हुआ था जिसमें भगवान राम का है ना जन हुआ, जो खीर वाला दृश्य था वो
1: जी
0: हमने बनाया, उसके बाद आपका भगवान राम का जब जन्म हुआ तो वो विष्णु जी का अवतार थे, आप जैसे शेषनाग है ना लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे, ये सब दिखाने के लिए हमने भगवान विष्णु को भी हमने उसके अंदर दिखाया, उसके बाद उनके अंदर हमने भगवान राम के जन्म को बताया,
1: जी
0: जब उनके जन्म के बाद में उनकी शिक्षा है, फिर आपका ताड़ का वध हुआ, फिर शिक्षा के लिए बाहर गए, ये दिखाया, उसके बाद उनका स्वयंवर बताया, देवी अहिल्या वाला सीन हमने बताया, ताड़ का वध हमने बताया, आपका सुबाहु वध हमने बताया, इसके बाद जब वो उनका राज्याभिषेक होने वाला होता है जब, तब है ना मंथरा और कैकेयी वाला जो वर मांगने
1: जी
0: वाला एपिसोड है वो हमने एक दृश्य में दिखाया, हमने ना दशरथ जी का वियोग भी इसमें दिखाया।
1: क्या आपने राम के जन्म से लेकर वनवास, सीताहरण, लंका विजय और अयोध्या वापसी तक की पूरी यात्रा को क्रमबद्ध रूप से दिखाया क्या?
0: जी बिल्कुल, हमने इसको पूरे क्रम से ही लेके गए हैं, जैसे सीता स्वयंवर आपका होने के बाद में जब वो लोग वापस चारों भाई शादी करके जब आते हैं हमने वो बताया है, उसके बाद हमने उनका राज्याभिषेक को लेके जो है ना मंथरा और कैकेयी वो वाला हमने सीन बताया है, इसके बाद जब वो उनको उनका वनवास दिया जाता है हमने वो उसमें दिखाया है, निषाद राज उनका स्वागत करते हैं वो हमने दिखाया है, पूरी पेंटिंग्स में चूंकि ट्राइबल से मेरा विशेष लगाव है, ट्राइबल कम्युनिटी से, तो आपके निषाद राज को हमने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है हमने उसको, केवट का गंगा पार कराना, पंचवटी में फिर आना जब भरत उनको लेने आते हैं भगवान श्री राम को और भगवान श्री राम उनको अपनी पादुका देते हैं, हमने वो सीन भी इसमें दिखाया है, इसके बाद शरपंखा आती हैं और वो है ना प्रपोज करती हैं, बात करती हैं वो, उस वक्त है ना लक्ष्मण द्वारा उनकी जो नाक कटी जाती है वो वाला सीन हमने इसमें दिखाया है, सीता हरण हमने दिखाया है, जटायु आपके जब उनकी रक्षा करते हैं सीता माता की और वो उनका पंख काटते हैं वो हमने इस सीन में उनको अच्छे से दिखाया है, इसके बाद अशोक वाटिका में जब सीता माता शोकाकुल होती है और जब वो खाना पीना छोड़ देती हैं, तो ये मुझे लगता है किसी को बहुत कम लोग
1: जी
0: जानते हैं, उसमें ये हुआ था कि इंद्र भगवान आके उनको एक खीर अर्पित करके जाते हैं, ये वाल्मीकि रामायण में
1: जी
0: जनरली ऐसा सुनने को नहीं मिलता, उसमें ये है कि खीर अर्पित करके जाते हैं तब उसके कारण माता को भूख और प्यास लगती नहीं और वो इतने सालों तक लंका में रह पाती हैं, ये वाला दृश्य भी हमने उसके अंदर दिखाया है, फिर पंपा सरोवर और कबंध राक्षस वाला अगर आपको याद हो
1: जी
0: तो वो वाला सीन हमने दिखाया है, शबरी माता जो उनका इतने दिनों से है ना इंतजार कर रही थी वो हमने इसमें दिखाया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में बेर खिलाने वाला लिखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ फल का लिखा है कि माता
1: जी
0: शबरी ने भगवान राम को फल खिलाए थे, तो हमने उसको उस चूँकि वाल्मीकि रामायण पे बेस है हमारी पूरी रामायण, तो हमने उसी हिसाब से उसको दर्शाया है, इसके बाद आपका हनुमान जी और है ना राम जी की का मुलाकात उनको अच्छे से हमने डिस्प्ले किया, इसके अलावा हमने फिर सुग्रीव और बाली का जो युद्ध है हमने वो दिखाया, जामवंत तो उसमें आते हैं, फिर वो जेवर ढूंढने के लिए जाते हैं, हनुमान जी का है ना समुद्र पार करना, ऐसे करके लगभग हमारे 54 दृश्य हैं जो कि हमने बहुत अच्छे से दिखाए हैं।

0: क्या कोई ऐसा विशेष प्रसंग है जिसे चित्रित करना आपको सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण या भावात्मक लगा?
1: हाँ, वाल्मीकि रामायण में ये है कि जब आप माता सीता, जब चूंकि भगवान राम लंका में प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो जब रावण का संहार होता है, उसके बाद आपके लक्ष्मण जी और वो आपके विभीषण और ये लोग माता सीता को लेने जाते हैं, जब लेके वो आते हैं बाहर, तब भगवान राम उन्हें अग्नि परीक्षा के लिए बोलते हैं। ये जो दृश्य है, ये वाल्मीकि रामायण में 12-13 पेजों में इसका डिटेल में वर्णन है। और वो भगवान राम की और सीता की जो बोलते हैं ना भावों की आपस की अभिव्यक्ति है, जो उनका वार्तालाप है, उसको बता पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान अथाह था। लेकिन वो अग्नि परीक्षा देना भी, तो उनको माता सीता को ये समझाने और बताने में उनको बहुत समस्या हुई कि ये क्यों जरूरी है।
0: जी,
1: तो ये दृश्य हमको थोड़ा सा बनाने में भी कठिनाई हुई, लेकिन हमने इसको बनाया है।
0: जी, अब रंग और चित्रांकन की बात करें तो इस पूरी पेंटिंग ने आप किन किन रंगों का प्रयोग किया है, और क्या रंगों का चयन केवल सौंदर्य के लिए है या हर रंग के लिए इसके पीछे कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी है?
1: हमने जो इसका पूरा जो बेस है जो बना है, जैसे जब जंगल का आपका है ना अरण्य कांड चला, तो हमारे मैक्सिमम ग्रीन कलर यूज़ हुआ और कलरफुल बना थोड़ा सा, क्योंकि फूल पौधे पत्तियां सब बनी। इवन जब युद्ध कांड हुआ तो थोड़ा मस्टर्ड में है। स्पेसिफिक हमने ऐसा कोई है ना कलर को लेके बाउंडेशन नहीं रखा, क्योंकि जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो आपको यूज़ करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी ऑरेंज कलर का यूज़ ज़्यादा हुआ है।

0: जो हमने पिथौरा की बॉर्डर बनाई है वो रेड और ऑरेंज पे बनाई है, क्योंकि वो हमारे यहाँ शुभ कलर माने जाते हैं। काले कलर को जनरल सब लोग अशुभ बोलते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट की नज़र में
1: जी
0: काला कलर है ना, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो हमने उसका भी इस्तेमाल किया है।
1: जी क्या आपने इस पूरी पेंटिंग में कोई विशेष मोटिव प्रतीक या पिथौरा के पारंपरिक चिन्हों का उपयोग किया है?
0: जी बिल्कुल, हमारे है ना स्वास्तिक का चिन्ह जो हमारे यहाँ जो सबसे बोलते हैं ना शुभ चिन्ह माना
1: जी
0: जाता है, तो हमने इसकी बॉर्डर में हमने स्वास्तिक का हमने इसका उपयोग किया है। और चूंकि पिथौरा की बॉर्डर में जो इनके पारंपरिक जो चिन्ह होते हैं उनको हमने इसमें उपयोग में लाया है।
1: जी क्या इस पेंटिंग में कोई मंत्र, श्लोक, शब्द या लिखित विवरण भी शामिल किया गया है क्या?
0: हाँ, हमने ना अपना तारक मंत्र, हमारे गुरु महाराज का तारक मंत्र है, श्री राम जय राम जय जय राम, वो
1: जी
0: हमने इसमें लिखा है।
1: जी अब निर्माण यात्रा की बात करें तो इतनी विशाल पेंटिंग को पूरा करने में आपको कुल कितना समय लगा, और आपने यह पूरी पेंटिंग अकेले बनाई या इसमें अन्य कलाकारों और सहयोगियों ने भी आपका साथ दिया?
0: ये समय का तो मैं इसमें एकदम काउंट ही नहीं कर सकती, क्योंकि हमने शुरुआत करी, फिर पता चला महीने भर हम किसी दूसरे काम में लग गए, फिर बीच में हमारा रिक्रूटमेंट था, हम उसमें बिजी हो गए,
1: जी
0: तो ऐसे ऐसे थोड़ा ब्रेक होता गया, लेकिन
1: जी
0: हमने
1: जी
0: पिछले 8-9 महीने मैंने कंटिन्यू काम किया। इसमें मेरे दोनों बच्चे हैं, आर्यन और जानवी, उन्होंने भी थोड़ा बेस वेस बनाने में और ग्रीनरी बनाने में उन्होंने मदद
1: यानी हम
0: करी।
1: कह सकते हैं आपने शासकीय काम करते हुए इस काम
0: जी
1: को अंजाम
0: बिल्कुल,
1: दिया।
0: साथ में और मेरे साथ मेरे दो आर्टिस्ट हैं
1: जी
0: जिन्होंने मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया है, उसमें पवन निषाद और हर्ष जाटव हैं, दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो उन दोनों ने मेरे साथ है ना इसमें काम किया।
1: इन्होंने अपनी भूमिका किस प्रकार निभाई?
0: जनरली पवन का हाथ ना एक्रेलिक में बहुत अच्छा है, तो हमारे हनुमान जी जो हैं वो हमेशा हमारे जो बेस वेस तो
1: जी
0: मैं बना लेती थी है ना, लेकिन हाँ हनुमान जी हमारे पवन ने ही बनाए, और फेस एक्सप्रेशन देने का काम हमारे हर्ष ने किया है।
1: जी क्या चुनौतियां रही?
0: चुनौती मैं बोलती हूँ आई, लेकिन आके सॉर्ट आउट होती रही, मतलब कभी भी हमको बस हम अगर कुछ काम नहीं कर पाए, आगे कर नहीं पाए, तो उसका सिर्फ एक कारण ये था कि हमारे पास समय का अभाव था। पवन अपने पढ़ाई कर रहा है, हर्ष के अपने दूसरे काम है, मेरा अपना जॉब है, तो है ना तीनों को एक साथ मिलना साधना, अब मेरे चूंकि पेंटिंग मेरे घर में बन रही थी इसलिए मेरे पास कभी भी टाइम था, लेकिन इन बच्चों के पास सिर्फ 1-2 घंटे दिन में जब भी उनको समय निकलता था तभी हम लोग सब साथ में बैठ पाते थे, एक वो हुआ। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हमारे पास कभी भी हमको सीन क्रिएट करने में और हमको ये सोचने में कि हम इसको आगे कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि आप जब कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आप उसको दृश्य में कैसे उतारोगे, ये मुझे
1: जी
0: लगता है पेंटिंग का सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा ही है मानती हूँ मैं इसको, कि ये हमको करने में कभी कठिनाई नहीं हो पाई, कि जैसे कभी 3-4 दृश्य थे हमको कभी उनको लगा कि हमारे पास जगह कम है तो हमने उसको छोटा छोटा करके और थोड़ा सा सांकेतिक मोड में जाके, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब है ना आपका समुद्र वाला हमने दृश्य बनाया था
1: जी
0: तो उसमें 3-4 राक्षस उनको रास्ते में मिले थे, लेकिन हमने 2 राक्षस नहीं यहाँ बना के सिर्फ एक ही बार हनुमान जी को उड़ा के पूरा दृश्य बनाया। इसमें हमने भगवान राम एक बार बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ने चले तो उसमें मालूम पड़ा कि भैया वो छोटी सी गिलहरी, वो भी ऐसा लगा कि वो है ना उनको स्थान देना चाहिए था। फिर आपका जो उनकी रामेश्वर स्थापना हुई, जो शिवलिंग की स्थापना करी उन्होंने युद्ध से उसके समुद्र से
1: जी
0: पहले, वो भी हमको बताना था, तो फिर हमने सांकेतिक एक शिवलिंग बनाया, फिर हमने 2 हाथ ब्लू कलर के बना के उसके बीच में हमने है ना उनको बताया गिलहरी को, तो ऐसा करके फिर हमने वो वाला सीन क्रिएट किया। तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उनको बहुत कम जगह में उनको बता पाना ये मुश्किल काम होता है, लेकिन ये हम कर पाए, ये ईश्वर की कृपा।
1: जी आपने चित्रांकन में इन दोनों परंपराओं का कोई प्रभाव दिखाई देता है क्या, या आपने पूरी तरह वाल्मीकि रामायण को ही आधार बनाया है?
0: सिर्फ वाल्मीकि रामायण पर ही हम चले, हम किसी कंट्रोवर्सी में हम जाना भी नहीं चाहते थे। वाल्मीकि रामायण में जो चीज़ लिखी है वही चीज़ हमने दृश्यों के माध्यम से अपने राम रंग में स्थापित की।
1: आपने इस पूरी कृति का कोई विशेष नाम रखा है, इसे केवल रामायण के नाम से ही संबोधित करते हैं, या राम रंग के पीछे आपका क्या विचार है?
0: जैसे हमने जब इसके नाम जब रखने की बात आई कि क्यों हर पेंटिंग का नाम रखा जाता है, तो हमने इसको भी नाम रखना था, तो जो वाल्मीकि रामायण में पूरे रामायण को पौलस्य वध और दशानन वध के नाम से है ना जाना जाता है या लिखा गया है उसमें है ना, जब हमको नाम रखना था तो चूंकि हम चित्रों के माध्यम से हमने और कलर के माध्यम से हमने उसको रामायण को बताया है, इसलिए हमने अपनी पेंटिंग रामायण का नाम राम रंग रखा है, राम रंग वाल्मीकि रामायण की चित्र यात्रा, ये हमारी पेंटिंग का नाम है।

0: और इतनी बड़ी कृति पर आपने अपना नाम या कलाकार के रूप में अपनी पहचान किस तरह अंकित की?
1: हमने बिल्कुल अंकित नहीं की, क्योंकि भगवान राम अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है और जो उन्होंने किया है उसको हमने सिर्फ और सिर्फ चित्रों के माध्यम से हमने पेंटिंग में है ना बोलते ना दर्शाया है या बनाया है ना, तो हम बहुत छोटे हैं भगवान श्री राम के आगे, कुछ भी नहीं है, है ना। तो
0: लेकिन फिर भी पेंटिंग के रूप में इसे दर्शाना ये भी ये बहुत बड़ा काम है, और इसके लिए आपको कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त हुआ है क्या?
1: हाँ,

0: एक्सेलेंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड,
1: हाँ
0: एक्सेलेंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमको रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने हमको अप्रिशिएशन दिया है इसके लिए, और उसमें हमने अपना नाम दर्ज किया है सिंगल रोल ऑफ कैनवास में सबसे बड़ी रामायण के लिए हमको दर्ज किया है।
1: आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इसके लिए, और यह उपलब्धि आपके लिए व्यक्तिगत और एक कलाकार के रूप में कितना महत्वपूर्ण है?
0: यह एक जीवन में इतनी बड़ी संतुष्टि देगा ये रामायण बनाना कि मैं आपको उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मतलब आप बोल रहे हो ना, आप हर पेंटिंग के ऊपर मैं अपना नाम लिखा करती थी, है ना, और करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इतनी बड़ी जो रामायण बनी ना, इसमें भाव ही नहीं आया कि है ना हम इसके अंदर अपना नाम लिख लें, क्योंकि हम बिल्कुल इसमें आश्वस्त हैं, हमको 1% भी डाउट नहीं है कि ये हमारा सिर्फ ईश्वर की कृपा के कारण ही हुआ है।
1: जी, भावात्मक और व्यक्तिगत अनुभव की अगर बात करें तो जब आपने पहली बार इस पूरी रामायण को बनाकर सामने देखा उस समय आपके मन में क्या भाव आया?
0: पूरी रामायण तो हम खोल ही नहीं पाए, हम 27 meters जब बन गई थी तब हमने उसको एक बार डिस्प्ले किया था हमारे घर, क्योंकि हमको वीडियो बनाना था उसका। इसके बाद दूसरी बार वो डिस्प्ले हुई थी ये ना स्टेट प्रेस क्लब में, तब भी हमारा करीबन 28 meters समथिंग कुछ हुआ। इसके बाद जब हमारी पूरी रामायण बन गई तो हमको पता है कि हमने क्या क्या सीन बनाया, जो फोल्ड होती रही, तो अभी तक पूरी की पूरी आपके 50 meters की रामायण एक बार भी अभी पूरी कंटेंट्स नहीं खुली है।
1: जी, और इस रामायण को बनाने की यात्रा ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन किया?
0: एक बहुत संतुष्टि का भाव देके गया ये रामायण। मैं मानती हूँ कि है ना जो कुछ होता है ईश्वर की कृपा से होता है, और रामायण जैसा काम जो है ना वो बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं हो सकता। तो जीवन में एक संतुष्टि देके गया और ये सिखा के गया कि कुछ भी हो जाए जीवन में, संघर्ष है तो ही जीवन है। तो जीवन को, संघर्ष को आप सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं हो सकता हमेशा, है ना, और कोई भी चीज़ है वो नियत है। मतलब भगवान राम को आपको राज्याभिषेक होना था, किंतु दूसरे दिन वो चले गए जंगल में, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। सीता माता की शादी हुआ, उनका विवाह हुआ, बहुत अच्छे राज परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने 13 साल पूरे जंगल में निकाले और शायद बहुत दुख झेले उन्होंने। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो तय है, बस आपको प्रेजेंट में रह के उनको फेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वाला भाव जो है मुझ में ये ना इस रामायण के बाद ही आया, और एक अथाह संतुष्टि है कि ये ना जो भी ये सब ठीक है।
1: जी, क्या राम के चरित्र को इतने करीब से समझने और चित्रित करने के बाद राम के प्रति आपकी समझ या दृष्टि में कोई बदलाव आया?
0: भगवान राम को मैं आज से नहीं जानती, मैं ना जब छोटी थी तब से मैं उनकी पूजा करती हूँ, वो मेरा हमारे आराध्य रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी काम होता है तो ना भगवान ना राम का नाम लेके किया जाता है। जब हम थोड़ा सा अगर व्याख्या करने बैठे कि है ना, अगर आप बोले ना कि भगवान राम क्या है, आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर दें, तो भगवान राम को एक्सप्लेन करने में ही है ना 12 से 13 पेज वाल्मीकि रामायण में है, जिनमें उनकी है ना उनकी शांति, उनका बोलते हैं ना जिसको तेज, ठीक है, उनका चंद्रमान की उनकी शीतलता, ये पूरी रामायण में सिर्फ एक ही बार उनको गुस्सा आया था, जो बोलते हैं ना जिसको थोड़ा सा एग्रेशन बोलते हैं, क्रोध था, वो तब आया था जब 3 दिन वो समुद्र की जब पूजा करने बैठे थे और उसके बाद भी समुद्र ने जब उनको रास्ता नहीं दिया था ना, तब उनका एक बार गुस्सा था पूरे रामायण में। इवन आपको जब उन्होंने रावण को मारा और जब उन्होंने सब कुछ किया तब भी उनके है ना भाव वैसे नहीं थे। तो ये कैरेक्टर है उनके, है ना, हाथ बहुत लंबे थे, उनके हाइट बहुत ज़्यादा थी। अब उनके कलर को लेकर अगर बात करें ना, पूरे उनकी आँखें बहुत है ना बहुत बड़ी थी, जो उसमें रामायण में जो भगवान राम का उल्लेख किया गया है उसमें, बस है ना जो उनके कलर के बारे में थोड़ा सा बात बोलना चाहूँगी कि वो उसमें ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि उनकी जो आभा थी वो बड़ी चमकदार थी, है ना। तो पूरे रामायण में हमने ब्लू कलर से भगवान राम को बनाया है, और ब्लू कलर में से उसका पर्पज़ भी ये था कि चूंकि आपके पूरे रामायण में आपके लक्ष्मण भी हैं, फिर आपके बाली भी हैं, फिर विभीषण भी है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे थे। तो इसलिए जैसे आपके सुग्रीव भी हैं और आपके हनुमान जी भी, आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। तो हमने कोशिश करी है कि हमने एक ही कलर से, जैसे हमने हनुमान जी को एक ही कलर के कपड़े पहनाए हैं, तो पूरी रामायण वो एक ही कलर के कपड़ों में है, तो समझ में आ जाएगा कि ये हमारे हनुमान जी है। चूंकि ब्लू कलर में भगवान राम को बनाया है, तो पूरे रामायण में ब्लू

0: में मतलब इंडिकेशन है ये कि ये हमारे भगवान राम ही हैं।
1: जी
0: इवन है ना, हमने रावण को हमेशा ब्लैक कलर के वस्त्रों में दिखाया है। तो ये सब अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया है ताकि समझ में आ जाए कि, और वैसे भी आप जब देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि है ना क्या कैरेक्टर हैं। और आपके इक्ष्वाकु वंश में जो उत्पन्न हुए भगवान राम जो जन्म लिए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा है ना कुल है, जिसको मैं बोलते ना, जिसको मन में, मन को वश में रखने वाले महाबली,
1: जी
0: कांतिमान, धैर्यमान, जितेंद्रिय, ठीक है, सौम्यता में चंद्रमा के समान, क्रोध में कालाग्नि के समान, क्षमा में वो पृथ्वी जैसे हैं, त्याग में कुबेर जैसे हैं, सत्य में धर्मराज के समान हैं, उत्तम गुणों से युक्त, सत्य पराक्रम करने वाले, सद्गुणशाली, ऐसे हैं भगवान राम।
1: जी और इस पूरी यात्रा में ऐसा कौन सा क्षण है जिसे आप जीवन भर याद रखना चाहेंगे?
0: पूरी रामायण में जब हमने हनुमान जी को हर जगह है ना हेल्प के लिए खड़ा पाया उनको, पूरी जब हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी और जब हम उसको देखते हैं, बनाते हैं, मतलब कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जब हनुमान जी को अपना काम करना था और वो वहाँ कोई अवेलेबल नहीं थे। मतलब सीता माता को ढूंढने से लेकर, संजीवनी बूटी लाने से लेकर, हर जगह वो भगवान राम के है ना साथ में थे। और मैं बोलूँ बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे पूरे रामायण में, जिनके कारण ही ये काम संभव हो सका। वो मुझको लगता है एक ही कैरेक्टर दिखता है, वो है हनुमान जी। लेकिन कहीं भी है ना, वो बिल्कुल हमेशा नम्रता में और शीश झुकाए भगवान राम के सामने मिले पूरे वाल्मीकि रामायण में। तो एक ये चीज़ है ना बहुत प्रभावित करती है कि आपके पास इतना होते हुए भी आपका विनम्र बने रहना।
1: जी आपने इतना मेहनत किया और इतनी सुंदर कृति की आपने रचना की। अब बात आती है जब जन जन तक ये पहुंचेगा तभी आपका मेहनत सफल हो पाएगा और लोग जो है रंगों के माध्यम से भगवान राम को समझ पाएंगे। और अब जब रामायण की यह विशाल कृति पूरी हो चुकी है तो इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए आगे की क्या योजना है?
0: ये बहुत ही मुश्किल है ना सवाल है, और इसका जवाब भी उतना ही मुश्किल है। हमको जब भी समय मिलेगा और जहाँ भी हमको मौका मिलेगा, हम इसको एग्जीबिट जरूर करेंगे। इसको फर्स्ट टाइम अभी हम है ना दिल्ली में है ना
1: जी
0: ITPO दिल्ली में अभी एक एग्जीबिशन होने वाला है 26 से 30 अगस्त में, फिल्म एक्सपो के नाम पे। उसमें एक आर्ट एग्जीबिशंस हैं, तो उसमें हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, एक बात। दूसरे के अभी हमारा सिंहस्थ होने वाला है,
1: जी
0: तो सिंहस्थ 2000 जब होगा आपका, उसमें हम है ना अगला वाला सीन्स तब हम उसको जरूर डिस्प्ले करेंगे। और हमारी सिर्फ एक मंशा कि हम आपका सिंगल रोल ऑफ कैनवास पे पूरे रामायण एक साथ है ना दिखा पाएं, ये एक हमारा भाव है। हमारा इसमें 40 से 50 लीटर के आसपास हमारा कलर लगा है,
1: जी
0: हमारा समय लगा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना, ये बहुत भाव के साथ बनी है, इसलिए इसमें मेरी अथाह श्रद्धा।
1: इसे आप कहाँ कहाँ प्रदर्शित करना चाहेंगे और क्या इस रामायण को लेकर आगे की कोई प्रदर्शनी यात्रा या पुस्तक या डॉक्यूमेंटेशन या अन्य कोई प्रोजेक्ट की योजना है क्या?
0: हाँ, इसके ऊपर अभी सबसे पहले तो इसको हम सबसे पहले हम दिल्ली में एग्जीबिट कर पाएँ, एक ये सोचा है। और जहाँ हमको मिलेगा कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ, जैसे अयोध्या है आपका, उज्जैन सिंहस्थ है, अगर हमको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि अभी ऐसा कोई प्लान में है नहीं और ऐसा कोई दिमाग में भी नहीं है, लेकिन कहीं कोई ऑफर आएगा तो हम बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जहाँ अगर डिस्प्ले करने का मौका मिला, हम जरूर करेंगे। अभी हमने जो जितना हमने पढ़ा है और जो हमारा भाव है, हमने चित्रों के माध्यम से उकेरा है, लेकिन इन्हीं चित्रों को हम प्रिंट रूप में लाके पूरी रामायण जो हमने एपिसोड्स बनाए हैं उनको एक्सप्लेन भी हम करेंगे। तो ये हमारा आगे का हमारा इसका प्लान है, जिसमें हमने अभी 2 एपिसोड्स चूँकि मैंने लिखे हैं, अब पता नहीं कब टाइम मिलेगा और है ना कितना टाइम मिलेगा और कब कर पाएंगे, मैं अभी आपको कमिटमेंट नहीं कर सकती। लेकिन 100% राम रंग नाम की हम अपनी पुस्तक हम जल्द से जल्द प्रकाशित करेंगे।
1: जी अब बात है रंगों के माध्यम से राम को समझना, और अगर आपको भगवान राम को केवल कुछ शब्दों में प्रभावित करना हो तो आप राम को कैसे वर्णित कर पाएंगे?
0: भगवान राम को ना शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है, जिन्होंने, क्योंकि मेरे पूरे काफ़ी समय से भगवान राम को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बस मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि गंभीरता में समुद्र के समान और धैर्य में वो हिमालय के समान, ऐसे बिल्कुल शांत स्वभाव के भगवान श्री राम हैं।
1: जी।

0: जैसे मैं बोलूँ ना, उन्होंने वानरों की सेना बनाई, जंगल में थे वो क्या कर सकते थे जंगल में, तो उन्होंने वानरों की सेना बनाई, ठीक है। जब समुद्र आया तब थोड़ा सा जो इम्पॉसिबल था, है ना, आप सोचोगे तो अब असंभव ही लगता है ना, लेकिन उन्होंने हर चीज को करने का प्रयास किया, और चूंकि करने का प्रयास किया तो काम हुआ भी। तो मेरे को एक ये चीज समझ में आती है कि करने से ही होता है। आज मैंने रामायण सिर्फ सोचती रहती तो नहीं होती, लेकिन जब मैंने शुरुआत करी तो बनी। तो कोई भी काम होता है जीवन में, मुझे लगता है कि करने से होता है, इसलिए हम जहां हैं जैसे हैं हमको प्रयास करना चाहिए।
1: राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और आज की पीढ़ी को रामायण और राम के चरित्र से आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश तो मेरा बस यही है कि आपका जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, बस है ना, उसको हम है ना सामना करते रहे।

0: रामायण का कोई या नाम या कितनी बड़ी है?
1: ये टोटल हमारा 50 मीटर है, 164 फीट
0: जी। और अगर आपको अपनी इस पूरी कलात्मक यात्रा या पिथौरा से लेकर राम रंग और वाल्मीकि रामायण तक को एक वाक्य में कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे?
1: राम रंग श्री वाल्मीकि रामायण की चित्र यात्रा
0: जी। और अंत में राम रंग को देखने वाला व्यक्ति इस पेंटिंग से क्या लेकर जाए, आपकी क्या सबसे बड़ी अपेक्षा है?
1: अब मैंने जो कि बनाई है तो मुझे उससे अच्छा, मुझे को अब तक लगता है कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा जो काम किया है ना मैंने अब तक यही किया है। और जब है ना मेरी रामायण को या मेरे राम रंग को देखे तो भगवान श्री राम की जीवन यात्रा से वो अभिभूत

0: हो पाए, बस ये एक मंशा है। क्योंकि क्या होता है, हमारे हमारी पेंटिंग्स में कोई ग्लैमर नहीं है ना।
1: जी
0: हमारी पेंटिंग में सिर्फ सिंपल कैनवास है, सिर्फ सिंपल कलर है और पूरी यात्रा है, लेकिन हमारा भाव उसमें अथाह है। मतलब बड़ी श्रद्धा के साथ बनी। जब हम रामायण बनाते थे, जब हम रामायण बनाते थे, हम कुछ खाते पीते नहीं थे। जब हम भगवान राम रामायण ने हमने जितने टाइम बने, हमने बिल्कुल ये माना कि हनुमान जी आसपास होंगे, वो हमको देख रहे होंगे। तो बोलते हैं ना, पूरी भाव और पूरा
1: जी
0: श्रद्धा हमने उसके अंदर समर्पित किया है ना। हमने हमेशा रामायण जब भी बनी, हमने एक आसन हनुमान जी के लिए हमेशा रखा कि वो जहाँ भी कहीं हो, वह आसपास रखें, हम पे कृपा बनाए रखें कि हम इस रामायण को पूरी कर पाएं। तो मैं आपको बताऊँ ना, कोई चीज़ होती है सिर्फ भाव से होती है। और भगवान की पूजा बोले या भगवान श्री राम की है ना, तो वो भगवान तो सिर्फ भाव के होते हैं। जितना भाव आप लोगे
1: जी
0: उतना रिजल्ट मिलना है।
1: मैडम, आपने रामायण चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया और पुलिस में भी थे, तो दोनों के भाव अलग-अलग हैं। जरूरी है कि ये जो दोनों में जो भावात्मक जो अलग-अलग है, इसको सामंजस्य स्थापित करते हुए किस प्रकार आप अपने को उसमें केंद्रित किए और इस ओर अग्रसर हुए कि इतनी सुंदर कलाकृति बन गई।
0: जी बिल्कुल। मैं देखो, आप मैं बोलूँ, पुलिस को भी आप थोड़ा सा पॉजिटिव समझें, है
1: जी
0: ना। पुलिस में काम करने कोई कोई नेगेटिव काम चीज़ नहीं है। हम समाज की खराब चीज़ों को खत्म करने का काम करते
1: जी
0: हैं, ठीक
1: और
0: है।
1: अच्छी वाली चीज है उसको हम
0: हाँ
1: समाज में देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, पॉजिटिविटी
1: जी
0: है पुलिस में। कम्युनिटी पुलिसिंग हम देखते हैं। मैं हेडक्वार्टर में काम करती हूँ, मैं पुलिस के वेलफेयर के लिए काम करती हूँ, महिलाओं के साथ अपराध नहीं अवेयरनेस में काम करते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी में लगे काम करते हैं, है ना। कोई भी अपराध करता है तो उसे दंड देने का काम भी करते हैं, उसको FIR लिखते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम पुलिस में होते हैं। तो पुलिस के काम को कभी मैंने नेगेटिव काम माना ही नहीं। और चूंकि मैं 21 साल 2 महीने की थी, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, तो मेरे दिमाग में पुलिस के अलावा कोई दूसरा थॉट है ही नहीं कि कोई दूसरा कोई काम मुझे करना है। अगर आप मुझे अभी पूछेंगे कि आपको आगे क्या करना है, अगले जन्म में कुछ और जॉब लेना चाहेंगी, तो मैं बिल्कुल मैं पुलिस का जॉब ही लेना चाहूंगी। क्योंकि ये देशभक्ति जनसेवा है। मतलब ऐसा सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है, जो लोग काम करते हैं वो भी इसको फील करते हैं। हम आपके सारे त्यौहार जो होते हैं, जब लोग अपने घर में त्यौहार मनाते हैं, तो पुलिस आपके सड़कों पे होती है। आपके कोविड में आप खुद ने आपने देखा होगा
1: जी
0: कि जब सब अपने घरों में सुरक्षित अपने आप को रख रहे थे, लेकिन पुलिस और डॉक्टर्स ही थे जो कि आपके कहना रोड पे थे। ऐसे काफी लोगों
1: लॉ एंड
0: का
1: ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल ना।
1: जी
0: तो पुलिस एक बहुत पॉजिटिव काम है। और अगर पुलिस के साथ अगर मैंने अगर अपने रामायण को किया है, तो जो मेरे रामायण बनाने में जो पॉजिटिविटी थी मेरे अंदर, वो किसी काम के कारण प्लस माइनस नहीं हो सकती। जो आप अगर सकारात्मकता के अंदर आपके हैं, तो आप किसी भी फील्ड में काम करें वो आपके अंदर रहेगी।
1: जी अंत में चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं ये नहीं बोलती कि आपके जो भी ईश्वर हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, बस समर्पण ही आपको कुछ दे पाएगा। और जीवन में हमको कुछ थोड़ा सा छोड़ना भी सीखना पड़ता है। हम हर चीज़ को लगा के नहीं रख सकते हैं। भगवान राम ने इतना, जब वहाँ से निकले थे तब तो भगवान राम थे, लेकिन जब उन्होंने छोड़ा साम्राज्य अपना, छोड़ा, जब जंगल में आए सिर्फ एक पिता के एक वचन के लिए, तब जाके वो श्री राम बन पाए हैं। तो आप संघर्ष करेंगे, आपकी लाइफ में जब कुछ है ना प्रॉब्लम आएगा, जब आप उससे आगे बढ़ेंगे, तभी आप कुछ है ना कुछ बन पाएंगे। तो इन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और इनका सामना करना चाहिए।
1: और तभी रामराज की स्थापना हो पाएगी।
0: जी बिल्कुल।
1: और डॉक्टर सीमा अलावा मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए और वाल्मीकि रामायण की चित्र यात्रा रामरंग इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी सुंदर व्याख्या की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।

0: अभी आप सुन रहे थे विशेष भेंट वार्ता वाल्मीकि रामायण की चित्र यात्रा राम रंग। कार्यक्रम में उपस्थित थी सहायक पुलिस उपायुक्त श्रीमती सीमा अलावा। आपके साथ बातचीत की श्री राजेश ने। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
1: हेलो, नमस्ते।
2: नमस्ते, कौन बोल रही हैं? कहां से बोल रही हैं?
1: मैं नंदिनी तिवारी बोल रही हूं।
2: नंदिनी तिवारी जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: जी सर, नियमित श्रोता हैं आपके।
2: जी जी जी जी जी। अच्छा जी, बताइए कि मौसम तो बहुत बेहतरीन होगा।
1: जी बिल्कुल, बारिश हो रही है।
2: हाँ हाँ,
1: और आपके यहाँ?
2: और हमारे यहाँ बस मौसम अच्छा, ठंडा ठंडा हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि फोन करेगी सुनने में, जब आपने कॉल किया है तो हमें सबसे गाना कौन सा सुनोगे आप?
1: हॉन्टेड।
2: हॉन्टेड, अच्छा हॉन्टेड बोल रहे हैं आप। हॉन्टेड देखते हैं, बिल्कुल जरूर। हॉन्टेड का कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: तुम हो मेरा प्यार, ये वाला सॉन्ग है उसमें।
2: अच्छा, तुम हो मेरा प्यार।
1: और डेडिकेट आपको, मेरी सिस्टर रानू दीदी को रहेगा। और आप कैसे हैं सर?
2: बिल्कुल ठीक ठाक है, बेहतरीन सदाबहार। तो चलिए, आप रेडियो
1: हमेशा की तरह
2: हमेशा की तरह। तो आप सुनिए अपने रेडियो सेट पर ये गाना। Christmas

0: हमारे अगले कॉलर कौन है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया
0: जी,
1: जिला गुना, एमपी से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ सर।
0: मांगीलाल जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल सर जी, बस है, आपकी दुआ है और भगवान की कृपा है, और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जब आपने कॉल किया है तो लाजमी है कि आपने पहले से गाना सोच लिया होगा।
1: हाँ सोच लिया ना,
0: कौन
1: सोच
0: सा गाना
1: लिया।
0: बताइए।
1: इनका नाम है सांझ और सवेरा।
0: सांझ और सवेरा, अरे वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार गाना। इसका टाइटल सॉन्ग भी बहुत अच्छा है।
1: इनका नाम ही शानदार है, सांझ और सवेरा।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: अजब ना आए बालमा, सावन बीता जाए।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत
1: अभी
0: शानदार।
1: आपसे मतलब बहुत दिनों बाद बात हो रही है, अच्छा लग रहा है।
0: अरे वाह, देखिए क्या होता है कि जब जब बात होती है, जब जब अच्छा लगता है, हम नहीं तो किसी और से बात हो तब भी अच्छा लगना चाहिए।
1: तब भी अच्छा लगता है, ये बात भी सही है सर जी, ये बात भी सही है।
0: और बताइए।
1: बस बढ़िया है, बारिश चार रुक थी हुई है और खेती किसानी का काम करते हैं सर जी, खेतों में मक्का है, सोयाबीन है, धान है, खरीफ की फसलें लगी हुई है और बढ़िया मौसम है, आसमान में काले काले बादल है लेकिन बरस नहीं रहे।
0: बरसेंगे बरसेंगे, बस थोड़ा सा
1: जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं है सर,
0: नहीं है तो उनसे कहिएगा कि आगे चले जाए जहाँ जरूरत है वहाँ
1: चले जाए। अभी पूर्वी पूर्वी मध्य प्रदेश में चल रही है बारिश सर।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: पश्चिमी से पूर्वी में गई है सर।
0: हाँ हाँ हाँ, वैसे
1: कुछ मित्रों को याद कर सकता।
0: बिल्कुल कीजिएगा।
1: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, वसंती लाल जी हैं, फूल सिंह पाल जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, प्रेम दास बाबा जी हैं, और हमारे मित्र खेसरी सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
0: तो चलिए आपका गाना हाजिर है सांझ और सवेरा का, अजहू ना आए बालम सावन बीता जाए।

0: कार्यक्रम
1: हेलो,
0: फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: मैं बोल रहा हूँ पंडित शिवनारायण तिवारी सागर से। जी
0: सागर से, क्या बात है तिवारी जी। तो तिवारी जी, फोन करेगी सुने में आपने कॉल किया है, तो लाजमी है कि आपने गाना बहुत अच्छा चूज किया होगा।
1: आई मिलन की रात,
0: आई मिलन की रात, क्या बात है, क्या बात है। कौन सा गाना है आई मिलन की रात
1: वो तो
0: का?
1: पानी बरस रहा है उसी उपलक्ष्य में।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: कौन सा गाना है कि बोल तो बता दीजिए।
1: सावन का महीना आया है।
0: सावन का महीना आया है, वाह क्या बात है।
1: आपकी
0: तो
1: आवाज तो बहुत अच्छी लगती है।
0: अरे क्या बात है, धन्यवाद। देखिए, जब सच्चे मन से अगर हम किसी से जुड़ते हैं तो लाजमी है कि उसकी बातें, उसकी हर शब्द अच्छा लगने लगता है।
1: जी सर, जी सर,
0: ऐसी तरह हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप कॉल करते हैं, हमारे
1: जी
0: श्रोता
1: सर।
0: जब
1: कुछ
0: हमारे साथ
1: कुछ
0: में।
1: बहुत से श्रोता हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं, श्रोता भी बहुत बढ़िया है।
0: हाँ, श्रोताओं से ही तो हम लोग हैं। अगर श्रोता अगर हमारे अच्छे हैं
1: जी सर,
0: तो लाजमी है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दें।
1: हाँ सर, आपके लिए डेडिकेट और नंदिनी तिवारी और रानू गुप्ता जी को।
0: अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, सुनिए आपके रेडियो सेट पर ये गाना।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, श्रीपाल जाखड़े, पुणे महाराष्ट्र से।
0: जाखड़े जी, क्या हाल चाल है?
1: हाँ जी, अच्छे हैं। यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है सर, लगातार बारिश हो रही है इधर।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो बारिश होना चाहिए लेकिन इतनी हो गई, कम से कम बस्तियों में पानी ना भरे, तब तक तो बहुत
1: हो रही है इधर। हाँ, हो रहा है इधर।
0: अच्छा जी जी जी, तो महाराष्ट्र में तो इस बार बहुत अच्छी बरसात हुई है ज्यादातर इलाकों में।
1: ऐसा नहीं है पूरे इसमें नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, पर हमारे एरिया में ज्यादा है, पुणे बॉम्बे कोंकण इधर।
0: अच्छा,
1: बारिश है।
0: तो बरसात का पानी नदी है क्या पास में, जो आपके आसपास कोई सी?
1: हाँ, डैम है सर इधर पास में।
0: अच्छा,
1: डैम के पास में और पहाड़ी भी है, थोड़ा पहाड़ी इलाका है। तो पुणे से हम लोग दूर रहते हैं, मतलब आश्रम में रहते हैं हम।
0: अच्छा अच्छा,
1: आश्रम में जी।
0: तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने फोन करेंगे सुने में हमारे के हिस्सा लिया है तो लाजमी है कि आपने बहुत अच्छा गाना चूज किया होगा।
1: हाँ जी, पुराना गाना किया है
0: जी,
1: मुकेश जी का गाना सुनना है
0: जी।
1: 27 तारीख को मुकेश जी की पुण्यतिथि है।
0: तो कौन सा गाना?
1: इस उपलक्ष्य में हमको सरस्वती चंद्र का गाना सुनना है, मुकेश
0: अच्छा।
1: जी का गाना हुआ।
0: हाँ, बहुत अच्छा गाना है।
1: हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को, ये गाना है।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सोनम, में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जिला से राहुल ध्रुवे बात कर रहा
0: हूँ। ध्रुवे जी, क्या हाल चाल है?
1: अच्छी है सर, अभी तो।
0: अच्छा, तो देखिए, आपने जिस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपको कार्यक्रम का नाम तो मालूम है। आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के?
1: इसमें आपका 8:30 बजे आता है
0: सुरमई सवेरा।
1: और नमस्कार भोपाल
0: जी,
1: और फोन करेगी इसके लिए तो लाजवाब होता है सबसे अच्छा।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है। तो आप इससे पहले कितने दिन पहले आपने कॉल किया था?
1: सर 10वां दिन है।
0: 10वां दिन है, 10 दिन पहले कॉल किया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि जिस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया है, तो सोचा होगा आपने कि ये गाना मैं खुद सुनूं और सबको सुनवाऊं, ऐसा कौन सा गाना है?
1: हाँ सर, इस सनम मूवी का है सर।
0: सनम का, सनम जी।
1: हाँ, इश्क में तेरे रब, इश्क में मेरे रब्बा।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना डेल्टे के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूं। सर
0: यादव जी, क्या हाल चाल है?
1: सर जी बहुत अच्छे हैं, और आपसे बातचीत हो रही है तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: क्या बात है, मानो
1: जी जी बिल्कुल सर, बारिश भी हो रही है लगातार दो चार दिन से, बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी तो।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो अच्छा लगना चाहिए हमें। जब मन से सुंदर, मन से मतलब बहुत अच्छा लगता है ना, तो हर जगह हमें अच्छा अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
0: तो कहते भी है ना, वो मन में मन चंगा तो कठौती में जंगा, क्या है ऐसी कुछ कहावत है, मुझे कुछ याद।
1: बिल्कुल इधर भी बोलते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।
0: हाँ हाँ हाँ, बस यही कहावत है कि आप मन से प्रसन्न रहिए, हर जगह आपको प्रसन्नता दिखेगी। जो भी काम कर रहे हैं आप, उस काम को मन लगा के कीजिएगा, उसमें मजा लीजिएगा, देखिएगा इतना अच्छा मजा आता है, आपको भी अच्छा लगेगा और सारे लोग जो जिस काम का इंतजार कर रहे हैं वो भी अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: अच्छा, आपने कॉल किया है हमारे फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने में, तो लाजमी है कि आपने कुछ ऐसा गाना चूज किया होगा जो आपको भी अच्छा लगे और हमारे जो दूसरे श्रोता हैं उनको भी अच्छा लगे, तो बताइए कौन सा गाना है।
1: जी सर, फिल्म का नाम रहेगा नसीब और गीत की बोल रहेगा जिंदगी इम्तिहान लेती है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जी सर
0: धन्यवाद।
1: जी जी ओके सर, सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: धन्यवाद जी। तो चलिए हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं।
1: जी जी
0: सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो, नमस्ते सर,
0: नमस्ते
1: मैं रानू बोल रही हूँ देवास से।
0: जी। रानू जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक हो? आपके क्या हाल चाल?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। तो अच्छा रानू जी, मुझे ये बताइए, पिछली बार कॉल कितने दिन पहले लगा था?
1: कितने दिन हुए? लेकिन 15-20 दिन, क्योंकि देखो
0: 15-20 दिन
1: हमारा
0: ना, बस
1: कॉल में
0: ठीक है ना।
1: इंटरेस्ट।
0: अच्छा अब ये बताइए कि आपने कॉल किया है तो बताइए कौन सा गाना है जो आप खुद सुनना चाहती हैं और सबको सुनवाना चाहती हैं?
1: हाँ, मूवी का नाम है चालबाज और गाने के बोल हैं किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, और ये सॉन्ग नंदनी को डेडिकेट रहेगा।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमेल बुगला।
0: अरे वाह क्या बात है। तो ये बताइए कि रेडियो के ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जो आकाशवाणी मध्य प्रदेश के आप सुनते हैं?
1: जी सर, रेडियो का कार्यक्रम में डीटीएस के माध्यम से आपका सुनता रहता हूँ। जो पत्र वाला आता है वो भी सुनता हूँ, और जो महिलाओं के लिए आता है 1 बजे से वो भी सुनता हूँ, और जो आपने वो कार्यक्रम आता ना जो लोक संगीत का कार्यक्रम 1:30 बजे से,
0: हाँ,
1: अलग अलग राज्य के
0: जी,
1: कभी रीवा की प्रस्तुति हो गई, कभी इंदौर की प्रस्तुति हो गई,
0: तो
1: वो भी सुनता रहता हूँ।
0: तो मतलब आप हमारे नियमित श्रोता हैं?
1: जी।
0: अच्छा ये देखिए, जब आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है तो आपने लाजमी ऐसा कोई सा गाना सोचा होगा जो बहुत अच्छा
1: जी,
0: है।
1: मैं आज गाना सोचा है, फिल्म का नाम है छोटा सा घर।
0: छोटा सा घर?
1: हाँ जी।
0: अच्छा
1: तो गाने के बोल है, तेरी आंखों की कसम

0: करके फोन करेगी, सुने में आपका स्वागत है, कौन बात कर रहे? हेलो
1: जी, नमस्ते सर।
0: नमस्ते,
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: जीनत परवीन जी, जीनत जी क्या हाल चाल है?
1: अच्छे सर,
0: चलिए खैरियत से हैं
1: जी, सब ठीक है।
0: चलिए देखिए, आपने जब कार्यक्रम में हिस्सा लिया है तो लाजमी है कि आप बहुत अच्छा गाना सुनेंगे। अच्छा ये बताइए, आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो आप सुनती हैं?
1: जी सुनती हूँ ना, महिलाओं के ऊपर आता है वो, और ज्यादा फरमाइश से सुनती हूँ, बात आपकी गीत हमारे।
0: और फोन करें गीत सुने भी
1: सुनती हूँ ना, तो फिर बस जब तक बच्चे स्कूल रहते हैं जब तक सुन लेती हूँ, फिर बच्चे ले लेते हैं मोबाइल, तो फिर
0: अच्छा अच्छा ये बताइए, ऐसा कौन सा गाना आपने पसंद किया है जिसको आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है कालिया।
0: कालिया जी जी जी,
1: और गाना है जहाँ तेरी ये नजर ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ जितने, ये वाला।
0: अरे वाह, तो लीजिए अपने रेडियो सेट पर सुनिए ये खूबसूरत गाना
1: जी। शुक्रिया सर।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। वहीं परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस अवसर पर कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में परस्पर सहयोग मजबूत करने के लिए एकजुट होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों से घर घर जाकर मिलने और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता से निराकरण करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पटवारी पदों ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि आज रात तक है। अभ्यर्थी रात तक अपने आवेदन पत्र में संशोधन और सुधार कर सकते हैं। वहीं मौसम की अगर बात करें तो प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है और भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कोलंबो में शुरू हो गया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

पेश है आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिका, प्रतीक, नवनीत, अनिल और साहिल। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। आप सभी ने सुनना चाहा है हमराज फिल्म का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब आप सबको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम दास, श्रीमती कस्तूरी आराधना, सैनिका, उपमा और नीतिका। बड़वाहा से प्रवीण, श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज, श्रीमाली। आप सभी ने सुनना चाहा है कभी कभी फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर की आवाज़ है। साहिर लुधियानवी ने इसके बोल लिखे हैं और खयाम ने तर्स बनाई है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

धमतड़ी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनिज्वल डेरे, आदर्श नगर मटोल से राज शर्मा, मीना

शर्मा, योगेश मैंटी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा, आप सभी ने सुनना चाहा है विजयपथ फिल्म का नगमा कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। ज़मीर कासमी के बोल हैं और तर्ज बनाए अनु मलिक ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और अब आप सभी की फरमाइश लिखने वाले हैं वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर, अलकमा और अलताश, यहीं से लिखने वाले हैं रमेश गौण और शादाब खत्री, गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आप सभी ने सुनना चाहा है इज्जत फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

0: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: श्रोताओं, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
8: अंगवा की रात पे जी।
6: और झूलते झूलते सुनते हैं
4: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
6: अरे दीदी, धीरे धीरे।
9: मालवा की शान
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
9: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रहना।
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
5: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक जमुनिया का पांचवा भाग।

0: अभी तक आपने सुना कि रतन और जमुनिया एक गांव में रहते हैं। उन्हें भूमिहीन होने के कारण शासन द्वारा ग्राम समाज की जमीन दी जाती है, जिस पर वे खेती करते हैं। प्रारंभिक कठिनाइयों से उबरते हुए वे अपनी मेहनत से अच्छी पैदावार की आस लगाए हैं। गांव में न सड़क है, न पानी, न स्कूल, न अस्पताल। उधर एक दीवान है जो सारे संसाधनों पर कब्जा किए बैठा है। शासकीय सहायता को भी अपना बताकर गरीब किसानों पर कृपा की तरह उपयोग करता है। इसी बीच एक अधिकारी गांव का दौरा करता है और दीवान से शासकीय सूचनाओं और सहायता को गांव वालों को देने का निर्देश देता है। अब आगे।
1: अरे क्या हुआ जमुनिया? अरे ठीक तो हो?
2: अरे कुछ नहीं हुआ, और हो भी जाए तो यहाँ मुआ अस्पताल भी तो नहीं है और ना कोई डॉक्टर है।
1: अब जो है सो है, क्या करेंगे, हम कर भी का सकते हैं। अरे पर बताओ तो सही, क्या हुआ है, उल्टी क्यों हो रही है, कुछ गलत सलत तो नहीं आ गया खाने में?
2: अरे अब इतने भोले भी मत बनो जी, हमारे यहाँ नया मेहमान आने वाला है।
1: क्या कहा, सच्ची?
2: तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ?
1: चलो अच्छा है, इस बार गोलू की बहन गोली।
3: क्या है बाबू, मुझे बुलाया क्या?
1: अरे नहीं रे, तू सो जा।
3: पर मैंने तो सुना गोली गोलू कुछ कुछ
2: तेरे बारे में बात कर रहे थे, तुझे बुला नहीं रहे थे रे, चल सो जा। हाँ
3: अच्छा माई,
1: क्या ख्याल है?
2: देखो गोलू सुन रहा है, आगे एक और गोलू आएगा या गोली कौन जानता है, पर हाँ गोली आई तो मुझे भी बहुत खुशी होगी।
1: चलो जरा ध्यान रखना, वजन का काम मत करना, कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना।
2: तुम तो वैसे भी मेरा इतना ध्यान रखते हो मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। सुना है आज जो शहर से अफसर आए थे तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे।
1: हाँ रे, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, पर एक बात पता चली।
2: क्या?
1: सरकार ने गांव में हैंडपंप लगाने के पैसे दिए हैं।
2: हाँ?
1: पर ये दीवान तो कुछ करता ही नहीं है।
2: इसकी नियत ठीक नहीं है, क्या पता खाद भी सरकार ने ही इसे दिया हो और अपनी बताकर बेच रहा हो।
1: हाँ जमुनिया, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, यही होगा।
2: अब तुम आराम करो। हाँ
1: अरे तुमने इतनी अच्छी खबर दी कि अब सोने का मन ही नहीं हो रहा।
4: क्या हो करण भैया, आज दूर दूर से चले जा रहे हो, अरे लगाओगे नहीं एकाध घूंट?
5: आज जेब एकदम खाली है भाई।
4: अरे
5: का करें, ससुर कुत्ते से भी बदतर हो गई है जिंदगी।
4: जेलो
5: भिखारी बनाकर रख दिया भाई ने मुझे।
4: अरे जे तो ज्यादती है करण भाई, तुम्हारा भाई इतना काम करता है, है? तुम सबका पेट भरने के लिए, इतना भोला भाला भाई किसे मिलता है, है?
5: अरे काहे का भोला भाला, अपनी मीठी मीठी बातों से सबको ठग रहा है।
4: और क्या?
5: और उसकी बीवी जमुनिया?
4: हाँ हाँ।
5: अरे वो तो और भी चतुर है।
4: अच्छा,
5: इसको तो ठीक मैं ही करूँगा।
4: हाँ
5: सुन,
4: हाँ
5: उधारी में पिलाता हो तो रुकूं।
4: करण भैया, अरे जे कोई नई बात तो है नहीं, है? उधारी तो तुम पीते ही रहते हो, आओ लगा लो एकाध घूंट।
5: देख भाई, एकाध घूंट देना हो तो मना कर दे, नहीं तो पिला जितना मैं पीना चाहूं।
4: अरे करण भैया कैसी बात करते हो, जितना चाहे पी लो, आओ आ जाओ।
5: ठीक है ठीक है।

0: सुनने ये इधर आ।
1: जी मालिक।
0: वो जो दूसरे गांव में पंप लगाने वाले मिस्त्री हैं, उन्हें बुला के लिया जल्दी।
1: पानी वाला पंप लगाने वाले मालिक?
0: नहीं, तेरी साइकिल पे हवा भरने वाला पंप। गधा कहीं का। अबे जो जमीन में गाड़ कर पानी निकालते हैं वो पंप।
1: ठीक है मालिक, जाता हूँ।
0: जल्दी से जा और फटाफटा। इस अफसर ने तो किरकिरी करा दी साली हैं? इस गांव में आने से पहले बताया ही नहीं उसने।
1: क्या मालिक?
0: अबे अभी तो यहीं खड़ा है
1: जी।
0: गया नहीं?
1: मैं समझा आप मुझसे कुछ कह रहे हैं।
0: अरे तुझसे कुछ नहीं कह रहा, तू भाग।
1: जी अच्छा मालिक।
0: अरे तू तू ए तू इधर आ।
2: जी सरकार।
0: तू जा उस रतन को बुलाकर लेकर आ।
2: जी सरकार।
0: अरे फटाफट जा फटाफट आ।
2: जी मालिक जी, अभी गया और अभी आया।
0: ये क्या खालियत आ गया? रतन कहाँ?
2: वो मालिक रतन घर पर नहीं था मालिक
0: है?
2: हाँ, उसकी औरत को बोला आया हूँ, जैसे ही घर लौटे उसे भेज दे, मालिक का हुकुम है।
0: अरे उसे खेत पर देखना था ना। अरे वहीं होगा। अच्छा, जा जा खेत पर जाओ, बुला के लिया।
2: अच्छा अच्छा मालिक, जो हुकुम मालिक। अभी गया मालिक।
0: आइए आइए रतन बाबू, कैसे मिजाज हैं आपके?
3: अच्छा हूँ मालिक, हमसे कोई गलती हो गई?
0: अरे नहीं नहीं भैया, अरे आप कहाँ गलती करते हैं। अरे गलती तो हम करते हैं। हाँ भैया, आपको पट्टा दिलवाया गलती की, आपका खेत जुतवाया गलती की, अरे आपको खाद दिया गलती की। अरे भैया सभी गलतियां तो हम नहीं की हैं, अरे आपका क्या?
3: बात क्या है मालिक?
0: बात क्या है पूछ रहा? अबे जब वो अफसर यहाँ आया था तब मुंह से फूट नहीं सकता था कि दीवान जी ने खाद दिया, हमारा खेत जुतवाया। मोहनी बाबा बन के खड़े रहे। अरे हमारी ओर से कुछ कह नहीं सकते थे तुम?
3: आगे से ध्यान रखूंगा मालिक, मुझे पता ही नहीं था कब क्या कहना ठीक रहेगा, सो चुप रहा।
0: चुप रहा, चल ठीक है, जो हो गया तो हो गया। अच्छा सुन, ये खेत में कुछ कीटनाशक डालना, खरपतवार से भी जान बचेगी और कीट पतंगे भी मरेंगे। हमारे पास है, जरूरत हो तो ले जाना।
3: जी अच्छा मालिक।
0: अभी ले जा, चल ले जाकर घर में रखना और जरूरत पड़ने पर छिड़क देना, पर सावधानी बरतना भैया, बहुत ही जहरीला होता है। हाँ जहरीला, समझ रहा है ना?
3: जी मालिक।
0: संभाल कर रखना, कहीं खाने पीने की चीज में ना गिरे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ
3: अच्छा मालिक।
0: अरे सुनो, इसे एक डब्बा खरपतवार कीड़े मकोड़े नष्ट करने वाली दवाई दे देना भैया। देख भैया रतन, हम तो तेरे भले की सोचते हैं, तू भी सोचा कर। और हाँ सुन, हम जल्दी गांव में हैंडपंप लगवाने जा रहे हैं। हाँ अच्छा रहेगा ना?
3: हाँ अच्छा रहेगा मालिक।
0: अरे भाई इतनी दूर से तुम लोग पानी लाते हो, भैया हमें तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ
3: आपकी मेहरबानी मालिक।
0: जा जा वो जा, कीटनाशक ले ले जाकर।
3: ठीक है मालिक।
0: भैया संभाल के रखना। हाँ समझ गया ना, बड़ा जहरीला होता है ये।
3: जी मालिक जी।
0: ठीक है जा।
4: और यूं ही कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभवों के साथ रतन और चमुनिया के दिन बीतने लगे। आखिर पहली धान की फसल पककर तैयार थी। अच्छी फसल देख रतन और चमुनिया बहुत खुश थे। उन्हें लगा उनके बुरे दिन अब बीत गए, अब तो अच्छे दिन आएंगे। रतन और चमुनिया अपने खेत पर फसल काटने की तैयारी में हैं।
3: अरे चल चमुनिया, धान काटने का समय आ गया, अब अपने भी अच्छे दिन आ जाएंगे।
5: हाँ जी, सुनो सबसे पहले दीवान का कर्जा चुकाएंगे। हाँ
3: हाँ तुम ठीक कहती हो जमुनिया, सबसे पहले हम कर्जा ही चुकाएंगे।
5: हाँ जी,
3: पर तुम्हारे दिन भी तो नजदीक आते जा रहे हैं, उसके लिए भी तो कुछ बचाना पड़ेगा।
6: अरे जरूर बचाना भैया, सभी के दिन नजदीक आ रहे हैं। धान का आधा हिस्सा छोड़कर काटना, आधा मैं काटूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको।
5: हाँ हाँ, खाली काटने में हिस्सा बांटने आए हो। जब खटना था तो कमर में तकलीफ हो गई थी, क्यों है ना?
6: तुम्हारे मुंह तो मैं लगता नहीं, सो तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है। मैं भैया से बात कर रहा हूँ। और हाँ, दीवान जी ने तुम्हें बुलाया है, कर्ज का हिसाब किताब करो।
3: हाँ भाई, हमें पता है दीवान जी का कर्ज उतारना है, पर ये आधे पौने का बंटवारा कैसा? अरे कैसी बातें कर रहे हो, हम दो हैं क्या?
6: हमारे दो मुंह हैं भैया, दो पेट हैं, तो हम दो ही हुए ना। और रोज रोज की खिटपिट मुझे पसंद नहीं है, तो अलग कर ही दो हमें।
3: पता नहीं कौन सिखा पड़ा रहा है तुम्हें, पर चलो यही सही, ले लो आधा हिस्सा।
5: कैसे आदमी हो जी, नहीं दोगे तो ये क्या कर लेगा? आधा बांटता है तो अगली फसल से होगा, ये जोते बोए कमाए, इसमें तो इसका एक दिन का भी नहीं बनता। बाकी आपकी मर्जी,
3: जैसे कल वैसे आज। ये धान इसके जीवन भर तो काम आएगा नहीं, फिर ये हमें याद करेगा। याद, हमारे पास अपनी मेहनत ईमानदारी है जमुनिया, हम भूखे नहीं मरने वाले, तुम चिंता मत करो।
5: बात चिंता की नहीं, हक की है, जायज नाजायज की है, आगे तुम जानो। और हाँ, आज जाकर दीवान से मिलकर हिसाब कर लो, पता तो चले कितना लेना देना है।
3: हाँ तुम ठीक कहती हो जमुनिया, आज ही जाऊंगा।
6: जब जाना तो मुझे भी बता देना, मैं भी चलूंगा साथ।
3: आज ही शाम को जाएंगे।
6: ठीक है।

0: प्रणाम मालिक।
1: अरे रतन तुम आओ आओ, सुना बड़ी अच्छी फसल आई है तुम्हारी। पर भैया तुम तो हमें भूल ही गए।
0: अरे हम आपको कैसे भूल सकते हैं मालिक, आपका कर्जा लिए हैं, वो हर दम सिर पर सवार रहता है।
1: अरे ऐसा भी क्या भाई, आ गए हो तो बता दो इस बार कितना लौटाओगे। भैया पहली बार कर्जा लिए हो तो तुमसे ब्याज तो लेंगे नहीं। हाँ
0: पूरा चुका देंगे मालिक।
1: पूरा पूरा चुका दोगे?
0: जी मालिक।
1: अरे भैया इतनी हैसियत तो दिखती नहीं तुम्हारी, अरे चाहे कितनी भी अच्छी फसल हो।
0: नहीं मालिक, आपकी दया से फसल अच्छी आई है, 10,000 का तो हो ही जाएगा।
1: क्या कह रहे हो, 10,000? 10,000 से पूरा कर्जा कैसे अदा होगा?
0: तो मालिक
1: पूरे 25,000 ले गए हैं आप श्रीमान रतन राम। गिनने में भूल हुई है या कहीं लुटा पटा दिए हो या लेकर भूल गए हो, ये तुम जानो।
0: क्या मालिक 25,000?
1: हाँ पूरे 25,000 लिए हैं तुमने।
0: इतना बड़ा गजब मत करिए मालिक।
1: अरे गजब की क्या बात, अरे भाई देखो क्या हो गया ऐसे।
2: देख
1: बेहोश होके गिर रहा है ये तो। अरे कोई पानी लाकर पिलाओ, और चेहरे में पानी छिड़को इसके।
2: हवा करो, हवा करो, हवा करो। उठ भाई रतन, उठ उठ।
1: देखो सुनो सुनो, अभी इसको इसके घर पहुंचाओ।
2: हाँ मालिक।
1: अभी बात करने की हालत में है नहीं ये।
2: जी मालिक, जी मालिक।
0: अब तो हम जीने की ही हालत में नहीं है।

0: भैया।
1: देखो रतन, तुम धीरे धीरे अदा कर देना, आज ही तुमसे सभी रकम नहीं मांग रहे हैं। और झूठ सच की बात तो है नहीं भैया, कागज में लिखा है, तुम्हारे अंगूठे का निशान भी है, और ये लो करण भी आ गया, इसके अंगूठे का भी निशान है गवाही के लिए। हम काम पक्का करते हैं। हाँ, अरे हाँ करण
0: जी,
1: बताओ तो सही कि तुम्हारे भाई साहब ने कितना उधार लिया था?
0: पूरे 25,000 दिए थे। हाँ। मेरे सामने की तो बात है, अब क्या बोल रहे हैं ये?
1: कह रहे हैं 10,000 लिए थे।
0: ये तो गलत बात है भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप?
2: चुप, मेरा भाई है, इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ, अरे तेरी जुबान को कीड़े काटे। इतना संकोच करके मैंने 10,000 लिए थे, सिर्फ 10,000, और तेरे सामने की बात है, आज जाने क्या हो गया है। मैं चलता हूं मालिक, जिंदा रहा तो ये झूठ भी पचा जाऊंगा, 25,000 भी चुका दूंगा, पर गजब कर दिया आप सबने, गजब कर दिया।
3: अरे अरे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ जी, ऐसे क्यों लड़खड़ा कर चल रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना?
2: बड़ा गजब हो गया जमुनिया, बड़ा गजब हो गया।
3: क्या हुआ?
2: करण और दीवान ने मिलकर बड़ा धोखा कर दिया हमारे साथ।
3: कैसा धोखा, कुछ साफ साफ बताओ तो सही, क्या हुआ?
2: तुझे तो पता है कितना कर्जा लिया था दीवान से।
3: हाँ हाँ।
2: वो भी इस करण की जोर जबरदस्ती करने से।
3: हाँ हाँ, 10,000 तो लिए थे बस।
2: 10,000 लिए थे ना?
3: हाँ।
2: और वो दीवान कहता है 25,000 लिए हैं हमने।
3: क्या?
2: और करण भी गवाही दे रहा है। हाँ? कि 25,000 ही लिए हैं।
3: क्या?
2: अरे इतना बड़ा गजब, अरे काम, अरे हम कुछ समझ में नहीं आ रहा जमुनिया।
3: इन मुंहों की जबान गल जाए, कीड़े पड़े इनके मुंह में, तुम्हारे जैसे आदमी से छल किया है, कुत्ते की मौत मरेंगे ये। सुनो, आप हिम्मत मत हारो, जिंदा रहे तो ये भी चुका देंगे। हाँ, आप चिंता मत करो।
2: जिंदा कैसे रहेंगे जमुनिया, ये तो ठीक गर्दन पर वार कर दिए, चक्कर आ रहे हैं, अरे ये दुनिया घूम रही है मेरे आगे।
3: आप संभालो।
2: अपना क्या होगा जमुनिया, क्या होगा?
3: सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा गोलू के बापू। चलो चलो, खाना खा लो, सो जाओ।

मकोड़े ही तो हैं हम, कीड़े मकोड़े हैं। माफ कर देना हमें जमुनिया, हमें माफ कर देना।

0: अरे अरे इसे उठा, पानी छिड़को, पानी छिड़को, थोड़ा सा पानी छिड़को, होश में आओ नहीं तो बच्चे को खतरा हो सकता है।
1: थोड़ा संभाल जमुनिया, जोर लगा जमुनिया, जोर लगा बेटा।
0: लो संभालो, बेटी हुई है जमुनिया। जमुनिया, तुझ पर बिजली तो गिरी है, पर अब इसे सहना भी तुझे ही पड़ेगा। कोई तेरा दुख बांटने वाला नहीं है।
2: तुम ठीक कहती हो अम्मा, इनके अंतिम संस्कार करने में थोड़ी मदद करो मेरी।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ हाँ।
2: इस हाल में तो मैं कहीं जा नहीं सकती। ये चाबी लो, बक्से में थोड़े पैसे हैं, निकाल लो।
1: हम तेरे साथ हैं जमुनिया, हम तेरे साथ हैं बेटा, सब इंतजाम हो जाएगा।
2: अभी गोलू सो रहा है, इसी समय इन्हें बाहर निकाल दो।
1: रात में मट्टी बाहर नहीं निकालते जमुनिया, रात में नहीं निकालते बाहर।
2: जो कुछ सबके साथ होता है वो हमारे साथ कहाँ हो रहा है अम्मा।
1: शांत हो जा, धीरज धर, धीरज धर।
2: तुम तो किसी को बुलाकर इन्हें बाहर रख दो, चाहे सवेरे कर देना। सॉरी मैं आके उड़ता भी तो नहीं रखना चाहिए ना।
1: चुप हो जा जमुनिया, धीरज धर, धीरज धर। जमुनिया
0: चुप हो जा बेटा, जमुनिया चुप हो जा बेटा।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम, जिसमें आपने सुना जमुनिया का भाग 5। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार की भावना और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के संकल्प का प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। यह ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः इस बात पर केंद्रित थी कि वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार किया जाए अथवा मौजूदा असमानता को बरकरार रहने दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों से घर घर जाकर मिलने और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में हल्की बारिश होने की संभावना है। आगर मालवा में श्रावण माह के अंतिम सोमवार यानी कल श्री बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी राजसीय ठाटबाट के साथ निकाली जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। और महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। पूल ई का यह मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। मृत्यु के बाद भी जीवन में उजाला भरे, नेत्रदान करे और किसी की दुनिया सवारे। जी हाँ बहनों, आज हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं मृत्यु के बाद भी दूसरों की नजर से जीवित रहे के विषय में। बहनों, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हम सभी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। बहनों, आंखें हमारे जीवन का सबसे अनमोल अंग है। इनके माध्यम से हम प्रकृति की सुंदरता, अपने प्रियजनों के चेहरे और इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी कारणवश अपनी दृष्टि खो चुके हैं। उनके लिए नेत्रदान आशा की एक नई किरण बन सकता है। बहनों, नेत्रदान का अर्थ है अपनी मृत्यु के बाद अपनी आँखों का उपयोग किसी जरूरतमंद व्यक्ति की दृष्टि लौटाने के लिए करना। यह केवल एक दान नहीं बल्कि किसी के जीवन में प्रकाश और खुशियां देने का महान कार्य है। बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि हमारे नेत्र किसी दूसरे व्यक्ति को दुनिया देखने का अवसर दें तो हमारी याद उसकी आँखों के माध्यम से हमेशा जीवित रह सकती है। इससे बड़ी मानव सेवा और क्या हो सकती है। बहनों, नेत्रदान को लेकर समाज में कई भ्रांतियां भी हैं। हमें इन भ्रांतियों को दूर करके लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए। हमें अपने परिवार और मित्रों को नेत्रदान के महत्व के बारे में बताना चाहिए तथा योग्य चिकित्सक संस्थानों के माध्यम से इस प्रक्रिया और नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। बहनों, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हमें केवल नेत्रदान करने के लिए ही नहीं बल्कि मानवता, संवेदनशीलता और परोपकार का संदेश देता है। एक व्यक्ति के जाने के बाद उसकी आंखें किसी दूसरे के जीवन में उजाला ला सकती हैं। आइए इस राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े पर हम संकल्प लें कि हम नेत्रदान के महत्व को समझेंगे, समाज में जागरूकता फैलाएंगे और मृत्यु के बाद भी किसी की आंखों में दुनिया देखने की खुशी देंगे।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाह

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं भारत की उस महान और गौरवशाली परंपरा के विषय में, जिसने सदियों से पूरे विश्व को प्रेम, शांति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया है। देश की गौरवशाली परंपरा वसुदेव कुटुंबकम। बहनों, भारत केवल एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है, भारत एक विचार है, एक संस्कृति है, एक जीवन दर्शन है। यह वह भूमि है जहां अनेक धर्मों, भाषाओं, जातियों, परंपराओं और विचारधाराओं के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि पहचान केवल उसके देश, धर्म, भाषा या जाति से नहीं होती, बल्कि सबसे पहले वह एक मानव है। इसी महान विचार को हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा ने एक अत्यंत सुंदर वाक्य में व्यक्त किया है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात यह अपना है और यह पराया है, ऐसी गणना छोटे मन वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। यही है वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती को अपना परिवार मानने की भावना। बहनों, यदि हम भारतीय संस्कृति के इतिहास को देखें तो हमने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया की कामना की है। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें और सभी का कल्याण हो। हमारी प्रार्थनाओं में भी केवल अपने परिवार या अपने समाज का नहीं, बल्कि समस्त संसार के कल्याण का भाव रहा है। भारत की भूमि में भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया। इन सभी के संदेशों में मानवता, प्रेम, सत्य, करुणा और सद्भाव का महत्व दिखाई देता है। बहनों, भारत की महानता केवल इस बात में नहीं है कि हमारे पास हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता है। हमारी वास्तविक महानता इस बात में है कि इतने लंबे इतिहास के बावजूद हमारी संस्कृति सह अस्तित्व और समन्वय को अपनाया। बहनों, हमारी विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति है। यही कारण है कि भारत को अक्सर विविधता में एकता का देश कहा जाता है। हमारे यहाँ अतिथि के लिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। इसका अर्थ है कि हमारे द्वार पर आने वाला अतिथि सम्मान के योग्य है। भारतीय संस्कृति ने हमें प्रकृति के साथ भी परिवार जैसा संबंध रखना सिखाया है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, युद्ध और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे समय में भी वसुदेव कुटुंबकम का विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि मानवता की कोई सीमा नहीं होती। आज के युवा इस महान परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटने की बजाय उन्हें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जब हम इस समानता को समझते हैं तभी वसुदेव कुटुंबकम का वास्तविक अर्थ हमारे जीवन में उतरता है। सबका सम्मान करो, सबके सुख की कामना करो, प्रकृति की रक्षा करो, मानवता को सर्वोपरि रखो और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझो। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने आचरण में भारतीय संस्कृति की इस महान परंपरा को जीवित रखेंगे, क्योंकि हम केवल भारत के नागरिक नहीं हैं, हम इस विशाल मानव परिवार के सदस्य भी हैं। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं हम सभी के जीवन से जुड़े विषय पर, कम खर्च में घर को व्यवस्थित कैसे चलाएं। बहनों, घर केवल ईंट पत्थरों से बनी हुई एक इमारत नहीं है। घर वह स्थान है जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ रहते हैं, सुख दुख बांटते हैं और अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर सुखी, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहे, लेकिन इसके लिए केवल अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती। सही योजना, समझदारी, अनुशासन से हम सीमित आय में भी अपने घर को बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। बहनों, आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है। भोजन, शिक्षा, बिजली, पानी, कपड़े और स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में हम बिना योजना के पैसा खर्च करते हैं तो महीने के अंत में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें यह सीखना आवश्यक है कि कम खर्च करना
ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही जगह और सही समय पर खर्च करना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम कुछ कार्य प्रणाली बना सकते हैं, जैसे घर का बजट बनाना, महीने की शुरुआत में अपनी कुल आय को संभावित खर्चों का हिसाब लगाना चाहिए। जब हमें पता होता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, तब अनावश्यक खर्चों को रोकना आसान होता है। ज़रूरत और इच्छा में अंतर समझना। बाजार में हमें रोज़ अनेक ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिन्हें खरीदने का मन करता है, लेकिन हर पसंद की वस्तु हमारी ज़रूरत नहीं होती। हमें खरीदारी से पहले स्वयं से पूछना चाहिए, क्या यह वास्तव में ज़रूरी है? खाने की बर्बादी रोकना। बहनों, भोजन हमारे घर की बजट का एक बड़ा हिस्सा होता है। आवश्यकता से अधिक सब्जियां, फल या अन्य खाद्य सामग्री खरीदने से वे खराब हो सकती हैं और हमारा पैसा भी व्यर्थ जाता है। भोजन का सम्मान करना केवल पैसे बचाना नहीं, बल्कि अन्न का सम्मान करना भी है। बिजली और पानी की बचत। बहनों, जब कमरे में कोई व्यक्ति न हो तो पंखा, लाइट या अन्य विद्युत उपकरण बंद कर दें। पानी के लिए बच्चों को सिखाएं कि शावर की जगह हम बाल्टी का इस्तेमाल करें और ब्रश करते समय नल को खुला ना छोड़ें। छोटी छोटी बचत महीने के अंत में बड़ी बचत में बदल सकती है। बाहर खाने और अनावश्यक खरीदारी को सीमित करना। बहनों, कभी कभी परिवार के साथ बाहर खाना अच्छा लगता है, लेकिन यदि यह रोज़ की आदत बन जाए तो घर का बजट बिगड़ सकता है। इसी प्रकार ऑनलाइन खरीदारी करते समय हमें आकर्षक ऑफर और विज्ञापनों से प्रभावित होकर तुरंत सामान नहीं खरीदना चाहिए। कुछ समय रुककर सोचना चाहिए उस वस्तु की वास्तव में आवश्यकता है या नहीं। बाजार जाने से पहले सूची बना लें, क्योंकि जब हम बिना सूची के खरीदारी करते हैं तो अक्सर आवश्यकता से अधिक सामान खरीद लेते हैं। पुरानी वस्तुओं का सही उपयोग करें। बहनों, घर में ऐसी अनेक चीज़ें होती हैं जिन्हें थोड़ी मरम्मत या रचनात्मक सोच के साथ दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे पुराने कपड़ों से थैले बनाए जा सकते हैं, पुराने डिब्बों में सामान रखा जा सकता है और आजकल तो कई तरीके से उन्हें डेकोरेट भी किया जा सकता है। बहनों, बचत वह धन है जो भविष्य की कठिन परिस्थितियों में हमारा सहारा बनता है। आय चाहे कम हो, फिर भी हमें अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी सी राशि नियमित रूप से बचाने का प्रयास करना चाहिए। अचानक बीमारी, शिक्षा का खर्च, घर की मरम्मत या किसी अन्य आपात स्थिति में यही बचत बहुत काम आती है। इसके साथ साथ बहनों, हमें कर्ज और अनावश्यक उधार लेने से भी बचना चाहिए। यदि हम अपनी आय के अनुसार जीवन जीते हैं तो खर्चों को नियंत्रित रखते हैं और आर्थिक तनाव भी कम होता है। बहनों, घर को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी केवल परिवार के एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। बच्चों को भी बचपन से ही पैसों का महत्व

वस्तुओं की देखभाल और बचत की आदत सिखानी चाहिए। यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य छोटे छोटे खर्चों के प्रति जागरूक हो जाए तो घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती है। चलिए हम सभी एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने धन, समय और संसाधनों का सही उपयोग करेंगे। हम दिखावे के बजाय आवश्यकता को महत्व देंगे और बचत को अपने जीवन की अच्छी आदत बनाएंगे। आगे बहनों, हम आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, अपने शिक्षक स्वयं बने और मूल्यांकन करें के विषय में। बहनों, कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में शिक्षक का स्थान अत्यंत ऊंचा होता है। शिक्षक हमें केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे हमें सही और गलत में अंतर समझाते हैं, हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा करते हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन क्या केवल बाहरी शिक्षक ही हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं? नहीं, जीवन में एक ऐसा शिक्षक भी है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, और वह है हमारा अपना विवेक, हमारा अनुभव और हमारी आत्मचेतना। इसलिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों से सीखने के साथ साथ अपने शिक्षक स्वयं बने और समय समय पर अपना मूल्यांकन भी करें। बहनों, हम अक्सर अपनी सफलता असफलता का कारण दूसरों को मान लेते हैं। सफलता मिली तो कहते हैं, मेरे शिक्षक बहुत अच्छे थे, मेरे माता पिता ने बहुत सहयोग किया, मेरे मित्रों ने मेरी बड़ी मदद की। और जब असफलता मिलती है तो कभी हम व्यवस्था को, कभी परिस्थितियों को और कभी दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर व्यक्ति ऐसा नहीं करते। वह स्वयं से प्रश्न करता है, मैंने कहाँ गलती की, मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही आत्ममूल्यांकन की शुरुआत है। बहनों, आत्ममूल्यांकन का अर्थ स्वयं को दोष देना नहीं है, इसका अर्थ है अपने गुणों और कमियों को ईमानदारी से पहचानना। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूँ, क्या मैं अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हूँ, क्या मैं अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करता हूँ, क्या मैं अपने मित्रों के प्रति ईमानदार हूँ, क्या मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, क्या मैं आज कल से बेहतर बनने के प्रयास कर रहा हूँ। बहनों, हमें यह समझना है कि स्वयं का मूल्यांकन करते समय हमें अपने प्रति ना तो बहुत कठोर होना चाहिए और ना ही बहुत उदार। गलती स्वीकार करो, कारण को समझो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब इंसान स्वयं को सिखाने और स्वयं को परखना सीख जाता है तो उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। बहनों, दूसरों से सीखना बुद्धिमानी है, लेकिन स्वयं से सीखना महानता है, और स्वयं को प्रतिदिन बेहतर बनाना ही सच्ची सफलता की पहचान है। बहनों, त्योहारों की अपनी एक खास मिठास होती है, और जब बात रक्षाबंधन की हो तो भाई बहन के स्नेह के साथ घर के रसोई घर में आती स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू भी इस पर्व को और खास बना देती है। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्यौहार नहीं बल्कि प्रेम, अपनत्व और रिश्तों की मिठास को मनाने का अवसर है। बहनों, बात रक्षाबंधन की हो रही है तो चलिए सुनवाते हैं आपको यह गीत।

गीत के बाद बहनों, इसी शुभ अवसर पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे स्वादिष्ट और जायकेदार व्यंजन, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बनाकर इस रक्षाबंधन को और भी यादगार बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं शाही पनीर। इसके लिए हमें चाहिए पनीर 250 ग्राम, प्याज 2 बड़े, टमाटर 2 से 3, काजू 7-8, मलाई 3-4 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, प्याज टमाटर और काजू को भूनकर पीस लें, हल्दी नमक लाल मिर्च सभी मसाले तेल में डालकर ग्रेवी पकाएं, फिर मलाई और पनीर के क्यूब डालें, 5-7 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, ऊपर से गरम मसाला कसूरी मेथी नींबू का रस बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश करें। तैयार है शाही पनीर। आप चाहें तो इस पे प्याज ना डालें यदि आप नहीं खाते हैं तो। आगे बहनों, आपको बताने जा रहे हैं घर पर कुरकुरा और जालीदार घेवर बनाने की आसान सी विधि। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप घी, 1 कप मैदा, ठंडा पानी 3-4 कप। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप कि हमको बिल्कुल चिल्ड वाटर लेना है। दूध 2 बड़े चम्मच, चीनी 1 कप, पानी 1/2 कप, चाशनी के लिए, तलने के लिए घी या तेल जिसमें भी आप बनाना चाहें। सबसे पहले एक बर्तन में घी

0: को डालकर ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लें, फिर मैदा डालकर चिकना घोल बना लें। दूध डालें और बाकी पानी डालकर बहुत पतला घोल तैयार कर लें। एक गहरे भारी कढ़ाई में घी या तेल, जिसमें भी आप तलना चाहती हैं, अच्छी तरह गर्म करें। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन उसमें धुआं भी नहीं उठना है। घोल को एक छोटे ग्लास या कलछी से ऊंचाई से बहुत पतली धार से कढ़ाई में डालना है। कुछ सेकंड रुक कर फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में घोल डालते रहें। बीच में एक छेद बन जाएगा और घेवर जालीदार होता जाएगा। जब घेवर सुनहरा और कुरकुरा हो जाए तो उसे सावधानी से निकालकर अतिरिक्त घी या तेल निकलने दें। आप एक अलग बर्तन में चीनी और पानी को उबालकर एक तार की चाशनी बना लें। यदि आपके पास हो तो केसर के एक दो धागे डाल दें, नहीं तो बारीक पिसी इलायची एक बड़ा चम्मच डाल दें। ठंडे घेवर पर हल्की हल्की चाशनी डालकर और ऊपर से बादाम पिस्ता से सजाएं। आप चाहें तो रबड़ी डालकर भी सर्व कर सकती हैं। तैयार है स्वादिष्ट घेवर। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: श्रोताओं, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: मालवा की शान
8: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर।
3: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनवाते हैं शायदा कुरैशी का गाया मल्हार गीत।

गोधनलाल कुशवाहा और साथियों के गाए झूला गीत के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनवाते हैं घनश्याम वासवानी की गाई ये गजल।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं घनश्याम वासवानी की गई गजलें। आइए इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं ये अगली गजल।

0: घनश्याम बासवानी की गाए इन गजलों के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज का प्रसारण आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: श्रोताओं, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लिया है। आवाज़ हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के। अनजान के बोलों को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के संगीत आर डी बर्मन का। किशोर कुमार का ये गाया गीत हमने लिया था मेरे जीवन साथी फिल्म से। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: बातचीत में देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जैन के पवासा में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहनों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में साख लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आज ही के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग हुई थी। उन्होंने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व जताया। राजधानी भोपाल में कल यानी सोमवार से 10 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। इसके बाद शहर में कुल 30 ई बसें 3 रूट पर चलेंगी और यात्रियों को हर 10 से 15 मिनट में बस उपलब्ध होगी। इससे कोलार रोड, बावड़ेगा कला, बैरागढ़, एमपी नगर और आईएसबीटी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सभी बसें एमपी नगर से होकर गुजरेंगी। रोजाना करीब 12,000 यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी सारांश जैन ने आज श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया है। डाक विभाग में कार्यरत सारांश के टेस्ट डेब्यू पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह टेस्ट कैप सारांश की कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। सिंधिया ने उनके सफल टेस्ट करियर के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। पूल ई का यह मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने रविवार को 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पार्डोना, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी और सीधी में भारी बारिश के आसार हैं। भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 23 से 26 अगस्त के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी कल निकाली जाएगी। श्रावण के अंतिम सोमवार को बाबा बैजनाथ चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में खाद्य सुरक्षा टीम ने खाद्य प्रतिष्ठानों से घी, दूध, पनीर, रवा, चीज और मिठाइयों सहित 10 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। जबलपुर दमोह मार्ग पर बीती रात एक निजी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है।

0: उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस के इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को

0: अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहांडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहांडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रिजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
3: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों एक साथ मिलकर बोलेंगे
1: जय हिंद।
2: बच्चों आज है रविवार, आज का दिन आपके लिए होता है खास, क्योंकि आज आपको इंतजार होता है अपने मन पसंद कार्यक्रम मुस्कान का। अब आपका इंतजार होता है समाप्त, क्योंकि आपके मुस्कान कार्यक्रम के साथ आपकी पूर्णिमा दीदी आ गई है, साथ में उपस्थित है प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे शानवी, नमामि, रेवा, हर्षिता, शुभि, हर्षित और दिव्यांश। बच्चों आप सभी का मुस्कान कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चों आपकी प्रस्तुतियां हम सुनेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे प्रेरणादायक विषय, महापुरुषों की जीवनी। बच्चों महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से जीवन में बहुत

0: सारे लाभ मिलते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है? दरअसल प्रत्येक महान व्यक्ति के पीछे छिपा होता है उसके जीवन का संघर्ष, उसकी मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति। और यह शिक्षा हमें महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने से मिलती है। साथ ही हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कितनी भी असफलताएं हमें क्यों ना मिले, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने बचपन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया, लेकिन आगे चलकर वे महान वैज्ञानिक बने और हमारे भारत देश के राष्ट्रपति भी बने। बच्चों, उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, महारानी लक्ष्मीबाई की कविता आप हिंदी की पुस्तक में पढ़ते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में भी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आईं, लेकिन हर मुश्किल का उन्होंने डटकर सामना किया और उनकी हिम्मत और देशभक्ति से प्रेरणा लेकर उस समय के लोगों ने एकजुट होकर भारत देश को स्वतंत्रता दिलाई। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करके देश का गौरव बढ़ाया। बच्चों, स्वामी विवेकानंद के अंदर आत्मविश्वास, संयम और दृढ़ निश्चय के साथ देशभक्ति थी। उनकी जीवनी से हमें अच्छे चरित्र निर्माण की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, आत्मविश्वास, सच्चाई, साहस, मेहनत और लगन से कार्य करने की प्रेरणा हमें महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़कर ही मिलती है। बच्चों, सही मायने में हम सबका जीवन तभी सार्थक हो सकेगा जब हम अपनी मातृभूमि, अपने देश की रक्षा करेंगे और परोपकार के साथ लोगों की हमेशा सहायता करेंगे। इसलिए बच्चों, सप्ताह में कम से कम एक महान व्यक्ति की जीवनी को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए और संभव हो तो हमें प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट किसी भी प्रेरणादायक महान विभूतियों की जीवनी पढ़कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, अभी कौन सा त्योहार आने वाला है? रक्षाबंधन। आप सभी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, है ना, रक्षाबंधन के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बस बहुत ही करीब ये त्योहार आने ही वाला है इसी सप्ताह। बच्चों, रक्षाबंधन का धागा होता है बहुत छोटा सा, लेकिन यह रिश्ता होता है सबसे बड़ा। बच्चों, रक्षा का अर्थ होता है सुरक्षा और बंधन का अर्थ होता है पवित्र रिश्ते का धागा। बच्चों, ये वो धागा होता है जो भाई बहन के प्यार और सुरक्षा के वचन को एक दूसरे से बांधता है। बच्चों, राखी केवल सगे भाई बहन का त्योहार नहीं है, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों को भी हम राखी भेजते हैं। आप लोग भी अपने स्कूल के माध्यम से भेजते हैं ना, और भी अन्य संस्थाएं भी सेना के जवानों को राखी भेजती हैं, जिससे उनमें उत्साह बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े त्योहार पर जो अपने घर इस त्योहार में नहीं जा पाते हैं, वे हम सबकी राखी पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करके वचन का पालन किया। इंद्र की पत्नी शची ने भी इंद्र को युद्ध में जाने से पहले रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षा का अर्थ होता है एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना। बच्चों, राखी का पर्व हमें सिखाता है कि हमें रिश्तों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और हर वक्त एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के प्रति स्नेह बनाकर रखना और मिलजुल कर रहना, ये त्योहार हमें यही शिक्षा देते हैं। आप लोग भी उपहार लेते और देते हैं ना, तो इससे भी बड़ी बात होती है कि हमें अपने भाई बहन का, माता पिता का और जो भी बड़े हैं उनका सम्मान करना सबसे बड़ा उपहार होता है। और इसके साथ ही हमें देश की रक्षा करने का भी संकल्प लेना चाहिए। तो आप सब ये करेंगे ना। बच्चों, अब सुनेंगे आपकी प्रस्तुतियाँ, तो पहले कौन सुनाएगा?
1: दीदी दीदी, मैं कविता सुनाऊँ?
0: सुनाओ।
1: बच्चों की शिक्षा हित लाए गीतों का उपहार, कितना सुंदर है। समाख्या गीतों

0: का संसार अक्षर से अक्षर मिल जाते, बनते शब्द अनेक, मात्राएं मिलकर करती जब अक्षर का अभिषेक। भल जाता तब अगणित शब्दों से भाषा भंडार, शब्द शब्द मिलकर धरते हैं फिर वाक्यों का वेश। भाव विचार गूंथ कर उनमें देता कवि संदेश, शब्द अर्थ का ज्ञान कराता भाषा पर अधिकार। अंक अंक मिल आप बनाते संख्याओं का कोष, एक एक मिल 11 जैसे करें एकता घोष। शक्ति संगठन में छिप करती कष्टों का परिहार, सचमुच शून्य नहीं है कुछ भी सबको करे उदास। रखो अंक के बाद तो दे 10 गुण का आभास, महिमा जानो अगर शून्य की है जग का आधार। पर्यावरण गणित भाषा की शिक्षा का अरमान, शिक्षक सामाख्या भर लाई गीतों में सब ज्ञान। गाओ नाचो पर भूलो मत शिक्षा का उपकार।
1: शानवी देखो बार बार इशारा कर रही है कि दीदी मुझे सुनाना है, दीदी मुझे सुनाना है। तो शानवी अब आप अपनी कविता सुनाइए।
2: सुनो, हरे भरे ये पेड़ बड़े हरदम रहते ये खड़े, बारिश में ये खूब नहाते, डाली डाली फूल खिलाते, तेज धूप से हमें बचाते, मीठे फल ये हमें खिलाते, परोपकार का पाठ सिखाते। दीदी एक और सुनो, गर्मी के दिन आते हैं हमको सताते हैं, कहाँ खेलने जाए हम तेज धूप में निकले दम, खेल का मैदान गरम, लू को आती नहीं शर्म, कहीं चैन ना पाते हैं, मन ही मन झुंझलाते हैं। दीदी एक और सुनाऊं, बादल आए पानी लाए, धरती गाए अंबर गाए, बादल रिमझिम करते शोर, देखो नीचे नाचे मोर।
1: तो कितनी अच्छी कविता सुनाई है कि गर्मी जो है हम सबको परेशान करती है, गर्मी में हम सब जो है बहुत बेचैन हो जाते हैं, लेकिन बारिश आते ही कितना अच्छा मौसम हो जाता है, पूरे वातावरण में ठंडक हो जाती है और चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। सच में वर्षा ऋतु जो है सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए इसे ऋतुओं की रानी कहा जाता है।
3: मेरा नाम नमामी है। दीदी मैं एक कविता सुनाऊं, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है, केवल गति ही जीवन, विश्रांति पतन है, तुम ठहरो तो समझो ठहरा ये जीवन है, अब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, तुम चलो जमाना अपने साथ चलाओ, जो पिछड़ गए हैं आगे उन्हें बढ़ाओ, तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं, जितने भी रोड़े मिले उन्हें ठुकराओ, पथ के कांटों को पैरों से दलना है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, जो कुछ करना है उठो करो जुट जाओ, जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ गवाओ, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है।
1: नमामी ने देखो कितनी अच्छी कविता सुनाई कि हमेशा हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और अपना काम मेहनत से और ईमानदारी से और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है।
4: दीदी हम सुना एक कहानी।
5: कहानी सुनाएंगे? कहानी का शीर्षक क्या है?
4: तेनाली राम का घड़ा।
5: तेनाली राम का घड़ा। तेनाली राम जानते हैं आप लोग? बहुत समझदार व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं ये, जानते हैं आप?
4: जी दीदी।
5: अच्छा ये बताइए कि तेनाली राम किस राजा के राज्य में थे?
4: राजा कृष्णदेव राय।
5: राजा कृष्णदेव राय, तो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं आप। फिर अपनी कहानी सुनाइए, तेनाली राम का घड़ा, यही है ना शीर्षक?
4: जी दीदी। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय को अचानक अपने पूर्वजों का ढेर सारा गड़ा हुआ धन मिल गया। खुश होकर उन्होंने अपने सभी दरबारियों को कीमती उपहार देने का निश्चय किया ताकि वे उसे यादगार के रूप में संभाल कर रखे। राजा ने दरबारियों में बांटने के लिए सोने चांदी के बहुत सुंदर जड़ाऊ बर्तन मंगवाए। सुनार जब बर्तन लेकर आया तो साथ में गलती से एक मिट्टी का घड़ा भी आ गया। उसे देखकर सब दरबारी हंसने लगे। एक दरबारी ने पूछा, महाराज यह घड़ा आप किसे देंगे? राजा हंसकर बोले, आज दरबार में जो सबसे देर से आएगा यह उसके लिए है। संयोग की बात है, उस दिन तेनालीराम दरबार में सबसे देर आए। उसे देखकर मंत्री और दरबारियों की हंसी छूट गई। मंत्री ने तेनालीराम को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छी तरह देख लो, यह घड़ा महाराज ने खासकर तुम्हारे लिए मंगवाया है। सुनकर तेनालीराम चुप रहा। कुछ देर बाद सभी को पुरस्कार बांटे गए। सबको सोने चांदी के बर्तन मिले। तेनालीराम के हिस्से में वही घड़ा आया। तेनालीराम ने बिना कुछ कहे चुपचाप वह ले लिया। पर थोड़ी देर में उसने अपनी पगड़ी उतारी और उस खाली घड़े को ढक दिया। यह देखकर दरबारी अचंभे में थे। राजा कृष्णदेव राय ने हैरान होकर पूछा, यह क्या तेनालीराम? तेनालीराम एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, महाराज मैं हमेशा यहाँ से एक बेशकीमती उपहार लेकर जाता रहा हूँ। आज यह खाली घड़ा लेकर जाते हुए मुझे दुख हो रहा है, इसलिए इसे ढक दिया ताकि कोई यह न कहे कि देखो तेनालीराम आज राजा कृष्णदेव राय के दरबार से खाली बर्तन लेकर जा रहा है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की चतुराई समझ गए। उन्होंने हंसते हुए तेनालीराम के खाली घड़े को मोहरों से भर देने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद तेनालीराम खुशी खुशी सोने की मोहरों से भरा घड़ा सिर पर रखकर ले जा रहा था। मंत्री सहित सभी दरबारियों के चेहरे उतर गए थे।
6: दीदी दीदी अब मेरी बारी।
5: अब आप सुनाने वाले हैं तो आप क्या सुनाएंगे?
2: एक कविता।
5: कविता सुनाएंगे? कविता का शीर्षक क्या है?
2: यह पर्यावरण हमारा।
5: पर्यावरण हमारा, तो फिर सुनाओ।
2: हमको जीवन देता है यह पर्यावरण हमारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। अज्ञानी हम ज्ञान राशि औरों को बांट रहे हैं, उसी डाल पर बैठ उसी को जड़ से काट रहे हैं। प्रकृति माँ ने पाला हमको अपना दूध पिलाकर, उसको ही पीड़ित करते हम कन कन जला जला कर। सोचो फिर कैसे हो पाएगा कल्याण हमारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। पेट फाड़ कर पर्वत का हम पत्थर बजरी लाते, काट काट कर लकड़ी जग को नंगा करते जाते। और किसी की क्या शर्म करेंगे, निश्चित हमें भोगने होंगे जैसे कर्म करेंगे। कुदरत को अपमानित कर कैसे हो मान हमारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। धरती माँ ने अन्न फूल फल देकर हमको पाला है, रस बरसाते सूर्य चंद्रमा देकर हमें उजाला। पवन प्राण बन स्वयं हमारी श्वासों में बहते हैं, इंद्र स्वयं जलधारा के मिसमिस कण में हंसते हैं। मानवता को मिला निरंतर सुख कर सत्य सहारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। इसका कीजिए ध्यान, जीव को चाहो अगर बचाना, लगा सको जितने ज्यादा धरती पर पेड़ लगाना। सरिता सर का जल जीवन की प्रतिपल प्यास बुझाता, प्रकृति प्राणियों का सचमुच है माँ बेटे का नाता। पुत्रों के नाते समझो क्या है कर्तव्य हमारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा।
5: बहुत ही अच्छी कविता सुनाई है कि पर्यावरण को जितना हम बचाएंगे उतना ही हम अच्छी तरह से स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे पेड़ कहीं कट जाते हैं तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, अलग अलग तरह से पानी भी बहुत प्रदूषित होता जा रहा है, तो हमें इन सब की रक्षा करना बहुत जरूरी है।
1: यानी अब शुभांगी सुनाएगी। शुभांगी सुनाओ।
7: उछल कूद कर बंदर आया, बंदर आया, बंदर आया, एक है काले मुंह का बंदर रहता है वह जंगल के अंदर। दूजे बंदर का मुँह लाल, दौड़ दौड़ कर करे धमाल, डाली तोड़ी फल को खाया, बंदर आया, बंदर आया, छाती से बच्चा छिपाए, खींची करके दांत दिखाए, पेट खुजाए, पूंछ हिलाए, अपना घर ना कभी बनाए, नटखट बंदर सबको भाया, बंदर आया, बंदर आया।
1: आप सब लोग ने बंदर देखे हैं?
8: जी दीदी।
9: कैसा लगता है?

0: कैसा लगता है?
1: डरावना।
0: डर लगता है? अच्छा नहीं लगता?
1: हाँ
0: नहीं, डर लगता है।
1: दीदी,
0: अच्छा, और बंदर क्या क्या खाता है?
1: केला,
0: केले?
1: केले, आम, संतरा।
0: सारी चीज खाता है बंदर, है
1: हाँ
0: ना?
1: जी दीदी,
0: और बंदर को और क्या बोलते हैं?
1: वानर,
0: बंदर मामा।
1: वानर
0: बंदर मामा भी बोलते हैं ना? जी दीदी।
1: जी।
0: कितने लोग बोलते हैं मामा?
1: दीदी मैं
0: मैं। फिर
1: हाँ
0: आपके मामा गुस्सा नहीं होते?
2: दीदी, अब मेरी बारी। धिन धिन धा, धमक धमक मेघ बजे, दामिनीए गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे, पंख बना हरि चंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, धिन धिन धा, धमक धमक मेघ बजे, फूले कदम टहनी में कंदुक सम झूले कदम, फूले कदम सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नायक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम, फूले कदम, फूले कदम।
0: अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो एक साथ मिलकर बोलेंगे
3: जय हिंद।

0: नन्हे मुन्ने बच्चे अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मेरे हुजूर फिल्म से लिया है। स्वर है मोहम्मद रफ़ी का। इस गीत को लिखा हसर जयपुरी ने, संगीत शंकर जय किशन का।
1: खूबसूरत गुनाह करने दो,

कार्यक्रम का अंतिम गीत दीवार फिल्म से लिया है, जिसे माफ कीजिए उपकार फिल्म से लिया है, जिसे आवाज़ दी मुकेश ने। कमर जलालाबादी के बोलों को संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने।

0: मुकेश की आवाज़ में गाए उपकार फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में साख लगातार बढ़ रही है। डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2023 में आज ही के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग हुई थी। राजधानी भोपाल में कल यानी सोमवार से 10 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। इसके बाद शहर में कुल 30 ई बसें 3 रूट पर चलेंगी और यात्रियों को हर 10 से 15 मिनट में बस उपलब्ध होगी। सभी बसें एमपी नगर से होकर गुजरेंगी। आगरमालवा में बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी कल दोपहर 12:30 बजे बेटखेड़ा स्थित मंदिर से शुरू होगी। श्रावण के अंतिम सोमवार को बाबा बैजनाथ चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। और महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। पूल ई का यह मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 और शाम 6 बजे। आकाशवाणी भोपाल से ग्राम सभा कार्यक्रम होगा 7:21 पर, जिसमें 7:30 बजे से 8 बजे के बीच सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर माधव व्यास। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात 8 बजे। 8:15 पर होगा कार्यक्रम डगर विकास की। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति रहेगा। विषय होगा सुकन्या समृद्धि योजना। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे रात 8:30 बजे और 9:30 बजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में विदुषी प्रतिमा का ख्याल गायन आप सुन सकते हैं, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी रहेगा। शाम 5 बजे से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं ईरा
1: और मैं मार्गशा। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज दिन है रविवार का और रविवार का दिन होता है हमारे खास सेगमेंट युवा तरंग का, जिसमें हम करते हैं हमारे युवा साथियों से बातचीत और जानते हैं आखिर उनके करियर और लाइफ में क्या कुछ खास चल रहा है।
1: लेकिन उस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले, जैसा आप सभी जानते हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पूछते हैं और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में बताते हैं। तो इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी।
0: और साथियों, कार्यक्रम का दूसरा प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप खोज के रखिएगा। तब तक आइए युवा तरंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं
1: और सुनते हैं हमारे युवाओं से हुई ये बातचीत। युवा तरंग कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे एक साथी से। हेलो, आपका नाम क्या है?
2: हेलो, मेरा नाम कृष्णा परमार है।
1: सबसे पहले कृष्णा, आप बताओ, आप कैसे हो?
2: मैं ठीक हूँ।
1: और कृष्णा, आप क्या करते हो वैसे अभी?
2: मैं अभी इंटरनेशनल बिजनेस का स्टूडेंट हूँ।
1: इंटरनेशनल बिजनेस आप पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस में कोई डिग्री वगैरह आप परस्यू कर रहे हैं?
2: जी, मैं MBA परस्यू कर रहा हूँ DAVV से।
1: तो MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस आप अभी परस्यू कर रहे हो, तो थोड़ा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को और मुझे भी जरा बताएंगे आप?
2: MBA इंटरनेशनल बिजनेस, ये कोर्स आपका बेसिकली जो रहता है वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर वगैरह के बारे में आपको बताता है, और उसी के अराउंड ये पूरा रिवॉल्व करता है। इंटरनेशनल मार्केट में आपकी मार्केटिंग किस तरह से होती है, आपके प्रोडक्ट को आप किस तरह से प्लेस करते हैं, उन्हीं सब चीजों के आसपास इसके कोर्स कंटेंट रिवॉल्व करते हैं।
1: अरे वाह, काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल मार्केटिंग, मार्केट में कैसे क्या एनालिसिस होता है, ये सब कुछ। वैसे आपका इसमें पहले से ही इंटरेस्ट रहा है और इसके लिए आपने कुछ पहले से ग्रेजुएशन में कुछ अलग डिग्री ली हो, ऐसा कुछ?
2: मेरा शुरू से इसी फील्ड में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में भी फॉरेन ट्रेड चूज किया था मेरे BBA में। तो और फिर उसके बाद में मैंने इसी को आगे परस्यू करने का सोचा, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी बदल रही है, एक ग्लोब एज अ इकोनॉमी फॉर्म हो रहा है, तो काफी इंटीग्रेशन हो रहा है सारी कंट्रीज के बीच में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन्स आए दिन बढ़ रहे हैं, तो ये काफी ग्रोइंग फील्ड है इन नियर फ्यूचर।
1: हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से इंटरनेशनली इकोनॉमी बढ़ रही है और बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ रहे हैं, हर कोई चीज आजकल इम्पोर्ट की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है, इससे हमारे देश को भी इकोनॉमिकली काफी फायदा हो रहा है। तो अगर हमारे देश को ध्यान में रखा जाए, इंडिया को ध्यान में रखा जाए, तो इंटरनेशनल बिजनेस या फॉरेन ट्रेड ये कितना मायने रखता है और आजकल के युवा इसमें क्या क्या कर सकता है?
2: इंटरनेशनल ट्रेड अगर इंडिया को ध्यान में रख के हम देखें तो मेजरली ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है एक सर्विस सेक्टर बेस्ड कंट्री है, तो यहाँ से सर्विस एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउसिंग जो है बहुत चीप है, तो ग्लोबल कंपनीज ये चूज करती हैं कि हम इंडिया को ऑप्ट करें एज हमारा प्रोडक्शन सेंटर, तो यहाँ से एक्सपोर्ट के रिलेटेड आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं किसी को भी अगर ऐसा करना हो।
1: जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि इंडिया जो है ये सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। जैसे आपने एक और चीज मेंशन की कि आपने ग्रेजुएशन में फॉरेन ट्रेड पढ़ा था, तो फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस इन दोनों में क्या फर्क होता है, या दोनों सेम ही होता है?
2: दोनों लगभग सेम ही है, दोनों चीजें एक ही तरफ आपको ओरिएंट करती हैं, जो ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी से आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी का जो लिंकेज है वहीं पर दोनों चीजें फोकस करती हैं। दोनों नाम थोड़े से अपने अपने जो वर्टिकल्स में है डिफरेंट है, बट ओवरऑल जो देखा जाए मेन ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही निकलता है।
1: अच्छा अच्छा, मतलब देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो और ज्यादा ग्लोबल हो और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीजें बढ़े, इंटरनेशनल बिजनेस बढ़े, लेकिन थोड़ा सा कोर थोड़ा सा दोनों का अलग अलग है। आपको दोनों में से ज्यादा क्या पसंद आया पढ़ाई करने में?
2: मुझे इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा पसंद आया पढ़ाई करने में।
1: अच्छा अच्छा, तो क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है तो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत सारा रोल आता है, गवर्नमेंट की भी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, उसके रूल्स रेगुलेशंस, तो इस सब की पढ़ाई और साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो मार्केटिंग और MBA में ये सारे कोर सब्जेक्ट्स तो आते ही हैं, तो ये सब का कॉम्बिनेशन मिला के आपको पढ़ाई आप किस तरह से क्यूरेट कर पाते हैं और कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज कर पाते हैं?
2: मैं मेरा कॉलेज की क्लासेस रेगुलरली अटेंड करता हूं, तो उससे क्या है कि जो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मुझे क्लियर हो जाते हैं, प्लस जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन होता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है. इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके एक बहुत डेप्थ स्टडी आपको चाहिए पड़ती है, एक एक बारीकियाँ समझनी पड़ती है, क्योंकि एक पॉइंट की भी मिस्टेक आपके बहुत यूज ट्रांजेक्शन को दिक्कत दे सकती है.
1: नहीं, बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इतनी सी गलती भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. तो आई गेस ये फील्ड जो है ये और भी ज्यादा आगे ग्रो करेगी, भी ग्रो कर भी रही है. तो शायद ये ऐसा सेक्टर है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर युवा अगर और भी ज्यादा पार्टिसिपेट करें तो कहीं ना कहीं हमारे देश को भी फायदा होगा.
2: जी, एक्चुअली लाइक इंटरनेशनल बिजनेस अभी बहुत नीश फील्ड है, अभी काफी ज्यादा यंग माइंड्स जो हैं उनको इस बारे में पता नहीं है. मेजरली जो लोग MBA वगैरह परस्यू करते हैं वो फाइनेंस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, बट फाइनेंस अब बहुत कॉमन हो गया है इन एवरी एस्पेक्ट, तो ये बहुत ज्यादा एक नई फील्ड है और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आगे काफी सारी है.
1: ये आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं फाइनेंस और जो कोर MBA के सब्जेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा वहाँ पे क्लटर हो गया है, बहुत सारे लोग वहाँ पर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इसको हम थोड़ा डाइवर्स रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा. इसी के साथ आपकी हॉबीज वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे.
2: मेरी हॉबी, मैं कभी कभार बुक्स रीड कर लेता हूँ, और उसके अलावा मुझे लिसनिंग टू म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, लाइक ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स.
1: अच्छा, तो आपने गानों की बात कर ही दी, तो आज बताइए कि आज आखिरी सवाल आपसे कि आज आकाशवाणी की ओर से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे.
2: मैं सुनना चाहता हूँ सामने ये कौन आया, जवानी दीवानी फिल्म से.
1: अरे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग गाना आपने चूज किया है. तो कृष्णा, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आपके आगे के फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.
2: थैंक यू.
1: आइए सुनते हैं कृष्णा के पसंद का ये गीत.

0: तो आएगी ना।
1: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
1: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो साथियों, चलिए आज के युवा तरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे अगले युवा साथी से, जो बुक पढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और काफी सीरियस भी लग रहे हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं आखिर वो कौन सी बुक पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाय, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम देव विश्वकर्मा है और मैं इंदौर का ही हूँ।
3: तो देव, ये बताइए, अभी आपके हाथ में एक बुक है और आप उसको काफी फोकस्ड होके पढ़ भी रहे थे, तो क्या आप हमें बता सकते हैं आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं और वो किस विषय पर है?
4: एक्चुअली मैं रफ गाइड टू हॉरर पढ़ रहा था, जैसे एलन जोन्स ने लिखा।
3: अच्छा।
4: और मैंने अभी इसे शुरू ही किया है, ये हॉरर फिल्म्स के ऊपर है।
3: तो आपने हॉरर फिल्म्स के बारे में, मतलब आपको पढ़ना पसंद लगता है, आपका जॉनर जो है वो हम ऐसा मान सकते हैं?
4: हाँ।
3: अच्छा देव, ये बताइए आप करते क्या है, आप पढ़ाई करते हैं या आप जॉब कर रहे हैं अभी?
4: मैं अभी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मैं SJMC से MA कर रहा हूँ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन।
3: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने बैचलर्स भी SJMC से ही करा होगा?
4: नहीं, एक्चुअली मैंने बैचलर्स जबलपुर से किया था और मैं रहने वाला तो इंदौर का ही हूँ, पर मैंने SJMC के बारे में सुना और फिर इसलिए मैंने एनरोल किया।
3: अब ये बताइए, जो आपने सुना था SJMC के बारे में और वहाँ की पत्रकारिता के विभाग में जो SJMC ऊंचाइयाँ पा रहा है, उसके बारे में आपको वो सारी चीजें कितनी सच लगती है?
4: एक्चुअली है काफी सच, क्योंकि हमने भी एल्यूमिनाइज से बात करी है और उनमें से काफी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में। हम अभी कुछ दिन पहले ही सर्कल मार्कॉम के फाउंडर से मिलकर आए थे, जिनका नाम राहुल वर्मा है एंड उनकी खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है एंड उन्होंने भी SJMC से ही अपनी पढ़ाई पूरी की।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और देव, जैसे कि अब आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपने अपनी कुछ फील्ड भी चुनी होगी कि आपको किस क्षेत्र में जाना है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के, तो वो कौन सी चुनी है और ये बताइए कि उसे चूज करने का कारण क्या रहा आपका?
4: अब मुझे फिल्म बहुत पसंद है, जैसे मैं अभी किताब भी उसी बारे में पढ़ रहा था, तो मेरा मेन मकसद है फिल्म जर्नलिज्म या फिल्म मेकिंग को अच्छे से समझना और जानना, और इसीलिए मैंने मास्टर्स करने का भी सोचा था, क्योंकि मुझे फिल्म बचपन से ही देखना पसंद है।
3: क्या बात है। अच्छा देव, जैसे फिल्म तो हम सभी लोग देखते हैं और हम में से अधिकतर लोगों को फिल्म देखना पसंद भी होता है, लेकिन आप फिल्म को किस नजरों से देखते हैं? कैसे आप फिल्म के हर एक सीन की फोटोग्राफी से लेकर स्टोरी लाइन और सारी चीजों को एनालाइज कैसे करते हैं आप?
4: मैं जनरली हर सीन के थीम को समझने की कोशिश करता हूँ। हर एक फ्रेम में डायरेक्टर अपनी कुछ बात रखना चाहता है। अगर कोई एक्टर कुछ कर रहा है एक सीन में, तो उसके पीछे या तो उस एक्टर की कुछ सोच होगी या फिर डायरेक्टर की सोच हो, तो मैं यही समझने की कोशिश करता हूँ और इसके लिए मैं काफी सारे आर्टिकल्स, बुक्स और बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूँ।
3: अच्छा ये बताइए कि अभी तक की जितनी भी बॉलीवुड मूवीज आई हैं, उसमें से सबसे अच्छी फिल्म आपको अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कौन सी लगी और उसके कुछ कारण भी हमें बताइएगा और हमारे श्रोताओं को भी बताइए, ताकि हम लोग भी उसे उस तरीके से एनालाइज कर पाए अगली बार हम जब भी वो फिल्म देखे।
4: तो मुझे अब तक की सबसे अच्छी फिल्म प्यासा लगी, जो 1957 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट गुरुदत्त ने किया था और वही उस फिल्म के मेन लीड भी थे। और ये फिल्म आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 57 में। ये एक एस्पायरिंग राइटर के बारे में है जो खुद अनएम्प्लॉयड है और अपनी पोएम्स को पब्लिश कराने की कोशिश में है, पर उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करता, उसको कोई भी अपनाता नहीं है एंड एक प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम होता है गुलाबो, जैसे वहीदा रहमान ने प्ले किया है, वो उसकी कविताएं बहुत अप्रिशिएट करती है, पसंद करती है। तो इस फिल्म का जो थीम है वो आज भी बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि अभी भी अनएम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है अपने देश में और अच्छे आर्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता।
3: बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही देव आपने। और अब ये बताइए, जैसे कि प्यासा जो है थोड़ी सी पुरानी बॉलीवुड फिल्म हम कह सकते हैं होगी, अभी अगर हम रिसेंट 4-5 सालों में कुछ बॉलीवुड मूवीज की बात करें और अगर उनके बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकते हैं कि ऐसी कोई मूवी आई हो जिसने हमें एक अलग नजरिया दिया हो चीजों को देखने का, समझने का, और सिनेमा के तौर पर भी अगर जैसे आपके तरीके से एनालिसिस के बेसिस पे हम देखें तो वो बेस्ट फिट हो सकती है।
4: well, मेरा आंसर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है पर मुझे एनिमल भी बहुत अच्छी लगी थी जो कुछ साल पहले ही आई थी, और उसका रीजन यह है कि वो फिल्म भले ही लोगों को देखने में ये लगता हो कि वो अपने हीरो को एक पेडेस्ट्रियल पर रख रही है, पर टेक्निकली वो एक मेंटल इलनेस के बारे में भी बात कर रही है, क्योंकि वो फिल्म कोई रीजन नहीं देती कि प्रोटैगनिस्ट क्यों अपने फादर के लिए इतना ऑब्सेस्ड, और ये चीज प्रोटैगनिस्ट खुद भी बोल देता है एंड में। अगर आप उसका क्लाइमैक्स देखोगे तो वो सबसे पहले वो अनिल कपूर से कहता है कि मैं आपको इतना प्यार क्यों करता हूँ, मुझे खुद भी नहीं। अगर वो रीजन दे देता तो उसका एक्शन जस्टिफाई हो जाते, पर वो एक रीजन नहीं देता है जो प्रूफ कर देता है कि ये आदमी मेंटली इल है, इसको किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं आता और इसे साइकाइट्रिक हेल्प की जरूरत है।
3: देव, जैसे हमने बहुत सारी फिल्मों की बातें तो कर ली, करियर की बातें हो चुकी है, अब ये बताइए कि आप इंदौर के ही रहने वाले हैं
4: जी,
3: तो निश्चित तौर पर इंदौर के बारे में भी आपने बहुत देखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, तो ये बताइए इंदौर आपको कैसा लगता है और इंदौर के लोग आपको कैसे लगते हैं?
4: जी, मुझे इंदौर तो बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के लोग भी मुझे काफी पसंद है, क्योंकि सब बहुत हेल्पफुल है। आप कहीं भी फंस जाएंगे तो हर चार लोग आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे।
3: ये बात तो है, और जैसा आपने बताया आपने आपका बैचलर्स जबलपुर से करा है, तो जबलपुर और इंदौर में अगर कंपैरिजन करें तो आप क्या चूज करेंगे?
4: वेल, जबलपुर भी बुरा नहीं है पर, और मेरा एक फ्रेंड है वो भी उसके उस एरिया के पास से है, पर मैं प्रेफर करूंगा इंदौर, क्योंकि मैं अब यहाँ मेरा टीनेज गुजरा है तो देखा जाए तो इंदौर में थोड़ा बायस हो जाता हूँ मैं।
3: और होना भी चाहिए, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर हैं आप तो।
4: एग्जैक्टली,
3: बीइंग इंदौरी इतना तो रहता ही है।
4: हाँ।
3: देव, आपसे बात करके हमें वाकई बहुत ही अच्छा लगा, और फिल्मों के बारे में आपने किस तरीके से आप फिल्मों को देखते हैं ये बताया, और मुझे लगता है हमारे सुनने वाले सभी श्रोता भी अब अगर प्यासा की बात करें, अभी की फिल्म रिसेंट फिल्मों में से एनिमल की ही बात करें, तो अब उन फिल्मों को भी हम लोग भी उस नजरिए से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच देव। अब ये बताइए कि आज आकाशवाणी इंदौर की ओर से कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
4: आकाशवाणी इंदौर की ओर से मैं प्यासा की बात करी अपन ने, तो प्यासा का ही एक गाना सुनना पसंद करूंगा।

0: चलिए अब युवा तरंग कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारी एक और साथी से। हेलो, आपका नाम क्या है?
1: हेलो, मेरा नाम कांची जैन है।
0: अच्छा कांची, आप बहुत प्रिटी हो सबसे पहले, और आप कैसे हो?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत मस्त होंगे।
0: जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आपने ये पूछा ये भी जान के बहुत अच्छा लगा। तो कांची आप अभी क्या कर रहे हो?
1: जी मैं अभी MBA इन टूरिज्म कर रही हूँ।
0: MBA इन टूरिज्म कर रहे हैं, वाओ, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड लगती है। तो आपने टूरिज्म को कैसे चूज़ किया? आप ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हो?
1: जी मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने टूरिज्म चूज़ किया था। मेरा ग्रेजुएशन भी टूरिज्म में है और अभी मैं MBA भी उसमें कंटिन्यू कर रही हूँ।
0: ओह, ये तो आपके लिए और भी एडवांटेज की बात होगी कि आपने ग्रेजुएशन भी टूरिज्म में किया था, तो आपको कहीं ना कहीं MBA में भी उसकी हेल्प होती होगी। तो टूरिज्म में क्या क्या मेन चीज़ें आप सीखते हो, और इसका आगे आपके करियर में क्या फ़ायदा हो सकता है, और इस फील्ड में जो युवा है वो अगर करियर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं?
1: जी टूरिज्म जो है वो बहुत पहले से ही आ रहा है, अभी वो उसको इतना ज़्यादा विजुअलाइज कर दिया गया है, अभी इतना ट्रेंडिंग चल रहा है टूरिज्म। तो जो युवा है वो बहुत सारी जगह घूम सकते हैं ट्रिप लीडिंग करके, जिसमें वो बहुत सारे ग्रुप टूर्स को लेके जाते हैं घुमाने के लिए, उनके साथ उनका पूरा देखते हैं, रहना खाना सब कुछ देखते हैं, पूरा मैनेज करते हैं, जिनसे उनकी मैनेजिंग स्किल्स बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नए लोगों से मिलते हैं वो। तो ये सब करके वो साथ में पैसे भी कमा सकते हैं इससे। तो छोटे छोटे टूर्स होते हैं, 4 दिन के, 5 दिन के, कॉर्पोरेट टूर्स होते हैं, स्कूल ट्रिप्स होती है, तो ये सब करके वो ऐसे पैसे कमा सकते हैं।
0: अच्छा, तो आपने जैसे भी कई सारे अलग अलग टूरिज्म के आपने पर्सपेक्टिव बताए कि आप ऐसी ट्रिप्स कर सकते हैं, अलग अलग वो भी कर सकते हैं, और देखा जाए तो हमारे देश में भी अभी टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा है। इंटरनेशनल टूरिज्म हो, इन कंट्री टूरिज्म हो, या कोई ऐसा टूरिज्म हो जो रिलीजन और कल्चर से डिराइव हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये एक एडवांटेज में भी रहेंगे आप।
1: जी, और इससे ना काफ़ी कल्चर्स बाहर आ रहे हैं, जैसे कि हिमाचल के जो नेटिव कल्चर्स थे उनका जो फेस्टिवल था वो सब बाहर आ रहा है। देव दीपावली जो पहले भी फेमस थी बट अब इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि लोग दूर दूर से अलग अलग देशों से आते हैं हमारे यहाँ सिर्फ देव दीपावली मनाने के लिए, तो वो काफी अच्छा हो गया है।
0: ये आपने सही कहा कि कल्चर जो है, जो कई लोगों को पता नहीं थे, वो अब टूरिज्म के कारण, जिस हिसाब से टूरिज्म बढ़ रहा है और अवेयरनेस बढ़ रही है, उसके कारण हम सबको पता लग रहे हैं, और ये कल्चर ही लोगों के लिए टूरिज्म का ड्राइव बन रहा है। लोग कल्चर के लिए, खाने के लिए और पहनावे के लिए, रिलीजन के लिए, इसके लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं। आपने जैसे कहा आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो अब तक की इंडिया में या फॉरेन में आप कहीं जहां पर भी गई हो, सबसे फेवरेट जगह आपकी कौन सी रही है ट्रैवल करने के लिए?
1: सबसे फेवरेट, वैसे तो मुझे इंडिया बहुत पसंद है, मुझे MP भी बहुत पसंद है, मैं MP से ही हूँ, तो मुझे लगता है कि MP के गांव, MP का जो रूरल टूरिज्म है वो बहुत बहुत अच्छा है। बट सबसे अच्छी जगह मुझे हरिद्वार और ऋषिकेश लगी है, क्योंकि वो बहुत शांति भरी है, वहाँ पे वो योगा और उन सब में बहुत फोकस करते हैं, मेडिटेशन बहुत फोकस करते हैं, बहुत नेचर है वहाँ पे, और माँ गंगा भी है वहाँ पे, तो वो बहुत बहुत नेचुरल जगह है। और मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगी श्रोताओं से कि प्लीज उसे गंदा ना करें, अगर आप जा रहे हो तो प्लीज उसे साफ रखिए, बहुत खूबसूरत हमारा भारत देश है, तो उसे प्लीज अच्छा बनाए रखिए।
0: ये आपने बहुत ज्यादा अच्छी बात कही कि जहां पर भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो एज अ ट्रैवलर और एज अ सिटीजन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उसे साफ रखें। हमने जैसे उसे देखा उसे वैसे ही के वैसे ही रखें, उसे गंदा बिल्कुल ना होने दें। और आपने हरिद्वार और ऋषिकेश की बात की, मतलब आपको माउंटेन्स, रिवर्स ये पसंद है?
1: जी बहुत ज्यादा।
0: तो इसके अलावा भी मैं, तो कोई ड्रीम डेस्टिनेशन जहां आप ट्रैवल करना चाहते हो कभी इंडिया में, इंटरनेशनली?
1: जी मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है नॉर्थ ईस्ट। मैंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत सुना है, बहुत खूबसूरत जगह है, और वहाँ के लोग, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे हॉर्न बजाना अलाउ नहीं है, वो बैन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स, इतने सिस्टमैटिक जगह है, इतने ट्रस्ट है। मेघालय है, वहाँ पे वाटरफॉल्स की ऐसी लाइन लगी हुई, इतना सुंदर, इतना नेचुरल, इतना पीसफुल जगह है। वहाँ पे लोग एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं, वो अपनी प्रकृति को भगवान मानते हैं, जो हमें भी मानना चाहिए और जो हम भूल चुके हैं, तो प्रकृति को भगवान मानिए, कि हर कुछ हमको प्रकृति ने ही दिया है।
0: जी आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉर्थ ईस्ट एक आपने मेंशन किया, तो हाँ भाई मेरी भी, सच कहूँ तो मुझे भी नॉर्थ ईस्ट घूमने का बहुत मन है, और आई गेस बारिश के मौसम में तो वो और भी खूबसूरत हो जाता है, और आप टूरिज्म के तो आपको ज्यादा पता भी होगा। तो मैं आपको बस यही विश करती हूँ कि आप जहां पर भी ट्रैवल करना चाहती हो वहां पर ट्रैवल कर सको, और ये जो ट्रैवलिंग का मैसेज है इसको सब में फैला सको। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको ट्रैवलिंग क्या फीलिंग देती है, वो फीलिंग क्या होती है एक नई जगह देखने की, नए लोगों से मिलने की, एक नई अलग एक कल्चर को देखने की, वो फीलिंग आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो?
1: बस एक लाइन बोलना चाहूंगी कि भ्रमण से भ्रम दूर होता है। तो जब आप भ्रमण करते हो आपको समझ आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, जो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको दिखता है कि लोगों के पास और प्रॉब्लम भी और उसके आगे भी एक जिंदगी है जो आपको देखनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। वो बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, बहुत प्यारे लोग हैं, आपको हमेशा लोग आपको हेल्प करेंगे, आप हमेशा अच्छे रहिए, आप खुद से अच्छा करेंगे तो सब कोई आपका अच्छा ही करेंगे, जितना मैंने अभी तक ट्रैवल में देखा है। और ये दुनिया बहुत सुंदर है, स्पेशली इंडिया बहुत सुंदर है, तो भ्रमण से भ्रम दूर होते हैं। तो जो भी आपके भ्रम है कि आपका ही लाइफ प्रॉब्लम चल रहा है, आपको ये इशू चल रहा है, तो आप जब बाहर जाके देखेंगे आपको समझ आएगा कि नहीं, ऐसी बहुत इश्यूज हैं ऑलरेडी जो लोग सॉल्व कर चुके, तो आप सीखने को बहुत मिलता है आपको।
0: जी, आपने ये लाइन भी बहुत अच्छी की और बहुत इंस्पायरिंग लगी कि भ्रमण से ही भ्रम दूर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो युवा हैं हमें भी ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल से हम जो सीखते हैं वो शायद हम क्लासरूम्स या सिर्फ पढ़ाई करके नहीं सीख सकते। तो कांची, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो ट्रैवलिंग की टिप्स बताए, आपने जो ट्रैवलिंग की फीलिंग बताई, वो हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगी। तो एक आखिरी सवाल जाते जाते कि आज आप आकाशवाणी की ओर से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं सुनना चाहूंगी तुम तक फ्रॉम रांझना।
0: अरे वाह, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है। तो चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। थैंक यू।

0: साथियों, हमारे आज के युवा तरंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारी अगली युवा साथी से। हेलो, क्या नाम है आपका?
1: हेलो, सानवी देसाई।
0: हाय सानवी, कैसी हैं आप?
1: आई एम ऑल गुड।
0: सानवी, ये बताइए कि आप अभी मुझे पानी पूरी खाते हुए दिखाई दी थी, तो मैं ऐसा मान रही हूँ, हमें ऐसा लगता है कि पानी पूरी आपकी फेवरेट डिश है।
1: हाँ।
0: अच्छा, ये बताइए सानवी, आप अभी क्या कर रही हैं? पढ़ाई करती हैं या आप जॉब कर रही हैं?
1: मैं एक्चुअली इंदौर की रहने वाली हूँ और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कोर्स के लिए मैं अभी मुंबई जाने वाली हूँ।
0: क्या बात है, तो मुंबई ही क्यों आपने चुना इस कोर्स के लिए और क्या कारण रहा कि आपने जो भी इंस्टीट्यूट चूज करा है मुंबई में, तो उसे चूज करने का?
1: मैंने मुंबई में वेलिंगटन इंस्टीट्यूट चूज किया है, एंड मुंबई इसलिए क्योंकि मीडिया का सबसे ज्यादा बड़ा हब है मुंबई, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज वगैरह सबसे ज्यादा मिलेगी, तो ये सोच के मुंबई मैंने चूज किया है।
0: क्या बात है सानवी, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस जर्नी। एंड जैसा कि आपने बताया, आप मुंबई में रहकर पढ़ाई कर रही हैं, तो ये बताइए मुंबई के बारे में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है?
1: ऑब्वियसली मुंबई मॉनसून एंड द नाइट लाइफ ऑफ मुंबई, लाइक ऐसी मुझे कहीं और नहीं दिखी है नाइट लाइफ एंड मॉनसून वगैरह, इट्स वेरी सूदिंग और बहुत अच्छा लगता है।
0: और मुंबई के आसपास तो काफी सारी जगह है जहाँ पर मॉनसून में स्पेशली घूमने जाने का मजा ही अलग होता है, तो आप कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर चुके हैं अभी तक?
1: फिलहाल तो बस महाबलेश्वर जा चुकी हूँ, बट आई विश लोनावला वगैरह भी मैं एक्सप्लोर करूँ जल्दी।
0: अच्छा सानवी, ये बताइए कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं, या कहें कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं?
1: तो एज आई सेड, कंटेंट क्रिएशन में डांस, तो डांस इज माय हॉबी, तो खुद को रिलैक्स करने को, खुद को थोड़ा मोटिवेट एंड फ्री टाइम में खुद को थोड़ा फिल करने के लिए वगैरह, एंड ऑल्सो आई एम अ कथक डांसर, तो उसका भी रियाज करते रहना चाहिए, तो मैं मेरे फ्री टाइम में उसका रियाज भी करते रहती हूँ।
0: क्या बात है, तो सानवी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को समझने को भी मिला आपके बारे में। अब ये बताइए, आज आकाशवाणी इंदौर की ओर से कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगी?
1: आई वुड लव सैयारा। थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो मैं आकाशवाणी से आज एक प्यारा गाना सुनना चाहती हूँ।

0: साथियों, ये था हमारा आज का खास सेगमेंट युवा तरंग का कार्यक्रम। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा।
1: तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, तो अब समय आ गया है उन दोनों ही प्रश्नों के आपको उत्तर बताने का। पहला प्रश्न था कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है विनोबा भावे ने की थी।
0: और साथियों, दूसरा प्रश्न था गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जिसका उत्तर है त्र्यंबकेश्वर।
1: तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने ढूंढ के रखे होंगे इनके उत्तर। और इसी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।
0: दीजिए इजाजत इरा
1: और मार्गेशा को
0: नमस्कार।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।

मीडियम वेव 462.96 मीटर पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं दोस्त फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत। अख्तर रोमानी का लिखा गीत था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। कार्यक्रम में आप सुनिए गोमती के किनारे, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे गोमती के किनारे फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं सिलसिला फिल्म का गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार के, जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत दिया है शिव हरी ने।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए प्रेम नगर फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है एसडी बर्मन ने।

लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

लीजिए आप सुनिए साहिर का लिखा गीत सपन चक्रवर्ती के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है जमीर, आवाज किशोर कुमार की है।

यादों की बारात फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं उजाला फिल्म का गीत मोहम्मद रफी मुकेश और साथियों के स्वर में। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ

उजाला फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, अब सुनिए सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं शुभधा जेजुरीकर की गाई गजलें। सबसे पहले सुनते हैं अनजान देहलवी का ये कलाम।

आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं शुभदा जेजुरीकर की गाई गजलें। लीजिए अब सुनिए जिगर मुरादाबादी का ये कलाम।

अभी आप सुन रहे थे शुभदा जेजोरीकर की गाई गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी इंदौर से अब सुनिए लोक संगीत। आज के कलाकार हैं बाबूलाल धोलपुरे और साथी।

0: बाबूलाल धोलपुरे और साथियों के गाए लोकगीत के साथ ही लोक संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यावहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
3: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वह महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्टस एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने स्पष्ट किया है कि वायरस H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। आईसीएमआर के अनुसार H1N1 समेत मौसम में इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले

0: दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीटिंग वेव 462.96 मीटर पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में जानकारी लीजिए सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सुनेंगे मत्स्य पालन विषय पर डॉक्टर सुशांत पुणेकर की वार्ता। रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में और रात 8:15 डगर विकास की, ये दोनों ही कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। रात 9:15 आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत और रात 9:30 आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

अब एक नज़र कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर एक नज़र। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन का प्रसारण समय रहेगा सुबह 6:30। 6:35 पर कार्यक्रम खेती की बातें में कल आप सुनेंगे सोयाबीन में कीट नियंत्रण की जैविक एवं रासायनिक विधि पर जानकारी। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण समय रहेगा सुबह 6:40 पर। 7:20 पर कल आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर, प्रस्तुति दुर्गेश नंदिनी चौधरी की रहेगी। इसमें कल आप सुनेंगे विशेष महाकाल पुजारी दिनेश त्रिवेदी से की गई बातचीत। फिल्म संगीत सुनिएगा सुबह 8:30 और 9:00 प्रसारित किया जाएगा मराठी कार्यक्रम। इसमें कल आपको सुनवाएंगे महाकाल शाही सवारी के उपलक्ष में सारिका देशपांडे से जानकारी। साथ ही आप सुनेंगे दीक्षा सुपेकर को। 9:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे टीबी गोरे का वायलिन वादन, राग होगा अहिल्या बिलावल। जिले की चिट्ठी सुन सकते हैं आप 10:00 से हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और 10:05 पर होगा कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। इसमें 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने। संग्रहालय से दिन में 12:30, स्वास्थ्य दर्पण 1:00, लोक संगीत 1:30, सुगम संगीत 1:45 पर, फिल्म संगीत 2:00 और 2:30 चित्रपट संगीत। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी युववाणी के साथ 5:00। इसमें कल का आकर्षण रहेगा कुछ बातें कुछ गीत, फिल्म संगीत 5:45 पर। 6:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सुगम संगीत में 6:30 कलाकार होंगे जगजीत सिंह। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं 6:45 पर। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 कार्यक्रम होगा ग्राम लक्ष्मी। इसमें कल आप सुनेंगे महिला कृषक भावना खाटरिया ग्राम भोगवा से सुनीता पंडित की बातचीत। रात 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा। रात 8:15 फिल्म संगीत। 8:30 आपको सुनवाएंगे भगवान महाकाल की चौथी शाही सवारी की रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम मनभावन आप सुनेंगे कल रात 10:00 और रात 10:30 आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत शशिकांत मनोहर तांबे का गायन, राग होगा गोरख कल्याण। श्रोताओं एक बार पुनः याद दिला दें कल रात 8:30 आप सुनेंगे भगवान महाकाल की चौथी शाही सवारी की रेडियो रिपोर्ट। ये रूपरेखा थी।

सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: दी, ये देख कैसा है।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना,
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप से भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे ले जाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वन विभाग में पदोन्नत कर्मचारी कल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करेंगे। और प्रदेश के श्योपुर, मुरैना सहित 14 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनियों के प्रमुख के साथ बातचीत में कहा कि सरकार की नीतियों में स्थिरता से स्टार्टअप्स में भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा, कम लागत और जोखिम लेने की क्षमता के कारण देश अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर की प्रतिभाओं को भारत के स्पेस स्टार्टअप से जोड़ने का आह्वान भी किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को वैज्ञानिक प्रगति और नवाचार का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र का लगातार विस्तार कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता से भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में साख बढ़ी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित संत समागम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि लगातार होने वाले चुनाव विकास के काम में बाधा डालते हैं। चुनावी ड्यूटी में शिक्षक, कर्मचारी, पुलिस और प्रशासन का समय लगता है और सरकारी धन भी खर्च होता है। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होने से समय और संसाधनों की बचत होगी। श्री चौहान ने संत समाज से एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की।
1: मैं यही प्रार्थना करूंगा अंत में कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका हम संकल्प है। इसके लिए प्रचार करें, जनमानस बनाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और वातावरण ऐसा बन जाएगा कि कोई राजनीतिक दल इसका विरोध करने का साहस ना कर पाए।
0: केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सोमवार को रायसेन में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वह सुबह कन्या महाविद्यालय में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन गर्ल्स स्कॉलरशिप कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद पौधरोपण और मेधावी छात्र सम्मान समारोह में भाग लेंगे। शाम 3 से 6 बजे तक दिशा समिति की बैठक में जिले के विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वन विभाग में पदोन्नति पाने वाले शासकीय सेवक कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करेंगे। भोपाल के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में सुबह 11 बजे आभार समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। समारोह में पदोन्नत कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ बेहतर काम के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि GRSE भविष्य में जहाज निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने कहा कि विश्व को निर्यात किए जाने वाले रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर वितरण पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सशस्त्र बल अब रक्षा आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी उत्पादों पर निर्भर हैं।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: राजगढ़ जिले के करनवास थाना क्षेत्र में आज महाकाल दर्शन कर झांसी लौट रहा एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। ग्राम परसुलिया के पास तेज रफ्तार बलेनो कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को ब्यावरा अस्पताल ले जाया गया जहां 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें भोपाल रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा यानी FMGE पास कराने के नाम पर पैसे मांगने के दावे सामने आए हैं। सरकार ने छात्रों से ऐसे लोगों के झांसे में न आने और किसी भी तरह की धनराशि नहीं देने की अपील की गई है। संदिग्ध सरकारी जानकारी की PIB फैक्ट चेक को भेजने की सलाह दी गई है। कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने राजगढ़ जिले के सारंगपुर की याशिका मिश्रा का सम्मान किया जिन्होंने डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में भाषा विज्ञान विषय की MA परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। मंत्री ने कहा कि याशिका की सफलता उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि याशिका की उपलब्धि क्षेत्र की अन्य बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा है। प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी सारांश जैन ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया है। डॉक विभाग में कार्यरत सारांश के टेस्ट डेब्यू पर केंद्रित मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह टेस्ट कैप सारांश की कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। सिंधिया ने उनके सफल टेस्ट करियर के लिए शुभकामनाएं दी। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाडोना, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी और सीधी में भारी बारिश के आसार हैं। भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 23 से 26 अगस्त के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर पुलिस ने फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 9,80,000 रुपए की ठगी की थी। राजगढ़ में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की तैयारियों और विभागीय प्रकरणों की समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने लंबित आवेदनों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। खंडवा में ऐतिहासिक पद्मकुंड के संरक्षण के लिए नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों का महापौर ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन कृत्रिम विसर्जन कुंड की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दतिया में साहित्यकार पंडित महेश मिश्र मधुकर की पुण्यस्मृति में आयोजित समारोह में देशभर से आए 100 से अधिक कवि, लेखक, साहित्यकार और पर्यटन एवं विरासत क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। देवास में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो उससे 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
8: आरबीआई कहता है
9: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी सुनने वाला सगलाज किसान भाई बहन न नाना नानी होण के धरणीधर मिश्र की राम राम। राम राम भाई, आओ भाई आओ, बैठो न सुनाओ कैसा कहीं हाल चाल चले रहा है। खेती बाड़ी में तो सब मजे में है नी, न घरे भी सब सुख चैन है। नानकिया का बाऊजी बीमार पड़ गया है, मांदा हो गया नी। ओ तो भैया उनको तो आयुष्मान कार्ड होएगो नहीं, उनको नहीं है कहीं। अरे भैया तुमके मालूम ही नहीं, भैया अपने यहाँ आयुष्मान योजना है, आयुष्मान भारत योजना, इनका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोले इनके। हम सबके इनकी हेयर होनी चाहिए। ये भारत सरकार की ऐसी एक स्वास्थ्य योजना है जो अपना 2018 से पूरा भारत में लागू करी गई। नहीं को खास उद्देश्य ये है कि जो भाई लोग जो अपना आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है ना, जो बीपीएल कार्ड जिनके हुए ना, बीपीएल कार्ड धारक, उनके स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क मुहैया कराना इनको उद्देश्य है, सबके मिल जाए। इनका अंतर्गत जो परिवार आए ना, उनके प्रत्येक परिवार के 5 लाख रुपया तक को कैशलेस, मतलब जहाँ नकदी नहीं लगे, असो स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने को उद्देश्य है इनको। न इना हिसाब से एक 10 करोड़ लोगों का एक अपना एक इनका लक्ष्य निर्धारित करे थो कि 10 करोड़ लोग इन्हें करीब करीब 10 करोड़ परिवार, इन्हें कहने का मतलब 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो सके। नहीं के बाद में बाकी आबादी के भी धीरे धीरे इनका दायरा में लाएगा वे। अभी 70 साल से बड़ी उम्र का जो भी है अपना भाई बहनों, उनके भी उनके लिए कोई आर्थिक भी सीमा लागू नहीं है। यानी वे भले आर्थिक रूप से बीपीएल कार्ड धारक नहीं हुए, आर्थिक रूप से संपन्न भी हुए कभी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनके भी इन योजना को लाभ मिल सके हैं और मिले हैं। उनको उद्देश्य है कि सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सबके मिल सके, वे बिना परेशानी के स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकें, है नी। और एक एक फायदा यो है कि कार्ड में आपको पूरो चिकित्सा को इतिहास रहे, अपनों स्वास्थ्य को रिकॉर्ड रहे, जिससे कि बीमा कंपनी और अस्पताल सब एक साथ अपनी

सहायता कर सके। जब अपने सारों रिकॉर्ड एक जगह होएगा तो अपने जल्दी सुरक्षा मिल जाएगी। तो भाई लोग इनके सरों कहीं करना अपने को, इनके सरों अपने को अपने हे रखनी कि भाई हमारा नाम आई सके कहीं, अपने यहाँ जाके सरकारी केंद्र पे अपनो समग्र आईडी ले जाओ, अपनो आधार कार्ड ले जाओ, ना चेक कराओ कि भाई मैं की योजना में पात्र बन सकूँ कि नहीं बन सकूँ, हमारा परिवार है नहीं। वो जिन लोग का बताया नहीं कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उनके तो बिल्कुल इसमें सहायता मिलेगी है ना। और इसमें कौन कौन सी चीज़, इनमें जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र रहे इसमें कौन कौन सी चीज़ें अपने मिल सके, कौन कौन सी सुविधा मिल सके, वो भी जानकारी होनी चाहिए भैया। गर्भावस्था की देखभाल, मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, नवजात जो अपना बच्चा रहे उनकी स्वास्थ्य सेवाएं, बालकों की स्वास्थ्य सेवाएं, न गैर संक्रामक रोग कभी हो उनको है, मानसिक बीमारी को प्रबंधन है ना, और बुजुर्गों सरु आपातकालीन चिकित्सा है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो भाई लोग अपने सबसे पहले देखना कि अपन का पात्र हैं कि नहीं। यदि अपन पात्र हैं और कभी अभी तक भी अपन ने वो कार्ड नहीं बनवाए हो तो पहली फुर्सत में जाओ भैया है नहीं? ना अपना सरकारी अधिकारी से मिलो, अपना ग्राम पंचायत में मिलो, सचिव जी से मिलो है ना, अपना पंच सरपंच जी से मिलो, न उनसे जानकारी लेके अपना इन्हीं कार्ड की अपनी प्रक्रिया चालू कर दो, न जल्दी से जल्दी अपना ये कार्ड बनवाओ। तो भाई लोग बात तो अपन और भी करेंगे, सुना ये लोकगीत भाई मान सिंह भोंडिया ने उनकी मंडली को गायो, ये लोकगीत सुना।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: भाई लोग, अभी संदेश का पहला अपन ने सुने हुए लोकगीत भाई मानसिंह भूंडिया ने उनकी मंडी को गायो, हरियालो सावन आयो। आनंद है गयो, सावन तो चल ही रहे है और सावन का आनंद में यो लोकगीत भी अच्छो हो गयो। भाई लोग, अपन चौपाल पे बखत बखत पे हम अपना जो खेती बाड़ी का कामकाज का जो विशेषज्ञ रहे, जो चाहे कृषि वैज्ञानिक हो, चाहे अपना पशुपालक हो, चाहे पशु उनका डॉक्टर साहब हुए, इन सब से अपन चर्चा करा और हमारा जो श्रोता होने अपना जो किसान भाई बहन उन्होंने उनकी समस्या ना बताई के उनसे सुझाव लावा, उनका निराकरण पूछा। इन्हीं कड़ी में अपन ने आज एक भेंटवार्ता सुनाऊंगा अपन मत्स्य पालन यानी मछली पालन सामूहिक सुझाव डॉक्टर सुशांत पुणेकर से अपनी सहयोगी स्मिता दीदी पूछी रही है नी? तो सुना भाई इनकी बात।
3: किसान भाई बहन राम राम। हमने समय समय पर आपको कई सारी जानकारियाँ दी जिसमें खेती से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ रहती है, लेकिन जब हमारे पास खेती की ज़मीन रहती है वैसे ही साथ में हमारे पास कई बार ऐसी खाली जगह में तालाब नुमा भी जगह खाली रहती है और खेती के साथ साथ हम चाहें तो मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, लेकिन मत्स्य पालन में क्या करें, कैसे करें, कब करना चाहिए, किस तरह से उसके लिए हमको लाभ में होता है, इस सब के लिए भी हमको पूरी जानकारी जरूरी है। और उसके लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर सुशांत पुणेकर जी को, जो कि सहायक प्राध्यापक मत्स्यकी शासकीय महाविद्यालय महू से हमारे बीच पधारे हैं। सबसे पहले मैं आपका डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार।
4: नमस्कार
3: सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि मत्स्य पालन के लिए जो तालाब होता है उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए जिससे कि अच्छे से फायदा हो।
4: जी, सर्वप्रथम तो हमको जो किसान भाइयों जो हमारे निचले क्षेत्र हैं खेती के अलावा जहाँ पर पानी का भराव भर जाता है और उसको हम मछली पालन के लिए उपयोग करना चाहते तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। कुछ हमको मछली के तालाब के निर्माण के संबंध में और उसके रखरखाव के संबंध में ध्यान देना होगा। जैसे कि यदि हमारा खेत और उसके लगा हुआ कुछ खेत जो कि ढलान में है, ऊपर नीचे है और पानी उसमें जो है 3 से 6 महीने 8 महीने तक पानी निर्धारित रहता है, ऐसी स्टेज में हम उसको मत्स्य पालन के क्षेत्र में या उस तालाब को बना सकते हैं। सर्वप्रथम हमें ये करना होगा कि उसके मेड़बंदी अर्थात हमको तालाब की गहराई जो है वो 6 फीट करनी होगी। जमीन स्तर से 6 फीट हम तालाब को खोदेंगे, जो भी हमारी मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी से हम तालाब की मेड़ की मेड़बंदी कर लेंगे।
3: अच्छा।
4: और कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा तालाब है या तो चौकोर होगा या तो गोल होगा या वर्गाकार हो सकता है, ऐसी स्टेज तीनों स्टेज में हम मछली का पालन का काम कर सकते हैं। अच्छा। पर हम ये ध्यान रखें कि चूंकि वो पानी के भराव की जगह है, खेतों का पानी उसमें जाता है, तो ऐसी स्टेज में हमको मालूम ही है कि हमारा जो गड्ढा है वो नीचे लेवल पे है, तो ऐसी स्टेज में हम पानी लेने वाली जगह पर जहां से इनलेट जिसको बोलते हैं पानी आने का रास्ता, वहां हम पाइप लगा देंगे। अच्छा। और उसको मेड़ से मेड़ बनाकर उसको ढक देंगे और उस पाइप में दोनों तरफ हम मच्छरदानी की जाली से उसको बांध देंगे, जिससे कि जो भी पानी हमारे तालाब में आ रहा है वो स्वच्छ पानी आ जाए, अर्थात उसमें किसी प्रकार के कीड़े पतंगे या मेंढक या कोई अन्य जीव जो कि हमारे मछलियों को नुकसान पहुंचा सकता है उसको हम रोक लगाएंगे और उस पानी को हम अपने उस तालाब में लेते जाएंगे। इसी तरह से जब हमको मालूम है कि ज़्यादा बारिश हुई और बहुत अधिक पानी हमारे तालाब में आएगा तो हमको एक पानी बाहर निकलने का भी रास्ता तैयार करना होगा, जिसको हम आउटलेट करते हैं, जो कि तालाब के आने के दौर से बस अपोजिट विरुद्ध दिशा में उसको हम बनाते हैं। वहां पर भी हम इसी तरह का पाइप लगाएंगे। वह पाइप जो होगा निचले नहीं होकर ऊंचे स्थान पर लगेगा, अर्थात 6 फीट पर ही उस पाइप को हम लगाएंगे, क्योंकि 6 फीट हमको पानी की आवश्यकता है, उससे ऊपर जितना पानी बढ़ेगा उस पाइप के माध्यम से वो दूसरी तरफ आगे निकल जाएगा। उस पाइप में भी हम आने वाले रास्ते और पीछे की तरफ दोनों तरफ मच्छरदानी की जाली लगाएंगे, जिससे कि जो मछलियां हमारे यहाँ पालतू पल रही हैं वो उस जाली से बाहर ना निकलने पाए। तो हम दोनों तरफ लगाएंगे। मान ली एक जाली किसी कारण से थोड़ी सी फट भी गई, हाँ। तो दूसरी जाली से वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो अच्छा। आपका जो उत्पादन है वो आपको पूर्णतः मिलेगा
3: जी।
4: ये तो हो गया तालाब के रख रखाव, हाँ। और उसके निर्माण से संबंधित
3: जी।
4: साथ ही हमको तालाब की तैयारी, तालाब की तैयारी से मतलब ये है कि हमको तालाब को उर्वरक बनाना है
3: जी।
4: उर्वरक से तात्पर्य यह है कि हमको उसमें, जैसे हम खेतों में 15 दिन पुराना गोबर या 1 महीना या 2 महीने पुराना गोबर डालते हैं, उसी तरह से हमारे मछली पालन के लिए भी हम 1 माह से 3 माह पुराना गोबर,
3: अच्छा।
4: 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए 5.6 टन से 6.6 टन गोबर का हमको 1 माह से 3 माह पुराना गोबर को डालना है। तो हम उसके तली पे इसको बिछा देंगे अच्छे से
3: जी।
4: सूखे, जब सूखा होता है जून के माह में, अभी तालाब भरा नहीं है तो हम जिस जगह पानी नहीं भरा वहां पर भी हम गोबर डालकर ये कार्य कर सकते हैं
3: जी।
4: साथ ही 250 किलोग्राम यूरिया पर हेक्टेयर की दर से और 200 किलोग्राम जो है सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करके हम उसके ऊपर छिड़क देंगे गोबर के ऊपर,
3: अच्छा।
4: और फिर हम उस पर पानी भरना शुरू करेंगे। साथ ही यदि हमें यह संभावना लगती है कि हमारे तालाब का पानी सीपेज करेगा तो हम थोड़ा सा पानी भरकर उसमें और ट्रैक्टर से जो कंधर किया जाता है धान के खेत में, उस ट्रैक्टर से उसको बार बार घुमाते हैं, जिससे कि गोबर और मिट्टी आपस में पेस्ट बनकर जो भी हमारे नीचे अंदर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं या छिद्र रहते हैं वो उस पेस्ट से भर जाते हैं, अर्थात पानी रुकने की संभावना
3: बढ़
4: जाती है। तो ये प्रक्रिया भी यदि हमको आवश्यकता है तो हम करें, और जिससे कि हमारा तालाब पूरे वर्ष भर 12 महीने तक सुदृढ़ रहेगा पानी रोकने के लिए। इस तरह से हम तालाब का निर्माण और उसका रखरखाव कर सकते हैं, और 6 फीट तक हम धीरे धीरे पानी के लेवल को बढ़ाते जाएं। 6 फीट के ऊपर हमने आउटलेट लगा रखा है, उससे जो अतिरिक्त पानी होगा वो बाहर निकलते जाया करेगा। तो यह एक तरह से हमारा मछली पालन के लिए आपका जो निचली एरिया का जो खेती थी या जो आपका गड्ढेदार जमीन थी उसका इस्तेमाल आप मछली पालन के लिए कर सकते हैं
3: जी। जब मछली पालन के लिए जैसे हमने तालाब तैयार किया, तो अब कौन सी प्रजाति की मछलियां हमको लेना चाहिए, उसका संग्रहण कौन सा करें, कितनी मात्रा में करें
4: जी,
3: ये भी थोड़ा सा बताइए
4: जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमने अब तालाब तैयार कर लिया है जिसमें 6 फीट गहरा है और हमने गोबर यूरिया DAP डालकर उसको तैयार कर लिया। अब हम मछली का बच्चे डालें, उसके पहले हम जो है मछली के तालाब को एक आकलन कर लेते हैं कि इसमें जो पानी है उसमें प्राकृतिक रूप के जो हमारे मछली का आहार है जिसको हम प्लवक कहते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वनस्पति प्लवक, एक होते हैं प्राणी प्लवक, जिसको हम जूप्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन कहलाते हैं। फाइटोप्लैंकटन बहुत सारे पौधे होते हैं छोटे माइक्रोस्कोपिक, ये दोनों ही प्रकार के प्लवक हमारे मछलियों का मुख्य आहार है
3: जी।
4: ये हमारे यदि हमने गोबर डाल रखा है अच्छी मात्रा में तो ये अपने आप ही तैयार होते हैं उस तरह।

0: में मिट्टी के साथ मिलकर उससे अपने पोषक तत्वों को लेकर तैयार होते हैं। ऐसे तैयार प्लवक की पहचान इस तरह से होती है कि हम प्लवक मापने का एक नेट आता है, उससे भी हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे तालाब में अच्छे क्वालिटी का प्लवक उपलब्ध है अथवा नहीं। और वैसे सामान्यतः हम तालाब के ऊपर खड़े होकर भी देखते हैं कि तालाब का रंग यदि हरा भूरा दिखाई दे रहा है तो यह हम समझते हैं, आकलन करते हैं कि इसमें मछली का आहार भरपूर मात्रा में उपलब्ध है।
1: जी
0: अब जब यह उपलब्ध हो गया है तो जैसा आपने पूछा है कि अब कितनी मात्रा में कौन कौन सी मछलियों का संग्रहण करें,
1: हाँ
0: तो इस तरह के तालाबों में हम मिश्रित मत्स्य पालन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 3 भारतीय मछलियां और 3 विदेशी मछलियों का इस 6 फीट गहरे पानी में संग्रहण करते हैं।
1: अच्छा
0: तो भारतीय मछलियां जो हैं, तीन वो हैं, पहली मछली है हमारी कतला, दूसरी है रोहू, तीसरी मिर्गल मछली। ये तीनों भारतीय कार्प मछलियां हैं। तीन हमारे पास में विदेशी कार्प मछलियां भी हैं जिसमें पहली मछली है सिल्वर कार्प, दूसरी है ग्रास कार्प और तीसरी है कॉमन कार्प। ये 6 प्रजातियों को एक तालाब में हम पालन करते हैं जिसको हम मिश्रित मत्स्य पालन या संगठित मत्स्य पालन तकनीक का नाम देते हैं।
1: अच्छा
0: ये 6 प्रजातियों में खास बात यह है कि ये एक दूसरे को नहीं खाती हैं, ये 6 तेजी से बढ़ती हैं और इनकी बाजार में खपत भी बहुत अच्छी है
1: अच्छा
0: और इनमें रोग लगने की संभावना काफी कम है।
1: जी
0: तो इस तरह की ये 6 प्रजातियां एक साथ मित्रतापूर्वक एक ही तालाब में जीवित रहती हैं और अपना विचरण करके साल में 1 किलो से ऊपर वजन ग्रहण धारण कर लेती हैं।
1: अच्छा तो ये मतलब कितना बड़ा तालाब है, तो कितनी, जैसे आपने तीन तीन का रेशो बताया एक,
0: जी,
1: तो
0: तो इस
1: कितने बड़े
0: अब
1: में
0: ये साधारणतः
1: अंदाज है आपसे?
0: हमने जो भी अभी आप मात्राएं बताई हमने कि गोबर जो है वो 5 टन से ऊपर 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए,
1: अच्छा
0: तो अभी मैं जो मात्रा बता रहा हूँ मछलियों की संख्या वो भी
1: जी
0: 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र जिसका पानी का गहराई 6 फीट हो उसके
1: हाँ
0: लिए हम ये 6 प्रजातियों में हम टोटल 10,000 जो है वो जीरा स्पॉन साइज की मछलियों को जो कि फिंगर साइज होंगी या फ्राई होंगी उसको डालेंगे, 10,000 फ्राई
1: अच्छा
0: जो कि लगभग 25 mm से ज्यादा बड़ी होती है, उन मछलियों का हम संग्रहण करते हैं 10,000,
1: अच्छा
0: 6 प्रजातियों को मिलाकर।
1: छों
0: ये
1: को मिलाकर 10,000,
0: 10,000 मछली,
1: उसका अनुपात वैसे रखें जैसे आपने बताया था, तीन
0: जी
1: तीन का अनुपात के
0: जी
1: लेकर।
0: तो
1: जी
0: अनुपात में भी हम देखेंगे कि इन 6 मछलियों को हम 10,000, इस जो हमारी जो फ्राई है साइज की मछली उसका, यदि हमारी मछलियों को हम बड़ी साइज का लेते हैं या उंगलियों के बराबर के लेते हैं जिसको उंगलिकाएं कहते हैं, उंगलियों की साइज की, तो वो हमको 5,000 मछलियां लेना है
1: अच्छा
0: संख्या में, क्योंकि वो
1: छोटी
0: बड़ी है।
1: लेंगे,
0: छोटी लेंगे
1: हाँ
0: तो ज्यादा लेंगे दस
1: ज्यादा
0: हजार
1: लेंगे।
0: और फ्राई साइज की लेंगे तो 5,000 से 5,500 तक का हम संग्रहण करते हैं 1 हेक्टेयर
1: जी
0: जल क्षेत्र में।
1: जी जी जी
0: अब मान लीजिए कि 10,000 मछलियों का संग्रहण करना है तो हमको भारतीय मेजर का मछलियां जिसको कतला, रोहू, मिर्गल कहा मैंने, इनका अनुपात होगा, यदि हम 3 ही मछलियों का संग्रहण करते हैं तो 4:3:3 होगा, अर्थात 10,000 मछलियों में इन 3 ही मछलियों का संग्रहण करते हैं तो कतला हमको 4,000 डालनी है,
1: जी
0: रोहू 3,000 और मिर्गल 3,000।
1: 3,000
0: जी, और इसी तरह से हम 6 प्रकार की मछलियों का संग्रहण करते हैं तो 10,000 मछलियों का संग्रहण हमारा पहली कतला मछली होगी जो कि हमको 1,500 की संख्या में डालना है, रोहू 2,000, मिर्गल 1,500, सिल्वर कार्प 2,000 और जो अपनी ग्रास कार्प है वो 1,500 और कॉमन कार्प 1,500। इस तरह से टोटल हमको 10,000 मछलियों का संग्रहण 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में करना है।
1: अच्छा, तो इस तरह से इसमें मछलियों का, अब आपने आहार का जैसे बताया था कि हमारे यहाँ अपने प्राकृतिक आहार हो जाता है उपलब्ध,
0: जी
1: पर कभी ऐसा होता है कि अपने को अलग से भी आहार की व्यवस्था करना पड़ती है,
0: जी हाँ,
1: और अगर करें तो फिर क्या, किस प्रकार की करेंगे?
0: अतिरिक्त आहार के रूप में हमारे परिपूरक आहार जिसको हम सप्लीमेंट्री फूड भी कहते हैं,
1: जी
0: जो कि कोई आपकी खल हो, चाहे मूंगफली की खल हो, सोयाबीन की हो या सरसों की खल हो, और दूसरा चावल का चोकर, जो चावल का
1: अच्छा
0: पॉलिश होता है वो,
1: हाँ
0: दोनों को 1:1 में मिक्स करके और हम अपने तालाब में उसमें कुछ हम अपने ग्रोथ प्रमोटर दवाइयां हैं, कुछ एंटीबायोटिक डालकर और हर 2 दिन के अंतराल में तालाब के चारों कोनों में गोले गोले बनाकर डाल सकते हैं, उसको गीला
1: अच्छा
0: करके गोले बनाकर या किसी बास्केट में रख सकते हैं जिसको आकर मछली स्वादपूर्ण खा सके। तो यह मात्रा अब कितनी होगी, तो यह मात्रा जो होती है वो 3% होती है। टोटल मान लीजिए कि 100 किलोग्राम मछली है तो हमको 3 किलो आहार की व्यवस्था करनी है।
1: अच्छा
0: तो अंदाजन अनुमानित हम मानते हैं कि 100 किलोग्राम मछली है यदि हमने

0: दर्शन कर लिए, तो
1: हाँ
0: 3 किलो हमको आहार की व्यवस्था करनी
1: व्यवस्था
0: होगी।
1: करनी होगी।
0: तो इस तरह से हम अतिरिक्त परिपूरक आहार की व्यवस्था कर सकते हैं, किंतु अतिरिक्त परिपूरक आहार जो है वो पूर्णतः ग्रोथ के लिए नहीं काम करेगा, वो विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए काम करता है।
1: जी
0: पूर्णतः ग्रोथ के लिए तो हमको प्राकृतिक जो हमारा भोजन तैयार हुआ है गोबर से, जो
1: हाँ
0: प्लव वनस्पति प्लव के प्राकृतिक प्लव, उसके आधार पर ही वो मछलियां जो है तेजी से वृद्धि करेंगी।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसके अलावा जैसे कि मछलियों का जो उत्पादन है
0: जी
1: उसकी गणना करना रहती है,
0: जी
1: वो कैसे करें? अगर कुछ रोग हो जाता है,
0: जी
1: बीमारी कुछ फैल रही है, तो उसको कैसे पहचानें?
0: किसान भाइयों को मैं सुझाव देना चाहूँगा कि वह नियमित रूप से हर माह में 15 दिन के या 7 दिन के अंतराल में तालाब पर जाकर प्रतिदिन जाएं और मछलियों की जांच के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनके रोग धब्बों के लिए जानने के लिए वो घुमाकर फेंकने वाला एक जाल आता है
1: जी
0: जो मछुआरों के पास होता है। वो 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में वो चारों कोनों में फेंक कर एक बार देखे
1: अच्छा
0: कि उन्होंने जो 6 प्रजाति में डाली थी वो कितनी कितनी बढ़ गई। यदि वो हर 15 दिन के अंतराल में चेक करेंगे तो उनको उसके वृद्धि का भी ज्ञान होगा, साथ ही यह भी देख पाएंगे वो कि कितनी संख्या में उन्हें मिल रही
1: जी
0: है, तो दोनों का आकलन हो जाएगा। तीसरा आकलन ये हो जाएगा कि यदि हम हर 15 दिन में चेक कर रहे हैं तो उसमें कोई दाग धब्बे लाल कलर के या काले कलर के, या उसके जो आंखें बाहर निकल रही है या उसके
1: हाँ
0: जो पंख हैं वो गल रहे हैं, ये जानकारी आपको 15 दिन में ही मिलती रहेगी।
1: अच्छा
0: ज़्यादातर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, एक बार मछली के बच्चे खाना डाल दिया उसके सीधे 6 महीने बाद छोड़ते हैं, तो
1: हाँ
0: उस स्टेज में ये आकलन कर नहीं पाते हैं कि कब मछलियों ने कब अच्छा आहार प्राप्त हुआ और कब अच्छा ग्रोथ किया।
1: जी
0: जबकि मालूम है बारिश की ऋतु है, उसके बाद जो है वो शीत ऋतु में कितना वृद्धि करती है, फिर ग्रीष्म कितने करेगी, ये आकलन नहीं कर पाते वो कि ये प्रजाति ने किस समय अच्छी
1: किस
0: वृद्धि
1: समय अच्छी वृद्धि
0: वृद्धि की।
1: की।
0: तो इसके लिए सलाह है कि वो 15 दिन में घुमाकर फेंकने वाले जाल से जांच करते रहे और 6 महीने के बाद वो घुमाकर फेंकने वाले जाल से ये भी कर लें कि उत्पादन अच्छा है और छोटी मोटी बाजार में 20 किलो या 50 किलो की खपत है, तो वो घुमाकर फेंकने वाले जाल से ही मछलियों को इकट्ठा करें और बाजार में भी बेच सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जिनको लगता है कि ये बेचने लायक हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, 700 ग्राम 900 ग्राम या 1 किलो की हो चुकी हैं, इन
1: जी
0: मछलियों को भी वो इसी तरह से अपना अर्निंग का या अपने आय का साधन बना सकते हैं 6 महीने पश्चात।
1: अच्छा, तो सर वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी आपसे,
0: जी
1: इसके अलावा भी कुछ रह गई हो और आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहते हो?
0: मैंने बताया कि किसान भाइयों जो भी हमने मछलियों के पालन के लिए जो तकनीक आप तक पहुंचाई है उसके साथ साथ हमारा काम है कि एक सुबह अपने तालाब का चारों तरफ से भ्रमण जरूर कर लें, वो 6 बजे से 7 बजे के पूर्व, क्योंकि मछली जो है हमारी भानी में घुली हुई ऑक्सीजन, हम और आप जो है सांस लेने में वातावरण की ऑक्सीजन लेते हैं, मछलियाँ हमारी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करती है। तो होता यूँ है कि दिन भर तो सूरज के प्रकाश से हमारे तालाब पर पड़ती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे अंदर जो है वो ऑक्सीजन बढ़ती है, अर्थात ऑक्सीजन बनना शुरू होती है प्लांट से और वो पानी में घुल जाती है। रात में शाम के समय के बाद जो है वो पौधे ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर देते हैं, ऐसी स्टेज में बहुत सारी मछलियाँ जो है वो तालाब के अंदर रहती हैं और उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। वो कब होती है, सुबह 4 बजे जब तक सूरज नहीं निकलता और फिर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है। तो हम यदि हम रोज घूमेंगे तो निश्चित रूप से हमको ये आकलन हो जाएगा कि हमारे तालाब में पानी में घुली हुई ऑक्सीजन उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध है।
1: जी
0: यदि मछलियाँ श्वास की वजह से ऊपर उतर आ रही हैं तो हम अपने बोरिंग से अब नया स्वच्छ पानी उसमें चला दें,
1: अच्छा,
0: तो इस तरह
1: उससे
0: से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ
1: जी
0: ही हम तालाब में यदि हमारे पास नाव है तो पतवार के माध्यम से भी हम उसको में ऑक्सीजन डिजोल्व करा सकते हैं।
1: अच्छा
0: और तीसरी एक और बात है कि हमारे किसान भाई जो मैंने मात्रा बताई 10,000, उससे भी ज़्यादा मात्रा में लालच में मछलियों के बीज डाल देते हैं, उससे
1: हाँ,
0: भी हमारे जो जल क्षेत्र 1 हेक्टेयर का ऑक्सीजन कम होने
1: काम
0: लगती है।
1: होने लगती
0: तो
1: है।
0: ऐसी स्टेज में जब ऑक्सीजन कम होगी तो निश्चित रूप से रोगों की संभावना और बढ़ती है, मछलियाँ कमज़ोर होंगी, हम और आपको ऑक्सीजन नहीं मिले थोड़ी देर तक तो हम बहुत सारी चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरह से ये जीव भी ग्रसित हो जाता है। तो
1: जी
0: जितनी उपयुक्त मात्रा में आपको अनुपात में बताया गया उतनी ही मात्रा में मछलियों के बीजों का संग्रहण करें, तो ये
1: अच्छा
0: सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन मछली के तालाब से ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर सुशांत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद धन्यवाद किसान भाई।
2: भाइयों अभी अपन सुन रहा था मत्स्य पालन सामयिक सुझाव, तो ये डॉक्टर सुशांत पुणेकर जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी जानकारी बताई और बड़ी उपयोगी जानकारी थी। हम उम्मीद करा कि हमारा जो भाई बहनों ने यो कार्यक्रम सुन रहा था, यो वार्ता सुन रहा था, भेंटवार्ता, इससे जरूर से जरूर लाभ उठाएगा। और अब हम लाभ उठाऊंगा भाई लोकगीत को, तो भाई सुना भाई विष्णु प्रसाद मालवीय ने उनके साथी को गायो यो लोकगीत।

लोकगीत का पहला एक बात और कर लें अपन, वह बात वो थी जो अपन सबसे पहला आया था चौपाल पे और करी थी, वह थी आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में। तो इन सब योजना सरकारी योजना का लाभ उठाने शुरू सबसे पहली ज़रूरत वो है कि अपन अपना बाकी का दस्तावेज, अपना बाकी का कागज़ पत्र वे अपन व्यवस्थित कर लें। तंबलों का बाकी का कहीं हो, अरे भाई अपनों आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है कि नहीं है, अपनी समग्र आईडी कार्ड बनी हुए है कि नहीं है, है ना, अपना घर का पता का दस्तावेज जैसे अपना वोटर आईडी कार्ड हुए, ये सब कागज़ पत्र की अपने हेर रखनी। कभी भी अपन कोई सरकारी योजना का लाभ लेने जावा तो सबसे पहले वो अपनों पहचान पत्र पूछे, अपनों पतों को अपना सबूत पूछे, साक्ष्य पूछे, भाई आपको पता को कागज पत्र बताओ कौन सा है। तो ये सबकी जानकारी होना, और जो अपना किसान भाई बहन हो, जो जातिगत जिनका कार्ड बनया है, जिनका जाति का प्रमाण पत्र बनया है, वे भी उनके डिजिटल करवाई ले। आजकल डिजिटल कार्ड मांगे हैं भैया, तो ये सबकी तैयारी करेंगे तो अपन सरकारी योजना का लाभ ले पाएंगे, जैसे कि आज बात हुई। तो भाई लोग अब अपन लाभ लेवा आज की चौपाल को, अपनों आखिरी लोकगीत को भाई बद्रीलाल मालवी को गायो, ये लोकगीत सुना।

वाह भाई वाह, सावन की आएगी बाहर, चलो भाई झूला झूलूंगा। भाई बद्रीलाल मालवीय को गायो यो मीठो लोकगीत, अभी अपन सब ने सुनियो ना इनका साथे साथ। अब कार्यक्रम की बखत भी हो लगी, अपना मित्र धरणीधर मिश्र के आज्ञा देव भाई लोग, न सबसे कहाँ राम राम।

अभी खेती गृहस्थी का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा। प्रतीक्षा करें।

0: सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
2: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमें भारत की अंतरिक्ष यात्रा की उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की नई संभावनाओं पर विचार करने का भी अवसर देता है। आज भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और सरकारी संस्थानों के साथ साथ निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स भी इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत के स्पेस इकोसिस्टम की निरंतर यात्रा पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पल्लव बागला जी, जो लंबे समय से विज्ञान संचार के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पल्लव जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
2: पल्लव जी, अंतरिक्ष कभी केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा और राष्ट्रीय गौरव का विषय हुआ करता था, आज ये किसी देश की अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता, वैश्विक प्रभाव, इन सब चीजों को भी तय करने लगा है। इस पूरे बदलते परिदृश्य में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो सफर तय किया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, खासकर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में?
3: देखिये, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाता है क्योंकि 3 साल पहले भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहली बारी विक्रम लैंडर को लैंड किया था और प्रज्ञान रोवर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास चलाया था। उसी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत पहला देश बना था जिसने ऐसा काम किया दक्षिणी ध्रुव पे, तो उसी उपलब्धता को मनाने के लिए अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आज 3रा अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है और अगर आप देखें, इस वक्त कोई ऐसा पहलू नहीं है हमारी जिंदगी का जिसमें कि हमें अंतरिक्ष कहीं ना कहीं से छूता नहीं हो। आप ATM से पैसे निकाल ले जाएं तब आप अंतरिक्ष क्षेत्र से सैटेलाइट से टच में आते हैं। आप मौसम की जानकारी दें तब कहीं ना कहीं अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ते हैं आप। आप मछुआरे हैं, भारत के फार्मर्स हैं, किसान हैं, हर कोई किसी ना किसी तरह से अंतरिक्ष से कहीं ना कहीं जुड़ता है। आप मैप लेके गाड़ी से जाएं या रास्ता देखें, गूगल मैप देखें, वो भी अंतरिक्ष में जुड़ता है। तो हमारी जिंदगी में अंतरिक्ष पूरी तरह से हर जगह पे है और भारत की जो अपनी क्षमता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो एंड टू एंड है। हम अपने रॉकेट बनाते हैं, हम अपने सैटेलाइट बनाते हैं और उसके ऊपर जो हमारा एप्लीकेशन का काम है वो दुनिया में अद्वितीय है। सबसे अच्छे एप्लीकेशन भारत के ही बनाते हैं और आजकल जो बदल रहा है माहौल, उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा हो गया है। हाल में हमने देखा स्काई रूट एरोस्पेस के 28 साल के एवरेज एज वाले बच्चों ने अंतरिक्ष में पहले ही अटेम्प्ट में अपना विक्रम 1 रॉकेट भेजा। तो स्टार्टअप का क्षेत्र है वो भी आगे बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से भी बहुत इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाल में ही प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप्स के CEO से मुलाकात की, उनको प्रोत्साहन दिया। तो इतना कुछ हो रहा है कि हम और आप इस पे 2 घंटे भी बिताने तब पूरा नहीं होगा।
2: आपने अभी काफी विस्तार से बताया कि क्या हो रहा है और देश ने अब तक क्या क्या हासिल कर लिया है इस क्षेत्र में और ये यात्रा किस दिशा में जा रही है। आप इनमें से किन उपलब्धियों और किन प्राथमिकताओं को रेखांकित करना चाहेंगे भविष्य के मद्देनजर?
3: देखिए, भविष्य के मद्देनजर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसका नाम है गगनयान। वो ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि भारत अपनी ही धरती से अपने ही रॉकेट पे एक भारतीय को अंतरिक्ष में श्रीहरिकोटा से भेजना चाहता है और वापस लाना चाहता है। ये गगनयान प्रोग्राम जो है एक लंबा प्रोग्राम है, कई सालों से इसरो इस पे काम करता रहा है और आज ही इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने जो नेशनल स्पेस डे पे अहमदाबाद में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अगले 4 महीने के अंदर पहला गगनयान का अनक्रूड मिशन, अनक्रूड मिशन का मतलब हुआ मानव रहित। पहले 3 मिशन होने हैं मानव रहित, उसमें से जो पहला मिशन है वो उसको अंजाम देंगे। तो गगनयान का बहुत बड़ा महत्व है। भारत ऐसा 4था देश बनेगा जिसके पास अपनी ताकत से अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री को भेजने की क्षमता बनेगी और 2035 35 तक भारत की मंशा है कि वो एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाए और 2040 तक अपनी क्षमता से एक भारतीय को चांद की सतह पे भेजें और उसको वापस लेके आए। तो भविष्य तो बहुत क्लियर है, लेकिन इसके साथ साथ ये तो हुई ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात। फिर हमारे पास अपने सैटेलाइट होंगे जो कम्युनिकेशन के लिए हैं, हमारे सैटेलाइट हैं जो सर्वेलेंस के लिए हैं, उस सब में भी भारत बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है और इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत बढ़ रही है।
2: ने प्राइवेट सेक्टर का उल्लेख किया है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की जो बढ़ती भागीदारी है, इसे हम कितना बड़ा बदलाव मान सकते हैं? हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र में लॉन्च और सैटेलाइट तकनीक से आगे बढ़कर कई नई क्षमताएं भी विकसित की हैं।
3: जी देखिए, भारत का जो अंतरिक्ष का प्रोग्राम है ज्यादातर अभी तक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के माध्यम से होता रहा था। इसरो के पास भी, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने बताया है कि 80% से ज्यादा पैसा प्राइवेट इंडस्ट्री के पास जाता था जो अपनी तरफ से अलग अलग पार्ट्स बना के इसरो को देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा रहा है। 400 से अधिक इंडस्ट्रीज हैं जो इसरो के साथ जुड़ी रही हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है जब प्राइवेट सेक्टर अपने ही सैटेलाइट बना के अंतरिक्ष में भेज रहा है, अपने ही रॉकेट बना के अंतरिक्ष में भेज रहा है। हमने देखा, अभी स्काई रूट की बात करते हैं, पहले देखते हैं अंतरिक्ष में सैटेलाइट के क्षेत्र में। पिक्सेल कंपनी है बैंगलोर की, वो अपने सैटेलाइट बना के भेज चुकी है, एक दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट उनके अंतरिक्ष में है। उसी तरह से रॉकेट के क्षेत्र में हमने देखा, हाल में स्काई रूट एरोस्पेस, उन्होंने अपना विक्रम 1 रॉकेट पहले ही अटेम्प्ट में सफल प्रक्षेपित किया श्रीहरिकोटा से, और उससे उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। आने वाले टाइम में अग्निकुल कॉस्मॉस करके एक चेन्नई की कंपनी है, वो भी रॉकेट भेजने की तैयारी में है, और इसी तरह से सैटेलाइट और भी कंपनियां बना रही हैं। पीछे गैलेक्साई ने अपना सैटेलाइट बना के छोड़ा था। गैलेक्साई स्पेस एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका सैटेलाइट काम नहीं किया। अंतरिक्ष में हर चीज पहली बारी में काम नहीं करती है और फेलियर हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और पीछे इसरो के भी फेलियर हुए हैं जो कि वो अभी सुधार के लॉन्च की साइट पे वापस आने की तैयारी में है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता आती है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद आती है।
2: अगर हम इस पर देखें कि हमारी सरकार क्या कर रही है, तो सरकार और निजी क्षेत्र के बीच जो एक बढ़ता हुआ भरोसा दिख रहा है अभी, वो कितना महत्वपूर्ण है? और क्या जो हम एक नीतिगत निरंतरता देख रहे हैं, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लोग जोखिम ले सकें, इसके लिए एक माहौल जो तैयार हो रहा है, क्या वो हमारे स्पेस इकोसिस्टम को एक नई गति दे सकता है?
3: देखिए, प्राइवेट स्टार्टअप जो है वो अपना पैसा जुगाड़ के अपनी रिस्क पे चीजें करने को तैयार हैं, और उनकी कैपेसिटी यूज न्यू टेक्नोलॉजी और उस नई तकनीक से नई चीजें बनाने में उनकी क्षमता काफी है। लेकिन अभी सारे स्टार्टअप जो हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो उनमें अभी वो ताकत नहीं है जो कि आप देखें, अगर अमेरिका में बोइंग है या लॉकहीड मार्टिन है या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अभी हमारी कंपनियां छोटी हैं और वो छोटे सैटेलाइट पे कर रही हैं, और लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो सब आगे बढ़ के रॉकेट के क्षेत्र में कभी ना कभी वो अमेरिका की बड़ी कंपनी जो है स्पेसएक्स को स्काई रूट एरोस्पेस जरूर टक्कर दे सकेगा। तो देखिए, आने वाले टाइम में बहुत आयाम हैं जो कि खुलेंगे, और अभी सारे प्राइवेट सेक्टर के जो स्टार्टअप हैं वो एंकर कस्टमर सरकार को ही ढूंढ रहे हैं। वो चाहते ये हैं कि बनाए हम, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है वो सरकार दे। तो ये थोड़े दिन चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में इनको अपनी ताकत से बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। जहां तक पॉलिसी का सवाल है, हाँ, जब से स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किए गए और प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी गई और उनको इजाजत दी गई कि वो इसरो की फैसिलिटीज में अपने टेस्ट कर सकें, इसरो की फैसिलिटी से लॉन्च कर सकें, जैसे स्काई रूट एरोस्पेस ने किया श्रीहरिकोटा में हमारे अपने सरकारी लॉन्च पैड को यूज करके, तो वो एक अच्छी बात है। आने वाले टाइम में हम बहुत देखेंगे कि इस तरह से दोनों की शायद साझेदारी हो, तो इस तरह से मिलजुल के जो भारत का अपना एक इकोसिस्टम है स्पेस का, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो रहा है। इसरो अपनी जगह कायम रहेगा, एक्सप्लोरेशन का काम, R&D का काम इसरो करेगा, और जो रिपीट सैटेलाइट्स और रिपीट रॉकेट हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे।
2: पल्लव जी, आज भारतीय कंपनियां लॉन्च सेवाओं से आगे बढ़कर अंतरिक्ष के कचरे को हटाने, डॉकिंग और इन स्पेस रिफ्यूलिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर भी काम कर रही है। इन क्षेत्रों में भारत के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं?
3: देखिए, अभी जो कदम लिए गए हैं, आपने जो तीनों क्षेत्र बोले वो बहुत ही छोटे कदम हैं, लेकिन हर शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। अंतरिक्ष कचरा हटाने का काम जो है वो इस बार स्काई रूट एरोस्पेस के रॉकेट में उसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट अनफॉर्चुनेटली सक्सीड नहीं किया। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ एप्लीकेशन के क्षेत्र में कई स्टार्टअप हैं जो कि खासकर फार्मर इंश्योरेंस के क्षेत्र में, फार्मिंग इंश्योरेंस के क्षेत्र में बड़े कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे बहुत काम हो रहा है और वो ज्यादा कहानी उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और बहुत सारे बैंक जो हैं आज अंतरिक्ष के क्षेत्र को यूज करके फार्मर को लोन देने में, फार्मर की रिस्क असेसमेंट में अंतरिक्ष के क्षेत्र को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये जो अभी कचड़े वाली बात है या और इस तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, वो तो अभी बहुत छोटे स्केल पे है।
2: अंत में नेशनल स्पेस डे 2026 से आगे देखते हुए भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमता को अगले स्तर तक ले जाने के लिए किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए?
3: देखिए, सबसे बड़ा क्षेत्र जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की तरफ से डिमांड है कि भारत को अपना एक अंतरिक्ष का लॉ बनाने की जरूरत है। अभी हमारे पास अपनी कंट्री में स्पेस लॉ नहीं है, हम गवर्नेंस के क्षेत्र में थोड़ी अभी हमारी कमी है। तो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, लायबिलिटी क्या होगी जब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, एक तरफ तो वो चाहिए हमको। उसकी दूसरी तरफ आती है जो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में हमारा गगनयान का प्रोग्राम जो है, जिसमें एक लॉन्च व्हीकल Mach 3 को ह्यूमन रेटिंग करके उससे अंतरिक्ष में एक क्रू मॉड्यूल से भेजा जाएगा, वो काम आगे बढ़ रहा है। पिछले साल में हमने देखा था कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष गए थे, लेकिन वो गए थे फाल्कन 9 अमेरिकन रॉकेट से और SpaceX की क्रू ड्रैगन से और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। तो अब गगनयान में भारत अपने रॉकेट से ही भेजना चाहता है, अपनी ही धरती से अपनी ताकत पे भेजना चाहता है। उसके साथ साथ जो हमारा अपना कार्यक्रम है कि एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो 2035 तक, उसका काम भी आगे बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम पे अगर हमने एक मनुष्य को चांद पे भेजना है और वापस आना है, उसके लिए एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV की तैयारी चल रही है, जो कि जो हमारा बाहुबली रॉकेट है लॉन्च व्हीकल Mach 3, उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। तो कई क्षेत्र में काम चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उन्होंने तो अंतरिक्ष में इसमें एक नया ही पूरी ऊर्जा फेंकी है, जिससे कि बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर भी एनर्जाइज्ड है, इसरो भी एनर्जाइज्ड है, और भारत को इससे बहुत फायदा भी हो रहा है। तो मुझे तो दिखता है कि आने वाले टाइम में भारत एक स्पेस पावर के रूप में जरूर उभर के आएगा। और जैसे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने आज अहमदाबाद में कहा कि हमारी शुरुआत हुई थी रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पे ले जाते हुए, और आने वाले टाइम में 2040 तक हम वी विल बी सेकेंड टू नन, माने कोई सबके बराबर आ जाएंगे।
2: पल्लव जी, अपने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों, बदलते इकोसिस्टम और भविष्य की संभावनाओं पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। सुर्खियों में अपना बहुमूल्य समय देने और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में
0: सुर्खियों में अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की।

0: बेटियां किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक ऐसी बचत योजना शुरू की जो न केवल बेटियों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि अभिभावकों में बचत की आदत भी विकसित करती है। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई, इसके प्रमुख लाभ क्या है, खाता कैसे खोला जा सकता है, निवेश की प्रक्रिया क्या है और यह योजना बेटियों के भविष्य को किस प्रकार सुरक्षित बनाती है।
1: आज यहां भारत सरकार की एक और योजना का भी प्रारंभ हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी 1,000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक उसके मां बाप पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं और सरकार की तरफ से हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की परंपरा में ब्याज दिया जाता है उससे ज्यादा ब्याज इस बेटी को दिया जाएगा। उसका कभी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा और बेटी जब 21 साल की होगी, पढ़ाई पूरी होगी या शादी करने जाती होगी तो ये पैसा पूरा का पूरा उसके हाथ में आएगा और उस वो कभी माँ बाप के लिए बोझ महसूस नहीं होगी।
0: भारत जैसे विशाल देश में लंबे समय तक बेटियों की शिक्षा और उनकी भविष्य को लेकर कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां रही हैं। अनेक परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की उच्च शिक्षा या विवाह के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाते थे, परिणाम स्वरूप बेटियों के सपने अधूरे रह जाते थे। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत वर्ष 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। यह योजना विशेष रूप से बालिकाओं के लिए बनाई गई एक लघु बचत योजना है जिसका उद्देश्य उनके भविष्य के लिए आर्थिक संसाधन तैयार करना है। सुकन्या समृद्धि योजना केवल एक बचत योजना नहीं है बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम है। यह संदेश देती है कि बेटी कोई बोझ नहीं बल्कि परिवार और राष्ट्र की शक्ति है। यदि इसके भविष्य की योजना आज से बनाई जाए तो वह कल आत्मनिर्भर और सफल नागरिक बन सकती है।
1: पिछले साल फरवरी में हमने वहां 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। बेटियों की एजुकेशन और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, देश में पिछले 11 वर्ष में ऐसी अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं जिन्होंने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को

0: सोशल सिक्योरिटी कवच को बहुत मजबूत कर दिया है और देश के गरीब वंचित निरंतर सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं। 2014 में देश में 25 करोड़ लोग ही सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं और बाबा के चरणों में बैठकर के कहता हूं, आज ये संख्या करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत की गरीब कल्याण की योजनाओं की, सोशल सिक्योरिटी देने वाली योजनाओं की विदेशों तक सभी इंटरनेशनल फोरम में चर्चा हो रही है।
1: सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक छोटी बचत योजना है जो केवल बालिकाओं के लिए संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत माता पिता या अभिभावक अपनी बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं और उसमें नियमित रूप से धन जमा कर सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सामान्य बचत खातों की तुलना में आकर्षक ब्याज दर प्रदान की जाती है, साथ ही आयकर संबंधी लाभ भी मिलते हैं। इस प्रकार यह योजना सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न का उत्कृष्ट संयोजन प्रस्तुत करती है। सुकन्या समृद्धि योजना के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, विवाह संबंधी खर्चों के लिए धन संचय करना, परिवारों में दीर्घकालिक बचत की संस्कृति विकसित करना, बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। यह योजना इस विचार पर आधारित है कि यदि बेटी के जन्म के साथ ही उसके भविष्य के लिए बचत शुरू की जाए तो यह बड़े आर्थिक लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें हैं। खाता केवल बालिका के नाम पर खोला जा सकता है। बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। माता पिता या कानूनी अभिभावक खाता खोल सकते हैं। एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। एक परिवार अधिकतम 2 बेटियों के लिए खाते खोल सकता है। जुड़वा या 3 बेटियों के विशेष मामलों में नियमानुसार अतिरिक्त खाते की अनुमति दी जा सकती है। इन प्रावधानों का उद्देश्य योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाना है।
0: सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो इसका अर्थ सीमित नहीं है, लेकिन वो एक संपूर्ण है। मतलब यह देश के हर वर्ग हर क्षेत्र के समान विकास की बात तो है ही, हर परिवार के हर सदस्य की बेहतरी की भी इसमें अवधारणा है। आज अगर आप देखेंगे तो सरकार ने परिवार के हर सदस्य को, यानी बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, युवाओं महिलाओं पुरुषों सभी लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य किया है। एक और जहां प्रसूता माता के स्वास्थ्य और पोषण के लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान चल रहा है, तो दूसरी ओर शिशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनके पोषक भोजन का भी ध्यान रखा जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों की जन्म से पहले ही हत्या की प्रवृत्ति में लगाम लगाने की ओर बड़ा कदम उठाया है। तो बेटियों की उच्च शिक्षा से लेकर के अन्य बड़े खर्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ बेटियों के बैंक खाते खुल चुके हैं, जिसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए जमा है। वहीं पढ़ाई और कमाई के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है। विशेष तौर पर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल और बिजनेस जैसे सेक्टर्स में अवसरों की बात करें तो बीते 4 वर्षों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। स्वरोजगार की बात करें तो एक तरफ जहां स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत हजारों युवाओं को अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का अवसर मिला है, वहीं दूसरी तरफ मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायियों को बिना गारंटी के 14 करोड़ से अधिक लोन दिए जा चुके हैं।
1: सुकन्या समृद्धि खाता देश भर में डाकघरों में, अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, अधिकृत निजी बैंकों में खाता खोला जा सकता है। खाता खोलने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। खाता

0: बोलते समय सामान्यतः कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटो, बैंक या डाकघर द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र। दस्तावेजों की जांच के बाद खाता सक्रिय कर दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका लचीलापन है। न्यूनतम वार्षिक जमा राशि अपेक्षाकृत कम रखी गई है। परिवार अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार राशि जमा कर सकता है। एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित अधिकतम सीमा तक निवेश किया जा सकता है। जमा राशि एकमुश्त या किस्तों में जमा की जा सकती है। यह सुविधा निम्न आय वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग तक सभी परिवारों को योजना से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। सुकन्या समृद्धि योजना की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी आकर्षक ब्याज दर है। सरकार समय समय पर इसकी ब्याज दर निर्धारित करती है। सामान्यतः यह दर कई पारंपरिक बचत योजनाओं की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होती है। ब्याज वार्षिक आधार पर खाते में जोड़ा जा सकता है और चक्रवृद्धि प्रभाव के कारण समय के साथ निवेशित राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यही कारण है कि लंबे समय तक नियमित निवेश करने पर एक बड़ा कोष तैयार हो जाता है, जो बेटी की शिक्षा या अन्य आवश्यकताओं में उपयोगी सिद्ध होता है। अक्सर कहा जाता है कि निवेश में समय सबसे बड़ा मित्र होता है। सुकन्या समृद्धि योजना इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। जब खाते में जमा धन पर ब्याज मिलता है और अगले वर्ष उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इस सिद्धांत के कारण छोटी छोटी बचतें भी लंबे समय में बड़ी राशि का रूप ले सकती हैं। यदि बेटी के जन्म के तुरंत बाद निवेश शुरू किया जाए तो परिपक्वता के समय पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सकती है।
1: आज ही यहां 20,000 से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। साथियों, भारत सरकार ने 10 साल पहले बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये देश की उन योजनाओं में से एक है जिसमें 8.2% का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारी बेटियों को मिलता है। अब तक देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जा चुके हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक इन बैंक अकाउंट में 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है।
0: सुकन्या समृद्धि योजना केवल एक बचत खाता नहीं है, बल्कि यह एक विश्वास है, एक ऐसे भविष्य का विश्वास जहां हर बेटी शिक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानित हो। यह योजना हमें यह सिखाती है कि भविष्य की तैयारी आज से शुरू होती है। छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़े सपनों का आधार बन जाती है। जब परिवार अपनी बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, तब वे केवल एक बच्चे का नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य मजबूत करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इसी दिशा में एक प्रभावी और प्रेरणादायक कदम है, और इन्हीं कदमों के साथ भारत विकास की डगर में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

0: डगर विकास की, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। विषय था सुकन्या समृद्धि योजना, योगदान हमारे ग्वालियर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: मीटिंग में 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हिना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लियालपुरी के लिखे गीत को संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए सिर्फ तुम फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वर में। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि

0: पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
2: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देशभर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
3: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसके वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
4: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की

0: और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। दो दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल FC ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective

अभी आप सुन रहे थे नूरजहां को विलेज गर्ल फिल्म में। कार्यक्रम का अगला गीत सुरैया की आवाज़ में, फिल्म का नाम है शमा। कैफी आज़मी की बोल है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं तीन देवियां फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत या आर डी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्र गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम अनभवन के सभी श्रोताओं को महिमा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, मैंने प्यार किया फिल्म से। आवाज एसपी बाला सुब्रमण्यम की है। राम लक्ष्मण का संगीत है, सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता। सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश सुनीता मुस्कान मालाकार। मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ और शाइना, निवान शर्मा। मोहत से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु मुबारक, विलास मनोहर ठाकुर, तैमूर बारे। रावेर से अरशद आरिश, अरसलान, यूनुस तड़वी। मोहत से ही मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक परवेज, बिटिया रोजमीन और तैमूर तड़वी। मोरीगेट से इस गीत को पसंद किया कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पी रानी और आकाश कुमार ने। मूसाखेड़ी इंदौर से प्रकाश सेन, सुनीता सेन, कृष्णा सेन और रवि सेन इस गीत को पसंद करते हैं। इसी गीत को सुनना चाहा है इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता, पूजा, विक्की, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, देविका चौधरी, गणेश, कार्तिक, संजना परी और ललिता नारायण खर्चे। इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी। इंदौर से ही नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबेद, रजिया, जुनेद, अलीना, आयत मुआज मंसूरी। और खंडवा से अब्दुल गफार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जिया उल हक और मोहम्मद उमर डाबर। आप सभी की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का पहला गीत।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहे और सुरों की ये महफिल यूं ही सजती रहे। पुराने गीतों की मिठास हो या नए नगमों की ताजगी, संगीत हर दौर में दिलों को जोड़ता है और ये कार्यक्रम मन भावन भी आपके और हमारे दिलों को जोड़ता है। लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फूल और कांटे फिल्म से। आवाज़ अलका याग्निक की है और कुमार सानू की, समीर के बोल हैं, नदीम शवन का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां। खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदिनी, निखिल और गौरांज पंचोली। इसी गीत को पसंद करते हैं। इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। इंदौर से कृष्णवीर रायकवार, नितिन रायकवार, महेश, सरिता, अहिल्याबाई रायकवार। पुणे से महेश हजारे, मिंताशु हजारे, आदित्य हजारे और समस्त परिवार के सदस्यगण। इसी गीत को पसंद किया है जय हिंद रेडियो श्रोता संघ से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर फैज नबी, शाकिर इस्लाम नबी, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर, सानिया, शकील पठान, बिस्मिला भी शेख, कदर शेख, आणी, नीलोफर, हिपर सोगा, नांदेड़ हून से इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये अगला गीत।

कार्यक्रम मनभावन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं जुनून फिल्म से अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा के स्वर में। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। हिंगोली से पेंटर रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू रमाबाई, सुरेंद्र मयूरी, सुरभि मंजूषा, गौतम इंगोले। झुमरी तलैया से छकुली इंगोले, देव छोटू दादा, पेंटर रामचंद्र इंगोले, रमाबाई सुरभि, अशोक नगर हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। इसी गीत को पसंद करते हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। किल्लौत से नंदलाल राजपूत, राजू राजपूत, नंदिनी बाई और रुद्र राजपूत। इसी गीत के लिए फरमाइश है अमरावती से चंदूजी हातोले, सीमा हातोले और अधिश्री की। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज भट्ट। और महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा हदिया, अस्मा सालिया, शोएब पोत्रा, मुश्ताबा राउफ और शहीद।

और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं वीर ज़ारा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर रूप कुमार राठौर के स्वर में। जावेद अख्तर के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वायद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी और बेबी प्रियांशी, राजू, माया, प्रज्ञाप्ति, प्रकाश इस गीत को सुनना चाहते हैं। महाराष्ट्र से, पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयदेव बिरक, मीका बिरक, राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी वकील फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: गायिका विदुषी प्रतिमा तिलक का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। विदुषी प्रतिमा तिलक का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। इसके बावजूद बचपन से ही आपकी संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। अपने माता पिता के पूर्ण सहयोग से आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती सुहासिनी एवं श्री प्रभाकर व्यास से प्राप्त की और इसके उपरांत डॉक्टर ज्योत्सना मोहिले से भी आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपकी संगीत यात्रा को वास्तविक दिशा और मजबूत बुनियाद तब मिली जब जयपुर अतरौली घराने की दो वरिष्ठ गायिकाओं श्रीमती कमलाताई तांबे और श्रीमती कौशल्या मंजेश्वर ने लगभग दो दशकों तक आपको जयपुर अतरौली घराने की गायकी और बालिकियों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन किया। आपने जयपुर गायकी के विद्वान पंडित अरुण द्रविड़ और प्रोफेसर मिलिंद माल्शे से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने दोनों गुरुओं से प्राप्त तालीम के आधार पर आपकी गायकी में खुली आवाज में किया गया आकार, लय के साथ कदम से कदम मिलाती हुई बोल, उपज तथा तानों में सुंदर गमक के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं और ये सब कुछ राग के निर्धारित स्वरूप और उसकी मर्यादा के भीतर रहता है। जयपुर अतरौली घराने की महान गायन तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर की गायकी को प्रस्तुत करने और उसका प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख गायिकाओं में आपका विशेष स्थान है। आपको अनेक प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपने आकाशवाणी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया और वर्ष 1987 से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए नियमित रूप से प्रस्तुति देती आ रही हैं। आप आकाशवाणी की उच्च श्रेणीय कलाकार हैं। आप ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। आपने देश भर में आयोजित अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आज की सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का शुभारंभ राग बिहागड़ा से कर रही हैं। विलंबित बंदिश तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं प्यारी पग होले होले धरिए और द्रुत तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री यति भागवत, हारमोनियम पर हैं श्री अनंत दोषी और सारंगी पर हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट द वोकल रिसाइटल बाय रिनाउंड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट विदुषी प्रतिमा तिलक। बॉर्न इन नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, विदुषी प्रतिमा तिलक शोड अ नेचुरल फ्लेयर फॉर म्यूजिक सिंस अर्ली चाइल्डहुड। With unequivocal support from her parents, she was initiated into the ocean of music by Mrs. Suhasini and Mr. Prabhakar Vyas and later by Dr. Jyotsna Mohile. Her musical journey took firm root when two senior vocalists of the Jaipur Atrauli Gharana, Shrimati Kamaltai Tambe and Shrimati Kaushalya Manjeshwar, trained and mentored her into the intricacies of the Jaipur Atrauli Gharana Gayaki over a period of two decades. She has also received guidance from Pandit Arun Dravid and Professor Milind Malshe, both scholars of Jaipur Gayaki. Based on the solid talim that she received from both her gurus, her Gayaki is embellished with open-throated akar, bol, upaj, going hand in hand with the lay and beautiful gamak patterns of taan, all within the framework of the raga. One of the leading vocalists to present and propagate the gayaki of the legendary Gaan Tapaswini, Shrimati Mogubai Kurdikar of the Jaipur Atrauli Gharana, Vidushi Pratima Tilak aesthetically unfolds the raga to bring out its true essence. Vidushi Pratima Tilak is Akashwani top grade artist in Hindustani classical music. She is also an empanel artist of the ICCR, Indian Council for Cultural Relations. Tonight, Vidushi Pratima Tilak begins her classical vocal recital with raag Bihagda, Vilambit Bandish set to Tintal, Bol, Pyari Pag Hole Hole Thariye, Drut Tarana set to Tintal. Accompanying her on the tabla is Shri Yati Bhagwat and on the harmonium is Sri Anant Joshi, and on Sarangi, Ustad Farooq Latif Khan.

0: ये था राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का समापन राग सुहा से कर रही हैं। द्रुत बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं प्रीत सो प्रीत चंदा, और द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल है झूम झूम झूम बदरवा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक कंक्लूड्स हर वोकल रिसाइटल विथ राग सुहा। द्रुत बंदिश सेट टू एक ताल, बोल प्रीत सो प्रीत चंदा, ऑल्सो द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल, बोल झूम झूम झूम बदरवा।

0: ये था राग सुहा। तबला संगत श्री यति भागवत, हारमोनियम श्री अनंत दोषी और सारंगी पर थे उस्ताद फारूक लतीफ खान। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक का गायन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के मुंबई स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was Raag Suha and that concludes vocal recital Vidushi Pratima Tilak in tonight Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on tabla by Shri Yati Bhagwat and on harmonium by Shri Anant Joshi and Sarangi Ustad Farooq Latif Khan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन ब्रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
3: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई, कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
2: Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The BRICS Sport Ministers meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. A key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sports technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow today on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. The National Skill Development Cooperation, NSDC, and Cultus Education have announced the launch of a nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services, AWS. The program aims to provide foundational AI and cloud literacy to 1,50,000 learners through AWS digital training content and to offer intensive job-ready training to 10,000 participants through the AWS Restart program focusing on youth in Tier 2 and Tier 3 cities. In football, East Bengal FC have lifted the Durand Cup for a record 17th time, ending a 22-year wait for the prestigious trophy after defeating arch-rival Mohun Bagan Super Giants 4-1 in the final in Kolkata this evening. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh tomorrow. Meanwhile, parts of the national capital received light to moderate rainfall. The weather agency predicted cloudy sky with a spell of very light to light rainfall at most places tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
4: Meeting wave 462.96 meter par ye Akashvani ka Indoor kendra hai. इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा में कल सुबह 5:53 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।